कर तेरा दिल उलझाऊं, पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर दूं ऐसा मैं हुशकारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी।

करे इशारा, लेकिन दर्द छुपाए कैसे तीर नजर का मारा। एक अदा पे हम करते कुर्बानी ये दुनिया सारी। ओ मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर।

0: सोनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सारी दुनिया, सारे विश्व में सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि हमारा देश तरक्की हो। सभी देश वाले यही चाहते हैं, सभी देश का ये कामना होती है। उसी तरह भारतवर्ष में भी हम भारतवासियों को भी लगता है कि हमारा देश ही तरक्की पे हो, लेकिन देश की तरक्की में आखिर किसी का सहयोग हो तभी तो देश तरक्की करेगा। किसी एक के चाहने से तो नहीं होगा। इसीलिए अगर हम चाहे और ना चाहे तब भी हमारा देश तभी तरक्की पे जाएगा कि देश की तरक्की में कौन सहयोगी हो। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम देखते हैं सृष्टि रूपी नाटक में सभी का अपना अपना पार्ट है। सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का पार्ट है, द्वापर युग में धर्म स्थापकों, ऋषि मुनियों, सन्यासियों, राजाओं और भक्तों का पार्ट है। फिर कलयुग में आइए तो राजनेताओं और अभिनेताओं आदि का पार्ट चलता है। वैसे ही कलयुग के अंत और सतयुगी सृष्टि के आरंभ में जो आरंभ के संगम युग पर सर्वशक्तिमान परमात्मा का पार्ट भी चलता है। वर्तमान समय गुप्त युग संगम युग ही चल रहा है और परमात्मा पिता का पाठ भी चल रहा है। जितने दिमाग, कहा जाता है जितने दिमाग उतने ही विचार होते हैं। सभी देहधारियों के पाठ को जानना, समझना और अनुमान लगाना आसान है, लेकिन स्थूल नेत्रों से ना दिखने के कारण परमात्मा पिता के वर्तमान में चल रहे पार्ट को अधिकतर के लिए समझना मुश्किल तो क्या, असंभव ही है, क्योंकि परमात्मा पिता स्वयं का परिचय जब तक खुद आकर नहीं देते हैं तब तक जितने दिमाग उतने विचार या अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग की तर्ज पर सूत उलझता ही गया है। अनुभव कहता है कि अनुमान अक्सर सत्यता से कोसों दूर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अलग अलग पदों के अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकार और जिम्मेवारियां हैं। इनकी जिम्मेवारियां क्या है? मनुष्य कहते हैं हम तो श्री राम श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई कहते हैं हम तो साईं बाबा को मानते हैं, ऐसे ही कोई पीर पैगंबर, कोई बुद्ध, कोई महावीर अथवा क्राइस्ट आदि को ही मानकर संतुष्ट हो लेते हैं कि हम भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार किसी नगर में नगर पालिका के पार्षद भी होते हैं तो विधायक और सांसद भी होते हैं। यदि पार्षद ही सारे काम कर ले तो विधायक की क्या जरूरत? यदि विधायक सब कुछ कर ले तो सांसद की क्या जरूरत? यदि सांसद सब कुछ कर लेगा तो मंत्रियों का क्या आवश्यकता है। हाँ, यदि मंत्री को सब कुछ अधिकार दे दिए जाए तो मुख्यमंत्री की क्या जरूरत। फिर मुख्यमंत्री ही सब कुछ कर ले तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा क्या होगी। और आगे आइए, प्रधानमंत्री को ही सारे अधिकार होते हैं तो राष्ट्रपति का पद नहीं रहता। सर्वोच्च है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति है देश का सर्वोच्च नागरिक। तो जाहिर है एक दो के ऊपर पद हैं, सबके अपने अपने अधिकार और जिम्मेवारियां हैं। घर के पिछवाड़े की सर्विस लाइन की सफाई नगर पार्षद करवा सकता है, लेकिन नगर पार्षद के हस्ताक्षर से कोई सरकारी नौकरी का आदेश नहीं बन सकता। जबकि राष्ट्रपति के आदेश पर किसी अपराधी की फांसी की सजा भी माफ हो सकती है। तो पद के अनुसार अधिकारों में फर्क हुआ ना। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, वह हुआ सर्वोच्च। ऐसे ही विचार कीजिए, यदि एक कथावाचक ही अपने प्रवचन से सब कुछ करवा दे तो साधु संत क्या करेंगे? अगर साधु संत ही सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे तो धर्म स्थापक आकर क्या करेंगे? फिर अगर धर्म स्थापक ही सब कुछ कर दे तो सोचिए आप कि देवी देवताओं का इतना गायन क्यों है? और यदि देवी देवताएं ही सभी प्राप्तियां करा देते हैं तो भगवान का क्या महत्व रह जाएगा? बस अब भगवान के

विराम देना। भक्त वत्सलम, मन इच्छित फल देने वाला निष्कामी, दाता विधाता वरदाता, यह महिमा भगवान की ही है। दुनिया में अनेक साधु संत, वीर पैगंबर, धर्म स्थापक महापुरुष आदि आए, उनके रहते हुए भी, उनको आंखों से देखते हुए भी मनुष्य यही गा रहे हैं, भगवान को हम खोज रहे हैं, दर्शन की इच्छा पूरी होती नहीं। इसका अर्थ क्या है? यही कि देवी देवता, साधु संत, वीर पैगंबर, धर्म स्थापक महापुरुष आदि भगवान नहीं है। भगवान तो एक है, सर्वोच्च है, सबका है, सर्वशक्तिवान है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय है देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल देखने में जो भी आ रहा है, दंगे फसाद, पत्थरबाजी आदि देश की तरक्की में बाधक है। आज अनेकों को भगवान मान लेने से आए दिन होने वाले विवाद, दंगे फसाद, पत्थरबाजी आदि देश की तरक्की में कितने बाधक बन रहे हैं। अपराध करने वाले, अपराधों के समाचार लिखने वाले, वीडियो बनाने वाले, समाचार छापने वाले मीडिया कर्मी, अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मी अथवा सेना कर्मी, अपराधों की पैरवी करने वाले वकील, न्यायाधीश आदि की अग्रणी भूमिका में अधिकतर युवा ही होते हैं। ऐसे में यदि ईश्वर का सत्य परिचय देकर इन युवाओं के मन में, इनकी बुद्धि में को एकाग्र किया जाए तो इनकी ऊर्जा देश की तरक्की के रचनात्मक कार्यों में सफल हो सकते हैं। कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। समय तो अपने अनुसार सभी राजों से पर्दा हटाने वाला ही है, लेकिन उस समय मनुष्य आत्मा अलौकिक सुख और खुशी की अनमोल प्राप्तियां नहीं कर पाएंगी। कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। वर्तमान समय चल रहे गुप्त संगम युग के अंतिम पलों में जब सबके सामने ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब उनको जानने के लिए कोई बुद्धि लगानी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका परिणाम यह होगा कि परमात्मा प्राप्तियों के द्वार बंद हो चुके होंगे। इसलिए जागो, क्योंकि समय से पहले ही अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें पहचानने से सुख शांति और संपत्ति के अखूट खजाने प्राप्त हो सकते हैं। धरती पर पधारे परमात्मा पिता को दिव्य चक्षु से जानने और पहचानने वाला भाग्यवान ही देवी देवता पद को जन्म जन्मांतर के लिए हासिल कर सकता है। तो आपने देखा कि ईश्वर का परिचय हमें कब और कैसे, किस समय लेना है और कब परमात्मा इस धरा पे आते हैं। इस कलयुग की अंत घड़ी में परमात्मा जब इस धरा पे आते हैं तो यही होता है हमारा संगम युग। तो इस बेला को हम व्यर्थ में ना गवाएं और इसका पूरी तरह से इसका फायदा उठाएं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलते जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कोलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नेम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना।
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है, तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15 minutes.
0: I give all my time to others.
1: To everybody. Kyunki mujhe dusron ko heal karna hai. And he said like, 14 ghante mere apne profession mein jaate hain. My work is my top priority. To 14 ghante mere din mein uske liye hote hain. Baki commuting, travel time, aur jo thode se 2-3 ghante bach jaate hain, wo mere parivar ke liye hote hain. To ab is sat mein, apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है, वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल, यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्फ्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर, एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर, बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड, क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं, अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कंफर्ट्स जो भी हमें लाने हैं, उसके लिए हम काम पे जाते हैं, तो काम से ऊपर एक्चुअली
0: परिवार,
1: परिवार है डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है खुशी, सुख, शांति वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी. तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माई सेल्फ. नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे राउंड, वर्क फैमिली सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला. इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट है. उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं. तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, उसका असर परिवार पे भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा. तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं. वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है. नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ फैमिली एंड देन वर्क, यू नो सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द
0: थिंग. आई थिंक बाकी दोनों चीजें सेल्फ पे डिपेंडेंट,
1: सेल्फ पे डिपेंडेंट है. लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी. और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क. तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री by saying I don't have time. तो अपने लिए समय निकालना, we should remember that I am the most important person in the world. Because unless I'm healed, I cannot do anything.
0: I cannot achieve anything. That's very true.
1: मैं कुछ भी नहीं
0: कर सकती. I have met people, एक social organization में मैं थी, they said कि हम New Year resolutions की बात कर रहे थे, तो almost everybody was saying कि मैं लोगों के लिए help करूंगा, मैं इतने लोगों को introduce करूंगा इसके बारे में. लेकिन finally I think क्योंकि हम खुद हील्ड नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं.
1: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए. और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है. सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी. अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
0: खुद में विश्वास.
1: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली. और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर सेल्फ एस्टीम बॉय अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे. जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता. आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
0: सही सोचूंगी
1: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी. तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे. जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं,
0: दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी. हाँ.
1: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे. तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत इजी और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत इजी. ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है. सोचती कुछ और है, करती कुछ और है. जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी. लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं. वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए टॉक टू योर सेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं
0: और
1: कर
0: एक्चुअली अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं तो आंसर से मिलने लग जाते हैं.
1: आंसर सारे यही हैं. सारे आंसर्स यही हैं क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है. यू नो, तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीशन कि मुझे क्या करना होगा हैज टू बी माइंड। तो इफ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? माइंड साइलेंट, लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे, ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं, तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
0: उनके लिए सही होगा। हाँ।
1: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है। तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डिवेलप, रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हम कहते हैं मुझे सब की जिम्मेवारी उठानी है,
0: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगेन,
1: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमजोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीशन लेंगे और आपका डिसीशन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमिजिएटली आई विल गेट दैट, नहीं मूव अवे। कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, एंड दैट विल टच वेरी क्लियरली। तो परमात्मा के साथ भी जब वो रिलेशनशिप होगा और अपने साथ इंटरनली, तो डिसीशन लेना बहुत ईजी हो जाएगा, एंड डिसीशन विल बी राइट, दे विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इंटेंशन बहुत राइट है अब कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब सोल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशंस प्योरिफाई होती जाएंगी, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा। तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू, सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है। तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
0: मैं खुद उठा सकता हूँ, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए।
1: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी, और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा।
0: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज्यादा तलाश रहे थे। अगेन, खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है, या वो जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें।
1: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप। ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
0: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, देन यू कम बैक, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन
1: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा। सो यू आर नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना? अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वो ही रिकॉर्ड किए और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना, ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें, दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन, सो व्हाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी, फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन। क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
0: शांति का,
1: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे। ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं। सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए। आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह, तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमें अनकंडीशनल लव मिलता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अनकंडीशनल

0: love, unconditional acceptance and pura pura trust. Aisa trust जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. He doesn't have anything that he needs from us. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया, तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है. That's cheating with myself, you know. The source is there, ready to give, and I'm saying I don't have time.
1: And again, it's a relationship with my own self. The in reality, who am I? उसके साथ जो रिश्ता है. सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है. और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है. सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें.
0: कुछ क्षणों के लिए हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन. और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी, तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर. यू नो, उसको बैठने ना दें और उसकी तरफ ही ना झुक जाएं कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया. नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है. तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन. कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें. अपने आप को देखें. सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं. इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है. ये मैं हूं, मैं आत्मा, अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं. शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है. शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं. मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ. देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है. इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ. उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है. जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है. मैं आत्मा, मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ, अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा, शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा एक ऐसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज ना होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें, रिश्तों को एक नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445, 9999 3446, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09999 3445, 09999 3446 और 09873666555। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज में। कभी कभी जब हमें अपना कोई मित्र मिलता है या हमारे साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लगता है कि वो बहुत दुखी है या हम ही बहुत दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। क्या होता है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन एक फीलिंग ही है या ये बीमारी के रूप में भी आगे बढ़ सकता है? और अगर ये बीमारी है तो इसको ठीक करने का, इसका इलाज का सही तरीका क्या है? इन सभी को जानने की कोशिश की है हमने अपने इस सफर में और बहुत सी चीजें सामने आई हैं। आज जिस तरीके की तरफ हम मुड़ रहे हैं, जिस तरह का इलाज करना चाहिए उस पर बात करने जा रहे हैं, वो हमारे विचारों से, हमारी सोच, हमारे थॉट से जुड़ा है। किस तरह से थॉट्स को बदलकर हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, जिसे साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी स्वागत।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे मुड़े तो पिछली बार हमने बात की थी कि दवाइयों से जो इलाज किया जाता है डिप्रेशन का, वो काफी सफल रहता है और काफी जरूरी हो जाता है कई केसेस में, और कभी भी इलाज बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कई मिथ्स हमने क्लियर की थी। एक और बात आपने बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट से, कन्वर्जन से भी कई बार इलाज किया जाता है और उसके भी रिजल्ट सही होते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं विचारों की तरफ, जो हमारे मन में उठ रहे हैं विचार। आपने बताए थे कि कई तरह की साइकोथेरेपीज हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने बताया था कि जब हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और रोशनी।
1: इसको कहा कि बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी, कि एक तो बिहेवियर को चेंज करना है, और कॉग्निशन का अर्थ है हमारे विचार, जो सोच है, वह सोच को बदल करके हम कैसे डिप्रेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। और यह एक थेरेपी जिस पर बहुत रिसर्च भी की गई, यहां तक कि फेडरल गवर्नमेंट ने $10 मिलियन इस पर लगाए, इस बात को चेक करने के लिए कि कितनी इफेक्टिव है। क्योंकि इससे पहले साइको एनालिसिस और चीजों पर रिसर्च हुई थी और कुछ लोग ऐसा समझते थे कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो जब इस पर रिसर्च की गई, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे उनको करीब 20 सेशंस दिए गए, एक एक घंटे के 20 सेशंस उनको दिए गए, और कैसे विचारों को बदलना है उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल बातें सिखाई गई। और जब ये किया तो देखा कि एक दवाई होती है एमीप्रामाइन, जो एक बेसिक एंटी डिप्रेशेंट है, जो आज तक भी उपयोग में आती, अच्छी दवाई है। जितनी एमीप्रामाइन की इफेक्ट होती है उतनी ही यह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी इफेक्ट हुई।
0: अच्छा।
1: और वो मेंटेन हुई, करीब 2 साल के बाद भी उन पेशेंट्स को फिर से देखा गया तो भी उनमें जो इम्प्रूवमेंट था वो इम्प्रूवमेंट सही रहा।
0: लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि बातचीत से या डिस्कशन से जो ये बात की जा रही है वो इतने इफेक्टिव नहीं होती है, तो इस थेरेपी में कुछ खास तरह की काउंसलिंग की जाती है? कैसे की जाती है थेरेपी?
1: जैसे एनालिसिस होता था, साइको एनालिसिस, आपने भी सुना होगा कि जिसमें हम अपनी बात को बताते रहते, बस हम बोलते रहते, मुझे जो याद आया, आपकी साड़ी देख करके मुझे कुछ याद आया तो मैं बोलता हूँ, और कोई चीज देख करके मुझे कुछ याद आया, लैपटॉप देख करके मुझे कुछ याद आया, तो बस मैं अपनी बात बोलता रहता हूँ। और उससे वह भी अच्छी थी कि अंदर की जो बातें हैं, डीप रूटेड बातें बाहर आती थी और पेशेंट्स को फायदा होता था, परंतु समय बहुत लग जाता था। यह जो थेरेपी है कि जिसमें समय कम लगता है, क्योंकि विचारों को परिवर्तन करना सिखाया गया हमें, एक तो महत्व समझाया गया कि कैसे आपकी ये जो बीमारी है, आपको जो कुछ भी फील हो रहा है उसका रूट कॉज आपके विचार है, और अगर हम विचारों को बदलना सीखेंगे तो आप अपनी फीलिंग से भी उपराम उठ सकेंगे। जब प्रॉपर उनको टेक्निक्स बताई गई, मेथड्स बताई गई, होमवर्क भी दिया गया कि घर में भी आपको क्या करना है, सप्ताह में 1 बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और ये सारी थेरेपी ठीक से करता है, तो उसका एक बहुत और एक अच्छा पहलू देखा गया कि न केवल पेशेंट्स को फायदा हुआ, परंतु एक पैट स्कैन होता है, ब्रेन स्कैन आपने सुना है, पैट स्कैन है कि जिससे हम जो दिमाग के डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो पैट स्कैन भी लिए गए इस थेरेपी के बाद, तो भी देखा कि उसमें भी परिवर्तन आ रहा है।
0: ओके, द लेवल्स वर इंक्रीज्ड।
1: हाँ, केमिकल्स में परिवर्तन आना, जो फंक्शंस है ब्रेन ऑर्गन्स के उनमें भी परिवर्तन आया, कि जिसके कारण आज अच्छी मात्रा में साइकेट्रिस्ट भी इस थेरेपी का स्वीकार करने लगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, विचारों को बदलना, उसी पर तो हम काफी टाइम से भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि विचार या जो थॉट आता है उसी को नेगेटिव पॉजिटिव जो है वही एक वजह बनते जाते हैं जिंदगी में जितनी मुश्किलें आ रही हैं। विचारों को बदलना या थॉट्स को बदलना आसान है और क्यों अगर डिप्रेशन में नहीं है हम तब भी बहुत जरूरी है,
2: क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसे थॉट्स तो सारा दिन में आ ही जाते हैं जो खुद के लिए कंफर्टेबल फीलिंग नहीं क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं है वो डिप्रेशन के लिए, लेकिन हम सबके साथ आते हैं। कोई दर्द के विचार हैं, कोई दुख के हैं, कोई उदासी के हैं, कोई एक होपलेसनेस की फीलिंग के हैं, कोई एक इन्फीरियर फीलिंग, सुपीरियर, मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं विच आर नॉट कम्फर्टेबल। तो ये जो थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने की या चैनलाइज करने की जो थेरेपी होगी या जो मेडिटेशन भी सिखाता है, दिस विल हेल्प ईच वन ऑफ अस। और देखो जैसे आपने कहा कि वो एमिप्रामाइन मेडिसिन के इक्विवेलेंट आप इस थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन से ये हो सकता है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेडिसिन से आप ठीक होते हैं लेकिन फिर जा सकते हैं आफ्टर, क्योंकि एक टेंडेंसी तो है ही ना उस बीमारी की, एक टेंडेंसी तो है ही। तो अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद कोई और परिस्थिति आएगी, हम फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं।
0: तो ये टेक्निक अगर हम,
2: लेकिन अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया तब हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को क्रॉस कर जाएंगे। सो दिस इज लाइक रियली चेंजिंग इट फ्रॉम द रूट।
1: उदाहरण के रूप में एग्जाम के दिनों में कई स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो यही सिद्ध करता है कि वास्तव में एग्जाम डिप्रेशन नहीं ला रही है, वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। क्योंकि भाई अगर एग्जाम डिप्रेशन लाती है तो सबको लानी चाहिए, परंतु सब स्टूडेंट्स को नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स तो भले रोज 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते, एग्जाम के दिनों में 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, और कुछ है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि परिस्थिति वो डिप्रेशन नहीं ला रही है, हमारे जो विचार है वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात है, कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि भी कोई भी विचार आप 17 सेकंड करो तो उस परिस्थिति को आप अट्रैक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: नहीं ऐसा सचमुच कहा गया है कि इफ यू थिंक ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर 17 सेकंड्स उस चीज को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं।
0: वो भी
2: जाता है। मतलब 17 सेकंड्स कोई और थॉट नहीं आना चाहिए।
1: हाँ, और नहीं आए, यही थॉट आए जो भी कि मुझे सफल होना है, मैं निर्भय बन रहा हूँ।
2: फुल फेथ जो हम बात करते हैं ना, एक जो आपका गोल है वो गोल भी इसी में आ जाएगा ना, कि अगर आप उस थॉट को इतना कन्विक्शन से कर सकते हो कि कोई भी एक यू नो डिस्टर्बिंग वाली थॉट बीच में नहीं आए, तो पूरी दुनिया और लोग उस तरफ ऑटोमेटिकली आपको सहयोग देना शुरू कर
0: देगा। कायनात भी जो है ना, अगर सच्चे दिल से कहो तो ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच होगा अगर आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर ये प्रूव किया।
2: इट्स अ लॉ, इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ दैट द मोस्ट डोमिनेटिंग थॉट एवरीथिंग विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड इट वर्क्स।
0: 17 सेकंड्स,
2: लेकिन इवन अ नेगेटिव थॉट सिचुएशंस विल गेट अट्रैक्टेड टू।
0: सो वो नेगेटिविटी को तो खैर हमें हटा के ही रखना है, लेकिन अगर सच में मन में कुछ ठान लिया है तो उस थॉट को भी अगर हम 17 सेकंड तक रख लेते हैं, 17 नंबर और सेकंड्स याद
2: रखें। ये अब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक थॉट 17 सेकंड होल्ड कर सके, क्योंकि 1 मिनट में 25 से 30 विचार आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, जैसे कल भी बताया, सुप्रा कॉन्शियस को जागृत किया, जब माइंड इतना स्टिल हो जाएगा, थॉट्स की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, तब 17 सेकंड ओनली वन थॉट,
0: क्योंकि 17 सेकंड काफी
2: हो जाएंगे।
1: और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे इम्पोर्टेंट है कि थॉट्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ ये बात अगर कन्विंस हो गई आपको, तो फिर आप ये सारी थेरेपी को भी प्रैक्टिस करेंगे कि बल परिस्थिति एक ही हो, जैसे कि पिकनिक पे जाना है, या तो फॉर एग्जाम्पल सो ट्रैवलिंग, कि भी ट्रेन में लंबा सफर करना है आपको, तो यूथ के लिए तो वो एंजॉयमेंट है, जो एडल्ट है वो समझेंगे ठीक है चलो जाना है तो हम
0: उनके लिए मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट है,
1: लेकिन बूढ़ों के लिए वो डिप्रेसिव हो सकता है,
0: परेशानी है।
1: हाँ, कि भाई वो एक ही बात है, परंतु क्योंकि लेवल डिफरेंट है, उनके थॉट्स, उनका अप्रोच डिफरेंट है, उसके कारण प्रतिक्रिया भी डिफरेंट हो।
2: लेकिन बुजुर्ग लोगों में भी कई बुजुर्ग लोग एंजॉय करते हैं ट्रैवल करना, सेम सिचुएशन ऑल्सो, वो कहते हैं ये अच्छा टाइम है, इकट्ठे सब बैठते हैं टाइम पास, तो सेम सिचुएशन भी दूसरे अलग अलग लोगों के लिए तो इसका मतलब इट्स इन आवर हैंड्स ना, हम ये भी नहीं कह सकते हम बुजुर्ग हैं तो नहीं
0: हमारा वर्ग ही ऐसा है कि
1: ऐसा नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर दो तीन एक्सपर्ट्स की बात भी बताना चाहता हूँ। एक मार्कस एरेलियस हुए जिन्होंने बहुत ही थिंकर थे, बहुत कुछ उन्होंने विचार प्रदर्शित किए। उन्होंने कहा है कि यू आर व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर थॉट्स। आप जो भी आज खुश है, डिप्रेस्ड है, बैलेंस्ड है, तो आपके विचार ही आपको ऐसा बनाते हैं। शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छा कहा है कि परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको जो अर्थ देते हैं, वो अर्थ महत्वपूर्ण।
0: तो डॉक्टर साहब, फाइनली बात ये आती है कि हमारे विचार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कि किस तरह के विचार आ रहे हैं और कितना उन्हें बदलना जरूरी है। टेक्निक में आते हैं कि किस तरह से, अब आपने बहुत इंस्पायर कर दिया है कि ये इट इज पॉसिबल। शिवानी बहन भी कह रही है कि हाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो क्या वो टेक्निक है जिसे हम अपना के उस ये जो पूरे हमारे विचार है जो नेगेटिविटी है उसे चेंज कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कई टेक्निक्स है और हर ऑथर ने उसमें मॉडिफिकेशन भी किया है। मैंने अपनी तरीके से कुछ बातों को सोचा है
0: जी।
1: एक तो उसमें मैंने 5 स्टेजेस बनाई है उसकी कि क्या करना है हमें सचमुच। इसमें सबसे पहली स्टेज है सजगता या अवेयरनेस, कि हमको पता चले कि विचार कौन से आ रहे हैं। हमने समझा भी कि विचार ही डिप्रेशन निर्माण करते हैं, तो इसलिए पहले तो विचार को समझना होगा। और वो कब हो सकेगा कि जब आप जागृत होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप है कि अभी उसको कैच करो।
0: अवेयर मींस मतलब मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या क्या
1: विचार चल रहा है,
0: क्या क्या सब वो आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं,
1: क्या थॉट्स
0: तो। लेकिन एक मिनट में आपने कहा कि हम 25 से 30 थॉट्स आते हैं, तो हर मिनट के थॉट्स को मैं जान पाऊंगी क्या आ रहे हैं?
1: अगर आप जागृत होंगे, हम इसके अभी आगे चल के चर्चा करेंगे कि अगर हम अवेयरनेस का अभ्यास करें तो सचमुच वो इमर्ज होने से पहले भी कैच कर सकेंगे।
2: अच्छा, जैसे हम अवेयर होते हैं तब वो स्लो हो जाते हैं। जब हम जैसे अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो वो कुछ भी कर रहा होगा लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखने लग जाओ
0: तो वो एकदम से
2: तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। द माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो वो
0: अपने हिसाब से
2: चल रहा है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस किसी के लिए भी, आप किसी को भी इस तरह से देखो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, माइंड भी कॉन्शियस हो जाता है। तो जैसे ही हम माइंड को देखना, 25 to 30 थॉट्स इज इन एब्सोल्युटली, हम वी आर नॉट इवन लुकिंग एट इट, तो वो इतनी फास्ट स्पीड पे इतना कुछ चल रहा है। जैसे ही हमने उसको देखना शुरू किया उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वो हमें करनी नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन जैसे ही हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होने लगती है कई चीजें। हमने देखा ही नहीं था तो वो फास्ट चल रहे थे। पहला स्टेप सिर्फ देखना शुरू करते हैं और कुछ नहीं करते, पहला काम तभी हो जाता है कि वो स्लो हो जाते हैं।
1: वॉच करना कहिए तो अवेयर होना, वॉच करना फिर भी थोड़ा क्रूड है, अवेयरनेस ज्यादा सूक्ष्म है। फिर दूसरा है कैच, भी वॉच किया आपने, अवेयर हुए, फिर कैच करो कि ये कौन सा थॉट है जो मुझे डिप्रेशन ला रहा है।
0: जैसे बच्चे अभी कैच हम कर लें कि वो गलत काम करने लगा है। वंडरफुल, ओके।
1: दूसरा स्टेप है, वो सारी टेक्निक है, उसको विस्तार से हमें समझना चाहिए, अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब सूक्ष्म में भी डिप्रेशन आता है उससे मुक्त हो सकते हैं। फिर तीसरी स्टेज है जिसको कहेंगे अंडरलाइन, कि भी वो कौन सा डोमिनेंट विचार है, कौन सा नेगेटिव विचार है
0: जो बार बार आ रहा है।
1: हाँ, विचार भी नहीं।

0: कहूंगा, मैं तो कहता हूँ वर्ड. एक है ना वर्ड होता है, जैसे कि किसमें यूजलेस, हर बात में आप देखो आपके विचार में आई एम यूजलेस
1: और ही इज यूजलेस, शी इज यूजलेस.
0: मे भी हम अपने लिए अपना सोचते हैं कि अरे मैं अपना कपबोर्ड भी ठीक से ही जचा नहीं पाता हूँ, आई एम यूजलेस, है ना, मैंने ये भी काम ठीक से नहीं किया, आई एम यूजलेस. तो वो एक वर्ड होता है कोई ना कोई, आई एम इन्फीरियर,
1: I'm bad.
0: Bad, yeah. तो उसको अंडरलाइन करो, एक शब्द को आप अंडरलाइन करो तो बहुत अच्छा है. फिर स्टेज है जिसको कहेंगे स्टॉप.
1: ओके,
0: अब वो जो विचार आपका आ रहा है उसको स्टॉप करने की जरूरत है, तो वो भी डिफरेंट टेक्निक्स है इसमें, टेक्निक्स के द्वारा आप उसको स्टॉप कर सकते हैं. और फिफ्थ स्टेज है ट्रांसफॉर्म,
1: जो बदलने की बात.
0: अब उसको परिवर्तन करना है, ताकि डिप्रेशन से तो आप परे हो ही जाओ, परंतु जो हमने वो सिक्स स्टेजेस देखी थी कि स्पार्क इन लाइफ, सदैव लाइवलीनेस रहे, ऐसे हम विचार करें तो वह स्टेज बन सकती
1: है. ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, सजगता से हम शुरू करते हैं, फिर पकड़ते हैं यानी कैच करेंगे, फिर हम अंडरलाइन करते हैं, हाँ, यानी कि उसे मार्क करते हैं कि ये है वो शब्द, ये है वो विचार या जो भी है एक नेगेटिविटी, एंड देन वी स्टॉप एंड देन अगेन ट्रांसफॉर्म. सबसे मुश्किल स्टेज कौन सी है?
2: लेट्स सी सबसे इजी स्टेज कौन सी है. जैसे आप पहले सबसे मुश्किल देख लोगे इट विल साउंड वेरी डिफिकल्ट.
1: एक्चुअली नहीं, पर सबसे मुश्किल मुझे लगा कि जान लेंगे, ये भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए, मुझे लगता है ये मेरा एक नेगेटिव वर्ड है मुश्किल, तो उसको अंडरलाइन मुझे कर लेना चाहिए. नहीं तो अच्छा, सबसे आसान स्टेज पे आते हैं. चलिए,
0: अच्छा सबसे आसान स्टेज जो यही कहेंगे अवेयरनेस सबसे आसान है, और बस आप करने भी लगो ना तो आपको इजी लगे.
1: कुछ कड़ियों पहले की ट्रैफिक कंट्रोल की बात की थी कि हर घंटे बाद आप मैं रुक के देखूं, हम देखें, रुकें, पॉज लें और देखें, ये नहीं कि सोचें, देखें कि क्या विचार था. मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे तो याद ही नहीं रहता कि क्या था, वो डर इतना जाते हैं कि क्या था, नहीं समझ में आता कि क्या था, और उसके बीच में कोई और विचार आ जाता है. आई ट्राइड एक्चुअली,
2: ठीक है,
1: बट इट हैज नॉट हैपेंड. सो मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, अवेयर होना,
2: अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे मुश्किल लग रहा है. आप बार बार करते जाओ, एक दिन में आठ, उस एक चीज को छोड़ना नहीं. यू नो, कई बार लगता है कि नहीं, उसको छोड़ना नहीं. पहली बार हम कुछ भी करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज भी पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, और मेजोरिटी लोग थोड़ा सा दर्द होने के टाइम उसको छोड़ देते हैं. लेकिन थोड़ा दर्द जब क्रॉस कर लिया उसके बाद वो नेचुरल लगता है, और थोड़े दिन के बाद अगर वो नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो अच्छा नहीं लगता. बट वी हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी ना. तो इसी तरह जब हम ये मेडिटेशन या इंट्रोवर्ट जाना ये प्रोसेस शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुरू में चैलेंजिंग लगता है ना. इमेजिन वी लेड आवर होल लाइफ विदाउट लुकिंग एट समथिंग, तो फिर लेकिन देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसको बंद नहीं करना. बंद बिल्कुल नहीं करना.
1: तो विचार जो मैंने देखने हैं, जो आप कह रहे हैं अवेयर होना है, सजग होना है, वो पिछले घंटे में जो विचार गुजरे हैं,
2: नहीं, आप सिर्फ उसी क्षण देखो ना,
0: इस क्षण
2: पिछले घंटे नहीं.
0: या तो विचार से भी पहले कहेंगे कि आप अपनी बॉडी की फीलिंग्स को भी देखने लगो पहले,
1: कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ,
0: नहीं क्या हो रहा है. एक अलग अलग रीति से यह हो सकता है कि कोई आपको एक डायरेक्शन तैयार करना पड़ेगा. जैसे एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, कि ना टॉप ऑफ माय हेड मुझे क्या हो रहा है, फिर उसके नीचे गए क्या हो रहा है, आईब्रोज में क्या हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, नीचे गए नाक में क्या हो रहा है, मुंह में जीभ कैसे, जॉस कैसे, गला कैसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा दो दो सेकेंड भी आप देखो, एक डायरेक्शन बना लो. अपने ठीक से डायरेक्शन बना ले तो बहुत फायदा होता है. मैंने स्वयं करके देखा है, मैंने इसका फायदा सिर्फ वर्णन करने से नहीं होगा.
1: नहीं, अब अच्छा मैंने किया है, अभी आप बोल रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो लेकिन उससे क्या होगा, मुझे रियलाइज होगा यहाँ दर्द हो रहा है, आंखों में थोड़ा दर्द है, गला सूख रहा है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है, तो ये इससे आप
0: करो
1: अवेयरनेस से फिर क्या होगा.
0: अभी देखो उससे एक तो इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि भी आप और विचारों से डिटैच हो जाएंगे. और विचार जो आ रहे हैं अभी समय हमें, जो टेंशन के विचार भी होते हैं, निराशा लाने वाले भी होते हैं, सबसे बड़ा फायदा मैंने अनुभव किया कि उससे हम डिटैच हो जाते. दूसरा जो फायदा ये अनुभव किया कि ये पता चला कि भाई हम कितने कमजोर है मन को एकाग्र करने में. मैंने कई बार किया, थोड़ा भी नहीं पहुंचते, मन कहीं खिसक जाता. 10 सेकंड के बाद मालूम पड़ता है, अरे मैं तो यहाँ था.
1: तो वापस कहां से कहां जोड़ता जाता हूँ,
0: तो वापस ले आओ.
1: अच्छा
0: और वापस लाओ तभी

0: दुखी ना हो. कुछ लोग तो दुखी
1: डिमोटिवेट नहीं होना. दैट्स व्हाट हैपेंस जब हम बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं. पहली बार इधर तक ही हाथ पहुंचता, नीचे तक जाता ही नहीं, लेकिन करते करते वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और नीचे तक टच हो जाएगा. सेम थिंग विद द माइंड.
0: तो वापस जब लाओ 5 सेकंड के बाद, तो वाह बहुत अच्छा कनुप्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वापस आ गए. अपने आप को बोलो
2: वापस उसी पे
0: आई एम लकी दैट आई हैव कम. 5 सेकंड ही गए, 15 सेकंड.
2: लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब मैंने जो महसूस किया मेरे ख्याल से ज्यादातर कि हम अपने आप को कहते हैं कि देखा इतना भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर भाग.
1: दिस इज ओनली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस. यू नो यू वॉन्ट टू चेक कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर आप देखो मेजोरिटी जो सेल्फ टॉक है अपने आप की रिजेक्शन की है. नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग के अरे वाह आई डिड इट फॉर 5 सेकंड्स, I'll say, oh, I hardly was able to do it. Now that means I rejected myself. मैं अपने आप को accept नहीं कर पाई कि I could do it for 5 minutes. In every step, छोटी से छोटी चीज से लेकर, this is the way we talking to ourselves. And the same thing with other people. जो लोगों के अंदर विशेषता है, जो वो अच्छा करते हैं, उसकी recognition नहीं करके आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी गलत. कितनी देर में सारे दिन ये बोलते हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने ये बहुत अच्छा किया. नहीं. So that is where we come to know कि acceptance कितनी है और रिजेक्शन कितनी हो रही है सारा.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा.
0: और एक बहुत फायदा ये होता है कि कई बार ना मैं टेंशन है, जैसे भी मैं बैठा भी हो सकता है कि हाँ मुझे टेंशन है, मैंने अननेसेसरी उसको होल्ड किया है. तो जब मैं देखने लगता हूँ तब पता चल रहा है कि इसको मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है.
2: ओहो छोड़ दो,
1: कॉन्शियस हो जाते
0: हो सकता है. थाइज में कई बार हम अननेसेसरी टेंशन रखते हैं, तो जब आप जागृत होते हैं तो उसको रिलैक्स करना इजी हो जाता है. कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह होने लगेगा. और एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि ऐसे हम करते हैं तो विचारों के प्रति भी हमारा ध्यान जाने लगता है. पहले तो शरीर की संवेदनाओं को आप देख रहे हैं, लेकिन फिर आप में जो प्रीडोमिनेंट विचार आ रहे हैं कि जैसे जेलसी के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार आ रहे हैं, अपने आप को डिग्रेड करने के विचार आ रहे हैं, तो उसके प्रति भी हम सजग हो जाते हैं. हाँ ये है मेरे में, फिर उसके साथ वर्क करना भी इजी हो जाता.
2: तो इसका मतलब सबसे पहली चीज जो है वो सजग होना, जैसे आपने कहा कि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से अवेयर होते जाएं, और एक एक्सरसाइज है. लेकिन ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस, इसके लिए काफी काम करना पड़ता होगा, वक्त लगता है कि पूरी सजगता में आने के लिए.
0: तो उसको दिन का हिस्सा ही बना लो, भले टाइम तो देना ही पड़ेगा. वो आप सोचो मैं 2-2 मिनट करूंगा, नहीं होगा. आपको एक 15-20 मिनट देनी चाहिए, क्योंकि तब पूरा कितनी बार मन भागा आपको पता चलेगा. और तब ही आपके मन में जो अंदर में विचार उभर रहे, जो भी नेगेटिव, डिप्रेशन करने वाले, गुस्से के, गिल्ट के, तो विचार भी सामने आएंगे और उससे भी फायदा होगा. पर बहुत अच्छी बात मैंने ऑब्जर्व की जब इस सारे प्रोसेस को मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब मैं MBBS में था तभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया. और फिर साइकोथेरापी का भी लक्ष्य इसीलिए रखा, मैंने तो ये सोचा था कि मैं सर्जन बनूंगा ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने से पहले. पर मैं अच्छा भी था, एनाटॉमी में आई वॉज वेरी गुड. लेकिन जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया तब यह सोचा कि अगर मैं साइकोथेरापी को सीखूं तो आई विल बी क्लोज टू सोल. ये जो मैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसमें यह मेरी पढ़ाई भी मुझे मदद करेगी. तो इस लक्ष्य से फिर साइकोथेरापी की भी स्टडी की, तो ये देखा कि विद्या सेम. अभी जब शिवानी बेन बता रहे थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो 5 स्टेजेस मैंने बताई, राजयोग की जो स्टेज है ना, मोर और लेस सेम है. उसमें भी यही कहते हैं कि भी पहली है प्राथमिक अवस्था, फिर दूसरी स्थिति को कहते हैं मनन चिंतन, तीसरी कहा है एकाग्रता, और चौथी है अनुभूति. तो सिमिलर ये स्टेजेस भी है. और राजयोग में भी यही है कि भी विचारों को टर्न करना.
2: विज्ञान और अध्यात्म अगर हम कहीं एक जुड़ाव पे पहुंच जाते हैं, कहीं एक इंटरमिंगल हो जाता है, तो देन
0: जिन्होंने मुझे सिखाया भी, जो योग की विधि जो ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे सिखाई है, उन्होंने यही सिखाया था. तब तो साइकोथेरापी सीखी भी नहीं थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि शुरू में विचारों को देखो. कहा कि योग करना वो गाड़ी चलाने जैसा है. कार चलाते हो तो क्या करते हो कि जब मोड पर टर्न करना होता है तो पहले स्पीड को कम कर देते हो और फिर स्मूथली गाड़ी को मोड़ते हो. तो कहा राजयोग में भी यही है, पहले विचारों की स्पीड को कम करो और फिर उसको आध्यात्मिक दिशा में मोड़ो, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन में मोड़ो.
2: बिल्कुल, तो ये डिप्रेशन से निकलने का एक गुरु मंत्र अगर हम कहें, या सिर्फ डिप्रेशन क्यों, जिंदगी के किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से निकलने का, किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकलने का जो कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिंदगी जीने का, एक बहुत अच्छा तरीका बन
1: नहीं एक्चुअली ये माध्यम यूज करेंगे तो उस फेज में नहीं जाएंगे,
2: बिल्कुल कभी भी नहीं जा पाएंगे।
0: और तो ये डे टू डे भी भले हम उसको डिप्रेशन नहीं भी कहेंगे, डे टू डे हमें प्रॉब्लम आता है कि भी रास्ते में आपको अपने कलीग मिले उसने हमें स्माइल नहीं दी, तो आप सोचने लगते हैं ना, आपके बॉस ने आप बहुत हार्ड वर्क करके कुछ आपने प्रोड्यूस किया, आपके बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया आपका, सोच भले डिप्रेशन नहीं हुआ परंतु जो विचार है आपके शुरू हो गए कि ऐसा क्यों हुआ।
2: तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं उन्हें हम कहीं अपने से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और पहले एस्पेक्ट को अभी हमने छुआ ही है जो 5 स्टेजेस हैं जहां हम इस पूरी थेरेपी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ये सिर्फ थेरेपी ना जिंदगी जीने का एक तरीका
0: है।
2: चाहे वो हम ये कहें कि थेरेपी कहें या फिर राजयोग कहें, एक बात वही है जिंदगी जीने की, जिंदगी जीने का तरीका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 स्टेजेस हैं जब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की, कि सबसे पहले सजग होना यानी कि अवेयर हो जाना हमारे थॉट्स क्या हैं, हम अपने बारे में ही सजग हो जाएं, और उसके बाद है कैच करना, और उसके बाद उसे अंडरलाइन करना, और उसके बाद स्टॉप करना क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, एंड देन ओनली विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म। ये 5 बातें हम याद रखेंगे, इन्हें डिटेल में जानेंगे आने वाली कड़ियों में। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। हमारा फोन नंबर है 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसकी अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम।
3: दोस्तों, जीवन को चलाने के लिए आमतौर पे हमने सुना है मूलभूत तीन आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब बात आती है मकान की, हम किसी और के साथ रह भी सकते हैं, कपड़े हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन भूख एक ऐसी चीज है जो हमें दिन में कई बार सताती है और हर बार उसका समाधान मिलता है भोजन से। भोजन, अन्न आता कहाँ से है? धरती माँ से, लेकिन उसको उगाता कौन है? हमारे कृषक भाई बहने। तो वो जो अन्नदाता है किसान, उनके जीवन में भी कई समस्याएं चलती हैं, क्योंकि उत्पादकता, रोजगार, लाभ, ये सब के बीच में वो लड़ रहे होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जब वो उन समस्याओं को देखता है और उसके लिए एक समाधान लेकर के आता है, और उस समाधान से न केवल किसानों का भला होता है लेकिन भोजन को ग्रहण करने वाले लोगों की सेहत में भी उसका फल दिखता है, तो उस व्यक्तित्व को पूरा देश सराहता है, उस व्यक्तित्व को पूरा देश प्रशंसा करता है, अपनाता है और उसे एक ऐसा सम्मान प्रदान करता है जिससे कि वो हम सब के लिए

0: सेवाओं में बिजी रहते हैं, लेकिन आपने हमारे साथियों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: ओके, आई वुड स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। वेंकट जी, आपने किसानी के लिए या कृषकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं, और वो इनोवेशन करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा देर सोचना पड़ता है, बिकॉज इनोवेशन इज नॉट ईजी। कोई भी चीज जब नया करना होता है, उसके पीछे थोड़ा रिसर्च होता है, थोड़ा स्टडी होता है, उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, और उसके बाद ही व्यक्ति कोई चीज को आगे ला पाता है, उसको निखार पाता है। आप जब इनोवेशन कर रहे थे, थोड़ा उसका आप हमें स्टोरी सुनाए। व्हाट वाज योर स्टोरी? आपने वो थोड़ी कहानी हमको बताया कि कैसे शुरुआत किया, कैसे वो प्रोसेस रहा, और आज उस नवीनता की वजह से लोगों तक कैसे बेनिफिट पहुंच रहा है, कैसे उनका भला हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
1: जी, नमस्कार सभी भाई बहनों को, किसान साथियों को। ये मैं बचपन से, जब स्कूल जाते थे, बचपन से भी ये खेती का काम में जुड़ा हुआ है। हमारा पिताजी बोलते थे स्कूल से आने के बाद फिर खेती को देखना, एक दो घंटा चक्कर लगाना वहाँ पर। हमारा पिता का ये ऑर्डर या उम्मीद था। ऐसे ही हम आ रहे थे, मेरा स्कूल फाइनल PUC 69 में PUC प्री यूनिवर्सिटी कोर्स BPC ग्रुप, वो 12th क्लास बोलते हैं इधर, वो 12th क्लास BPC बॉटनी बायोलॉजी BPC ग्रुप, बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कंप्लीट करके फिर डिग्री के लिए एप्लीकेशन कर रहे थे, मगर नहीं, उसको उधर नहीं देगा वो एप्लीकेशन के लिए। फिर बाद में मेरे एक अभी तो 50, बचपन से अभी मेरा उम्र 72 साल, 72 ईयर्स, मगर बचपन से स्कूल जाते हैं तो वो गाय का दूध निकालते थे, 4-5 गाय थे, वो गायों का दूध निकालते थे और उसको चारा वगैरह डालते थे, देखभाल भी करते थे। बाद में ऐसा बचपन में क्या, कभी कभी अकाल आने से क्या हुआ, उनको पानी का दिक्कत हुआ था। यहाँ पर जो सिटी के एरिया से बिल्कुल बगल 6 किलोमीटर पहले गांव था हमारा, यहाँ पर दिक्कत होने से वो कुआं बोलते इधर, जब बोरवेल ट्यूबवेल नहीं था 1965-70, तब कुआं को और गहराई कूदना पड़ेगा, वो गहराई को कूदते वक्त वो मडी वाटर, कीचड़ की पानी आते ना, उसको पंप करके और खेत में सिंचाई करते थे। वो सिंचाई करने के बाद इतना फसल आता था, वो हम इस वजह आ रहे बोल के नहीं समझ में आया, और कुछ होगा बोल के। तो वो कभी अकाल पड़ता, जब गहराई कुन्ना खोदना बोल तो वो खुदाई करते थे, वो मडी वाटर, वो कीचड़ की पानी, इसी तरह से नाले से सिंचाई करे से और उत्पादन ज्यादा आता, और वो वेजिटेबल्स, सब्जी और गेहूं, दाल, और ये क्या है अपना बाजरा भी उगाते थे उन दिनों में यहाँ पर, ये सब अच्छी फसल आ रहा था, भरपूर पोषक तत्व से आ रहा था। मगर जब पोषक तत्व को इसको टेस्टिंग नहीं करवाया, और ऐसे मैं ये पढ़ना छोड़ के, फिर हमारा पिताजी का 74 में पिताजी का देहांत हो गया था, तब से हम तीनों भाई मिलकर इकट्ठा पिताजी का आशय क्या है वो सब निभाने के लिए, आशा निभाने के लिए हम इकट्ठा जॉइंट फैमिली में ये सब कर रहे थे। हमको भी ड्यूरिंग 84-85, 1984-85 में ऐसे अकाल आया था, बहुत अकाल, और हम वही बॉडी को, वो ओपन वेल को और गहराई खुदाई करना पड़ा। जब अंगूर लगाए थे हम, अंगूर, ग्रेप्स, इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं अंगूर।
0: जी, आपके अंगूर की तो ये स्टोरी है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1978 में। साथियों, जो भी आप सुन रहे हैं, ये बड़ा ही विचित्र किस्सा आपको बताएंगे अभी चिंतला जी, क्योंकि 1978 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, शायद 100 टन से भी ज्यादा अंगूर निकले आपके खेतों से, और वो भी बीज वाले अंगूर, जो एक विशेष प्रकार के अंगूर होते हैं। प्लीज उसकी स्टोरी सुनाए।
1: वही बोल रहे ना, इससे पहले वो बॉडी खुदाने से पहले एक पेड़ को 100 किलो लगता था, फिर ये बौड़ी का सिंचाई का पानी देने के बाद, ये कीचड़ की पानी देने के बाद, ये 4 महीना खुदाई हुआ था, वो गहराई 4 गज का, 4 मीटर समझो, गज समझो, वो

0: एक एक महीना एक एक गज कंप्लीट कर रहा, वो मैनुअल आदमी से खुदवाना पड़ाया, और एक एक महीना एक एक गज आने से वो पूरा पानी को कीचड़ के पानी सिंचाई के रूप में दिए थे 4 महीने तक। तब हम उन दिनों में ये 250 किलो एक पेड़ को लग गया, एक एक पेड़ को 250 किलो, 100 किलो किधर, 250 किलो, वो भी मजबूत फल, खर खर बोलते थे ऐसा खाने से, बहुत मीठा और खर खर बोल। ये हम समझा ये अकाल की वजह से ऐसा आया बोल के हमको महसूस हो गए। इसका हम इतना नहीं ख्याल किया रहा, ये मडी वाटर कीचड़ की पानी जाके उतना गहराई का मोरम, ये वो मिट्टी से भी इतना फसल आया बोल के हमको निर्धारण नहीं करे थे उस टाइम। बाद में हम सबसॉइल गहराई का मिट्टी का फायदा देखने के बाद ये सब मेरे याद आ गए। बचपन पे हमारा पिताजी करे सो और अबू करे सो 86-87 में ये करे सो, बाद में ये सब याद आ गए मेरे। कब? ये 2002 में याद आ गए, इतने साल गुजरने के बाद जब मैं मेरे को ये सब याद आ गए। अरे मिट्टी कितना भी गहराई जाओ वो पोषक तत्व भरपूर है धरती माँ के अंदर, ये महसूस हो। ये अगर ये अनुभव नहीं तो मैं पेंटेड नहीं करता था, ये अनुभव मेरे अच्छा एक स्ट्रांग वो पक्का यकीन हो गया। अरे यही धरती कितना गहराई जाओ वो पोषक तत्व भरपूर है बोल। तो 2003 में हुआ ये आइडिया आने के बाद 2004 में हम दान और एक क्यों फसल उगाए थे। ये अंगूर तो कोई सीजनल एक साल में एक बार ही आएगा, मगर रोज खाने का ये गेहूं और चावल है ना, ये स्टेपल फूड में गए। और ICR वालों को बुलाए तो भी तुम्हारा अंगूर ऐसा स्टेपल फूड नहीं होता ना। ये जब स्वामीनाथन चेयरमैन था हमारा कमिटी में, हमारा बायोडाटा में सब कुछ लिखा हुआ है, वो स्वामीनाथन ने जी बोला ये तो अंगूर है ना एक साल में एक बार कहते, अब ये दान और गेहूं में करे तो बहुत अच्छा रहेगा बोलते। तो दान और गेहूं में करके हमारा यूनिवर्सिटी या राजेंद्र नगर इधर हैदराबाद का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक उनको बुला के या मैं दिखाया सब हम कैसा कैसा करें। वो यूनिवर्सिटी का रिसर्च डायरेक्टर बोला रेड्डी जी ये तो बहुत बढ़िया है, आप पेपर रेडियो टीवी मत बोलो, ये सब जेनीवा को पेटेंट फाइल करके भेजो गुरु, वो सलाह दी। तो उसी प्रकार मैं ICR का वैज्ञानिकों को पकड़ के ये लिखवा कर सब अपना डाटा कैसा रहे वैसा है, मैं जो जो करा वो डाटा साइंटिफिक डाटा में फाइल करे। वो फाइल करते ही 8 महीने के अंदर पहले ये लोग इनकार कर रहे, अरे तुम कुछ पेस्टिसाइड फंगिसाइड और फर्टिलाइजर यूज नहीं करे, वो लोग तो नहीं मानेगा इतना खर्च कर रहे बोल के ये लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं डाला, ये सच है आप लिखो ऐसे ही, तो बेकार हो तो भी परवाह नहीं मेरे, ये सच कभी मैं सच जो बोल रहे सच है बोल के लिखवाया। तो 8 महीने में भी द टेक्स्ट इज अप्रूव्ड एज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बोल के आया उधर से। ये तो हैरान हो गए ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग, अरे ऐसा कैसा है अप्रूव हो गया ये बिना विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और ये फंगिसाइड भी नहीं। इसको 18 महीने में पब्लिकेशन इंटरनेट में आ गया। इंटरनेट में आने के बाद वो अमेरिका भी एक मेंबर कंट्री है जेनीवा से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका भी एक कॉपी अमेरिका गए, और वो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति तक पेपर्स पहुंचा दिया। वो अमेरिका राष्ट्रपति या भारत की यात्रा करके प्राइवेट विजिट में उन्हें मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ रेड्डी जी को मिलने के लिए, ये भारत सरकार को वो रिक्वेस्ट करे। तब मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके मेरे पास आया, वो पेपर्स मेरा फॉर्म विजिट करे थे, और करने के बाद वो मेरा पेपर्स जो नेट में आता है सब लेकर गया। और 1 महीने के बाद मेरे से फोन करके बोला रेड्डी जी आपसे अमेरिका की राष्ट्रपति मिलना चाहते, आप क्या बोलेंगे कि वजह क्या है, आपका ये पेटेंट है ना वर्ल्ड पेटेंट, उसको तारीफ करने अप्रिशिएट करने के लिए आ रहे इधर हैदराबाद। प्राइवेट विजिट में कोई स्वागत तोरण कुछ भी नहीं रहेगा, फूल की हार या कोई नहीं, सिंपल आ जाए। कोई यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है आने दो मैं मिलूंगा। तो उन्हें आके आते ही बहुत ही ऐसा टेबल के ऐसा झुक के हाथ खींच लेते, मैं हैरान हो गया था, ऐसा मैं नहीं समझे थे इन्हें, मैं हाथ खींच लेता बोले। तो बहुत बढ़िया काम किया मानव के लिए, यू हैव डन ए वेरी गुड थिंग टू मैन काइंड बोल के अप्रिशिएट करके एक 5 मिनट छोड़े ना हाथ से, ऐसा मैं समझा। तब मैं समझा ये लोगों को केमिकल फूड काट इसलिए ये, मगर उसका वजह बहुत, वो लोग इसको और शोध किया ये पेटेंट को मैं जो
1: हम चाहते तो कई बार इस मैं इस कहानी को सुना सकता था, लेकिन आपके मुख से सुनने में एक अलग ही मजा है, क्योंकि जब आप कह रहे थे तो मेरे सामने वो सारे दृश्य उभर के आ रहे थे कि क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा। लेकिन एक चीज जो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरती से आपने रखा कि सच्चाई जो है वो कायम रहती है। आपको वैज्ञानिकों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपके सामने प्रश्न रखे, लेकिन आपने अपनी सादगी और सच्चाई से कहा कि ये जो मैंने किया है केवल मैं उसकी बात करूंगा, और उस सच्चाई की जीत हुई और आपको पेटेंट मिला। साथियों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, पेटेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई चीज का शोध करता है, कोई अनुसंधान करता है, तो उसको वो नामांकित कराता है। एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ विश्व के लोग होते हैं और वो उस चीज को मान्यता देते हैं कि हाँ ये जो चीज बताई जा रही है वो इस व्यक्ति की ही खोज है। तो जैसे वेंकट जी ने बताया कि जमीन के अंदर जितने हम गहराई में जाते हैं, एक सीमित दायरे के अंदर जो पोषक तत्व है धरती के वो कायम रहते हैं। तो वो मिट्टी को जब वो यूज करते थे तो पोषक तत्व ज्यादा होते थे उनके उत्पादन में, और उत्पादन क्षमता भी जो है, जो अमाउंट था, क्वांटिटी, वो भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन ये चीज उनको समझने में कई वर्ष लगे, और उसी समझ को फिर उन्होंने शोध किया और उसका उनको पेटेंट मिला। एक और चीज जो उन्होंने बताया कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करता है कि हर व्यक्ति के ऐसे खोज को एक स्टैंप लगाता है, एक मुकाम देता है कि हाँ इसको मानोन्नत किया गया है। और ऐसे ही 2020 में, जिसकी कहानी आगे चिंतला जी बताएंगे, कि 2020 में कैसे उन्होंने एक और नया पेटेंट किया और उसकी कहानी पर हम चलते हैं।
0: वो 2020 में नहीं, 2019 में, जब ये पोषक तत्व बढ़ाने के लिए वो विटामिन डी का कमी, ये डॉक्टर मेरा डॉक्टर दोस्त मेरा दोस्त क्लासमेट्स है ना 12वीं कक्षा का, वो क्लासमेट्स में 2-3 डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद वो लोग उनके साथ मीटिंग में जाते थे, मैं साथ कभी कभी ये कंपनी वाला मीटिंग रखते थे ना, वो जाते वक्त वो लोग डिस्कशन करते थे विटामिन डी तुम्हारा लेवल कितना है, तुम्हारा बॉडी का कितना है, ये सब एक वापस में बात करते थे। मैं सुना, मेरा फ्रेंड को पूछा, अरे ये विटामिन डी का क्या काम होगा? नहीं रोग निरोधक शक्ति, ये डिसीज रेसिस्टेंस का, ये सब के लिए ये जरूर इतना 100 NGL होना चाहिए एक आदमी का खून में, ऐसा बोले। तो मैं, मेरे को 2009-10 में मैं तो विटामिन ए सी तो यूरोपियन पेटेंट अब इससे सक्सेस पब्लिकेशन हुआ था, फिर ये आने के बाद जू डी क्यों नहीं आएगा बोल के उसको भी तरह का वो उसको पहचान करने के लिए मेरे 8 साल लग गए थे। ये विटामिन जब फाइल करे तब आए, पर दूसरी साल नहीं आया था। फिर उसको शोध करने से मेरा डायरी में देख के ऐसा मैं क्या करे थे जब और क्या भूल गया बोल के ऐसा करते करते 2017-18 में ये विटामिन भरपूर विटामिन ए का भरपूर रिजल्ट आ गया, मेरे महसूस हो गए ये यहाँ इस वजह से आया। तब मैं ये ध्यान करते हुए ये डी को भी ट्राई करे तो ये डी आ गए। डी आने के बाद ये हमारा यूनिवर्सिटी में जाके वहां भी टेस्टिंग करे, दोबारा एक लैब का नहीं 2-3 लैब का टेस्टिंग करा, 2-3 लैब में रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिर हमारा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोला रेड्डी जी अब इंटरनेशनल पेटेंट करो तब इसका अच्छा रिकग्निशन आएगा। तो तब अपना 2019 में कोविड नहीं था, 2020 में कोविड आया था। इसका पहचान सभी लोगों को मालूम पड़ा, ये विटामिन कमी होने के वजह से कोविड और सब बीमारियां फैल रहे, ये इंफेक्शियस डिसीजेस सब फैल रहे बोल के सबको, सब लोगों को ध्यान में आ गए कोविड के वजह से। फिर एक कोविड के समय ये पब्लिकेशन भी हो गए, डेढ़ साल हो गए, ये 11 फरवरी 2021 को ये पब्लिकेशन हो। ये पब्लिकेशन होते ही मैं यहाँ का लोकल का मिनिस्टर हमारा यहाँ केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी थे, उसके पास जाके ये पेपर मैं नेट में जो आया पब्लिकेशन हो गए वो पेपर किशन रेड्डी जी को दे दीजा। वो किशन रेड्डी जी अपना माननीय प्रधानमंत्री तक लेकर गए, वो मन की बात में प्रधानमंत्री 28 फरवरी को रेडियो प्रसंग में मन की बात में ये प्रसारण हो गया। ये ऐसे है ये कहानी।
1: तो दोस्तों आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा हमारे चिंतला वेंकट रेड्डी जी के बारे में।
2: कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने समझे और खूब पढ़े। साथियों जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे।
1: तो दोस्तों जिनके बारे में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि ये एक अपने आप में उदाहरण है कि कैसे भारत से प्रकाश जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और दुनिया को मजबूत बनाता है, दुनिया के बारे में सोचता है। ये जो सेवा भाव है ये भारत के हर बच्चे बच्चे में है, भारत की मिट्टी में है। और चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने ढूंढ निकाला वो राज कि मिट्टी में पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन डी और B12 कैसे बढ़ाया जाए, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मुकम्मल करता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। मैंने आपने हर एक ने कई बार सुना होगा कि अरे खून की जांच कराई गई और उसमें B12 की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर कुछ गोलियां दे देते हैं। खैर गोलियां खाना एक बात है, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक तौर से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पावरफुल हो उसके लिए सही भोजन करना जरूरी है। और भोजन में वो विटामिन डी और B12 हो उसके लिए मिट्टी में वो तत्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए चिंतला वेंकट रेड्डी जी का हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने ढूंढ निकाला एक ऐसा तरीका जिससे मिट्टी में वो पोषक तत्व वापस आए। तो रेड्डी जी आपसे यही बात करना था कि क्या वो कॉम्पोजिशन आप हमारे श्रोता साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं कि कैसे मिट्टी में हम इसको बढ़ाएं?
0: वो पेटेंट उसमें पेपर्स में लिखा गया है, मैं जो प्रोसीजर करे सो वो बताया गया। वो ये कैरेट और शक्करकंद और मक्का के आटा ये सब मिला के मिट्टी, ये गहराई का मिट्टी में मिला के फर्टिलाइजर का रूप में, पोषक तत्व रूप में दिया था। अपन जो फ्रेश खाना खाते हैं और धूप में गए तो अपना शरीर से, अपना चर्म से, स्किन से विटामिन डी पाया जाता ना, ऐसा ही ये क्यों नहीं लेगा बोल के मैं, ये सब विटामिन, ये एंटीऑक्सीडेंट रहेगा इसमें, ये सब तीनों में पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व को अपन तो ऐसा धूप में जाते हैं, अपन कपड़ा पहन कर जा रहे, मगर गेहूं और धान तो बगैर कपड़ा वो नेचुरली रहेगा ना। सूर्य रश्मि से लेकर वो एंटी ऑक्सीडेंट खाके सूर्य रश्मि के लेकर फिर डी विटामिन का रूप में दे दिया अपने। ये भगवान की महा, ये मेरा को महसूस, मैं ऐसा नहीं महसूस होगा मैं, मगर ये भगवान की कृपा से हुआ समझते मैं। ये क्यों बोले तो हम भगवान का नियमम माने अभी इसमें वो पीडीएफ में बताया गया, जब उत्तरायण पुण्य काल में बोनी करना, दक्षिणायन पुण्य काल किधर से बोनी करना, किधर आखिरी करना, वो नियम में चले तो धरती माँ ऐसा सूरज के पूरा राउंड घूमते ना, साल भर एक साल में एक बार घूमती ना, ऐसी उसी प्रकार की धरती माँ जैसा घूमता, वो सूरज का किरण उत्तर की ओर आ रहा है या दक्षिण की ओर आ रहा है वो देखकर उत्तरायण पुण्य काल दक्षिणायन अपना बड़ा पूर्वजों ने ऐसा कह दिया, मगर उसको अपनाते हुए वो उसको। इससे पहले मैं छोटा कहानी बोलना चाहता, ये मेरे के महसूस किधर कहाँ आया, ये कैसे आया, एक छोटा बोलना पड़ेगा, क्यों बोलते वो छोड़ के ये बोलना मुझे मेरे ठीक नहीं लग रहा।
1: जी जी, हम सब बेताब है, कहानियां सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, आप प्लीज सुनाइए।
0: ये 1986 में हमारा यहाँ पर बाल आया था, गोदावरी नदी का बाल आया था, वो नदी का किनारे राम मंदिर है भद्राचलम, मेरे से यहाँ आंध्र ये हैदराबाद से 300 किलोमीटर आगे पूर्व, वो राम मंदिर में गया, वो लोग वो ब्राह्मण पुजारी लोग रहते ना, वो लोग बोल रहे थे ये देखो ये पेड़ को इतना ऊंचा आया बगल, ये ऊंचा तक आया पानी, बाल बहुत दूर तक 3-4 किलोमीटर चले गए। मैं तो भगवान आके राम इधर भगवान के पास आया, यहाँ तो डूबा रहे हमको सुखा रहे, ये हमें क्या कर रहे पिता राम, ऐसी पूछा मैं, ये पिता हमें आपके लिए क्या गलती कर रहे, ये यहाँ तो डूबा रहे हमको सुखा रहे, ये क्या है हमको, ये थोड़ा मेरे समझाओ, मेरे समझाए तो मैं सबको बोलूंगा मगर थोड़ा मेरे समझाओ बोल के प्रेरणा। तभी 10 मिनट में सीता माँ का आशीर्वाद आ गए थे ऐसा प्रेरणा करने के बाद, तो मैं संतुष्ट हो गया तब, हाँ ये तो कुछ है इसमें, कुछ आशीर्वाद तो मिल गया। वो आशीर्वाद भी मैं ये बोल इसमें बोलने का टाइम है, ये किसान पाठशाला CVR बोल के आप क्लिक करे तो उसमें सब कुछ है, ये कैसा आशीर्वाद आया वो आप भी बिलीव कर सकते, सब यकीन कर सकते, ये आशीर्वाद तोड़ी ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद, ये राम का और सीता माँ का दोनों का आया।
1: तो क्या था ये आशीर्वाद?
0: आशीर्वाद मैं प्रेरणा कर रहे थे ना, ये राम जब दोनों पूजा होने के बाद दोनों पुजारी वहाँ काम फूल को ऐसा ऐसा करते थे, मेरा मैं प्रेरणा मेरे मन में आया, राम का आपका चरणों स्पर्श करना चाहते मगर ये पुजारी नहीं आने देते, पकड़ने नहीं देगा, मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसा हाथ दोनों हाथ ऐसा ऐसा करते हुए सोच रहे थे, तभी आइडिया है, अरे वो राम का पुजारी बोलो तो मूर्तियों का नहीं पकड़ने देगा, वो लोगों का पकड़ने देगा, पहले राम जी का पास जो खड़े हुआ वो पुजारी का चरण स्पर्श किया, उन्हें राम बोला, ये माता सीता माँ के बगल में एक पुजारी था उनका भी चरण स्पर्श करते हुए उनको कुछ भी आवाज नहीं दिया, फिर यही संतुष्ट होके मैं बाहर आके एक 10 मिनट इधर घूम के मंदिर में एक राउंड घूमने के बाद जो हम दक्षिण की ओर से आए, दक्षिण की दरवाजा, एक पश्चिम की ओर है एक दक्षिण की दरवाजा है, वो दक्षिण की दरवाजा पर हमारा कार रोके, वो दक्षिण की दर तक मैं चले गए ना, वो मेरा सामने सीताम पुजारी वहाँ आके खड़ा हुआ मेरा सामने, उनको 3 बच्ची एक ही एज वाला 16-17 एज वाला 3 बच्ची उनका सामने आ गए, वो रास्ते के सामने, तो वो लोगों को रास्ता दे ऐसा उठे सब पाओ रास्ता देने के लिए पीछे पीछे लग दिया, मेरा पाँव था, मेरा पाँव पर उन्हें रख दिया, अरे राम अभी आप मेरे को पुजारी का पाँव स्पर्श करके आया, सीता माल तो धरती माता धरती माता हमारा माँ है ना, मैं भी उनके धरती माँ का सेवा कर रहा हूँ ना, ये आशीर्वाद समझ रहे बोल के ये मेरे को बहुत संतोष हो गए, खुश मन खुश। क्यों बोले तो वही समय वो पुजारी वहां खड़े होना, उसका पीछे मैं रहना, उनका सामने तीन बच्ची, एक के बाजू एक बच, रास्ता नहीं पुजारी कुछ बाहर जाने के लिए, फिर वो लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ेगा उन्हें, फिर पीछे पांव ले लिया वो मेरा राइट लेग।
1: ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत भावनात्मक कहानी है जिसके पीछे बहुत सारी खूबसूरत फीलिंग्स जुड़ी हुई है। दोस्तों इस कहानी का अगर मैं सार ढूंढूं तो एक तो मन, मनुष्य के मन का भावनात्मक कनेक्शन धरती के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसान केवल खेती करना चाहता है लेकिन उसका कोई भावनात्मक संवेदनात्मक कनेक्शन नहीं है, कोई जोड़ नहीं है अगर माँ धरती के साथ, वो धरती को केवल जमीन समझता है लेकिन माँ नहीं समझता, तो कभी भी उसके साथ उसका वो रिश्ता कायम नहीं होगा। ये जो प्रेरणा की बात कही चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने कि ये तो उन्होंने कितनी सभ्यता के साथ, कितने प्रेम से और कितनी नम्रता से कहा कि ये मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको ईश्वर को अर्पण करता हूँ। ईश्वर जो है, माँ धरती जो है, क्योंकि धरती माँ को जानकी से सीता जी से कनेक्ट किया जाता है कि भाई ये उनकी देन है और उन्होंने सब कुछ उनको सौंप दिया, ये अपने आप में इनकी महानता दर्शाता है। लेकिन साथ में जो चीज उन्होंने कही कि अगर ये भावना रहे हमारे अंदर कि हम धरती की सेवा कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, भोजन उगाने के लिए कर रहे हैं, इन सारी भावनाओं से कहीं ज्यादा ऊंची भावना है धरती की हम सेवा कर रहे हैं, तब आपके पास भी कई ऐसे ब्यूटीफुल तरीके निकल के आएंगे, आपको भी कई ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिसको करने से आपका जो क्रिसानी है वो बहुत खिलेगा, बहुत संवरेगा। इसी पहलू में वेंकट जी, जब आपने ये देखा कि आपके पास कुछ प्रेरणाएं आ रही हैं और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने खेती में, क्या आपके आस पड़ोस के लोगों ने कभी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया, कभी उन्होंने चैलेंज किया आपको?
0: नहीं, सब लोग झूठ है, तुम क्या कर रहे, तुम दिमाग नहीं, ये कैसा धरती से, ये मिट्टी से क्या होने वाला है। आजकल हमारा गुरी स्कूल जाते से वक्त एक ही बोल रहा था, रामायण में जाके ये पाठ्यांश बोलते बोलते रामायण में जाता था, राम माने कौन है रे, सीता माने कौन है, पहले समझो बोलते थे। हम जो रामायण, राम तो दशरथ, अयोध्या का दशरथ जी का पुत्र है, सीता माता उसका जनकश्यप थी। बोल नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता रे, ये राम माने रवि, रवि माने सूरज, ये भगवान ईश्वर एक एक बजे एक मिनट में पैदा हुआ ये धरती में, ये सीता माँ धरती में से आया, ये भू माता है, बोल के समझाया थे, बहुत बार समझाया, मगर हम इनको रामायण में बहुत यह है बोल के हम भी थोड़ा नजर ऐसा नहीं रखता था, ऐसा ध्यान नहीं रखता था, मगर मेरे को वही काम में आया जो पहचानने के लिए राम माने।
1: ये जो पहचान है, ये जो पहचान है, ये दरअसल कई बार हम भूल जाते हैं, हम चीजों को ऊपरी तौर पे ले लेते हैं, शब्दों को ऊपरी तौर पे ले लेते हैं, उसकी भावना में नहीं जाते, उसके तह तक नहीं जाते। जैसे आपने बताया कि राम आपके लिए सूर्य के समान है और सीता आपके लिए धरती के समान है, तो इसीलिए वो पात्र को समझना ये बहुत जरूरी होता है, और ये तभी होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रीति बहुत सशक्त है, जब वो केवल भावनाओं में नहीं है, वो आंतरिक रीति बहुत सशक्त है, बहुत ज्ञानी है।
0: इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, एक मंदिर में मेरे की ये आया, मंदिर का परिक्रमाना कैसा करता, पहले दाहिने हाथ से कर, ये हाथ से दाहिने हाथ से नहीं कर, अपोजिट मेरे कौन रहता, मेरा आत्मा में राम आ जाता, उधर अपोजिट डायरेक्शन से, लेफ्ट राम का लेफ्ट सीता रहेगा बगल में, सो राम को अपन मन में लिया, ऐसा फिरे तो शिव को मन में लिया, पश्चिम की ओर फिरे तो शिव रहता, माता पार्वती रहेगी, ऐसा दोनों सीजन है अपने को, एक वर्षाकालीन है, दूसरा सीता काल। देखो ये भी मैंने कहा, नेचुरली सब लोग कहते हैं रहे सीताकालीन, सीताकालीन तो क्या है वो, माँ सीता का दक्षिण की ओर जाना, उत्तर की ओर आ रहा
1: है। ये बहुत ब्यूटीफुल है रेड्डी जी, आपने शब्दों के बीच में से ज्ञान को ढूंढ के निकाला। और दोस्तों क्या आपने गौर किया, इनका जो प्रत्येक किसानी से रिलेटेड जो भी इनकी प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं इनके ट्रेडिशन से, इनकी संस्कृति से, इनकी भावनाओं से कनेक्ट होता है। कई लोग अपने कामकाज को, कारोबार को भावना, भक्ति इनसे अलग कर देते हैं और इस वजह से कई बार हम थक जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो अपनी भक्ति को ही अपने कर्म में ले आया। और जो हम कहते ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इन्होंने वास्तव में धरती पर खेती में ही अपनी सारी साधना की, अपना सारा पूजा किया है और जिसका फल आज हम सबको मिल रहा है।
0: ये श्रेय भारत का ही जाएगा, क्योंकि भारत में मंदिर ये देखना है तो मंदिरों सब यही देख रहे, अपन पूजा भी यही मंदिरों में पूजा भी हो रहे, ऐसा ही पूजा, वही पूजा अपना फार्म में, खेती में करो। एक मंदिर, हमारा तेलुगु में बोलते हैं, एक मंदिर में बोलता हूँ गुड़ी, ये एक पाठशाला को बड़ी बोलते, एक खेती को मड़ी बोलते। ये खेती गुड़ी मड़ी, ये बड़ी गुड़ी मड़ी बोलते, मड़ी बोलता पाठशाला, गुड़ी बोलता मंदिर, मड़ी बोले तो खेती, खेती का प्लाट, एक प्लाट को मड़ी बोलते तेलुगु में
1: जी।
0: ये चौका, चौकाने वाला, चौका तरफ रहने वाला, वो मड़ी का स्क्वायर को मड़ी बोलते। ये तीनों को अपन याद रखे तो अपने को, कभी राम का युग में हम सुने थे महीने में 3 बारिश हो रहा है, जब बारिश का क्या चिंता है, जब शिव जी गंगा को सिर का ऊपर से लाते ना
1: शिव का ये बहुत ब्यूटीफुली बताया इन्होंने कि अगर हम आज भी 3 चीजें नहीं भूले, एक तो मंदिर, दूसरा पाठशाला और तीसरा अपनी खेती, जो इन्होंने अपने तेलुगु भाषा में कहा गुड़ी मड़ी और पड़ी, मड़ी गुड़ी पड़ी और मड़ी, तो इसलिए मतलब ईश्वर का साथ नहीं भूले, शिक्षा को नहीं भूले और कर्म को, अर्थात जो अपना कार्य क्षेत्र है उसको पूरा सम्मान दीजिए, तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। और खेती को केवल खेती नहीं, लेकिन उसको एक पूजा के समान, एक इबादत के समान उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वेंकट जी, आप अगर हमें ये बताएं, क्योंकि आपने बताया कि ये केवल भारत में ही होता है, भारत में ही हम कृषक को अन्नदाता का मान देते हैं, भारत को ही हम धरती को माता के रूप में मानते हैं। आज भी किसान जब अपने खेती में जाता है तो उसको प्रणाम करता है, आज भी नदियों की पूजा होती है, तो भारत में ये भावना प्रधान और प्रकृति के प्रति सम्मान बहुत स्ट्रांग है। आपने भारत के कई कोनों का भ्रमण किया है, आप बहुत जगह पे गए हैं, लेकिन आप रहते हैदराबाद के पास हैं, तो जब आप भ्रमण कर रहे थे पूरे भारत का, कौन सी एक ऐसी चीज आपने पूरे भारत में देखी जो पूरे भारत को जोड़ता है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से कौन सी वो बात है जो भारत को भारत बनाती है?
0: नहीं नहीं, वो भारत बनाने का, बैलेंस करने का एक ही शक्ति है, भगवान, जो सेंटर पॉइंट है ना, वही भगवान, दोनों हाथ लेके अपन प्रेरणा कर रहे, सरेंडर हो रहे, यही सबका भारत, दक्षिण किया था, उत्तर किया, एकदम ऐसे ही अपना गर्मी को सर्दी को संतुष्ट, इक्वल करना, यही है सेंटर प्लेस, भगवान भी सेंटर प्लेस, जब बड़ी में टीचर भी सेंटर प्लेस में बैठ जाए तो मड़ी में भी सेंटर प्लेस जाके फिर घूम करो, फिर आके दक्षिणायन में ऐसा करो, उत्तरायण में ऐसा करो, तो तब अपन सबको एक जगह में लाया, सुख दुख दब इधर प्रेरणा भगवान को दे दिया, जो आप दिया वो ले ले, हम सरेंडर हो गए आपके सामने, है ना, मूर्ति के सामने सरेंडर हो गए, ये पूजा भी हो रही, यहाँ भी पूजा रहे, ये पूजा की तरह मन मड़ी में भी पूजा कर रहे, खेती में है, ये गुरु भी गुरु का स्थान में गुरु ही बोलेगा, सब विद्यार्थियों को एक ही पाठ बोलेगा, एक दूसरा को दूसरा नहीं बोलेगा, सबको एक ही बोलेगा, भगवान भी सबको एक ही तरह देखना है, बोलता सम्मान करो, रेस्पेक्ट, मदर फादर, ये माँ बाप, गुरु और भगवान, ये तीनों सीढ़ी चढ़ने के बाद ही भगवान का प्रेरणा मिलेगा आपको। ये तीन छोड़ के भगवान मालूम हो गए मेरा नहीं, वो नहीं होगा। या तीनों का आशीर्वाद लिए तो ही भगवान का आशीर्वाद आएगा।
1: That's good, that, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि पूरे भारत को जोड़ने की जो कड़ी है, पूरे भारत को जोड़ने वाला जो सूत्र है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म है, ईश्वर है, क्योंकि वही ईश्वर हर एक को जोड़ता है, हर एक को देता है, देने वाला भी वही है। इसलिए आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि आपको भगवान के द्वारा ही सब में समानता नजर आती है, विच इज वेरी नाइस। लेकिन एक चीज यहाँ जो आपने बात कही कि आप अगर अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं, वही परिक्रमा अगर आप अपने खेती में भी करते हैं या अपने किसानी में भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भावना से जुड़ रहे हैं, आपका सम्मान बढ़ता है उसके प्रति जो काम आप कर रहे हैं। तो क्या आज आप देखते हैं किसानों में या किसानी जो कर रहे हैं उनमें ये भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है? Have you observed it?
0: बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, किसान नहीं, वैज्ञानिक भी भगवान को या कौन सी जगह में शुरू करना आखिरी करना नहीं देख रहे आजकल की दुनिया में। पुराने जमाने में देखते थे ये सब कुछ हो रहे थे अच्छा, मगर अब छोड़ दिया। जब धर्म को नहीं निभाते, धर्म क्या कहता, ये कृष्ण परमात्मा ने बोलेगा ना, जब युग युग में धर्म को अगर ये अर्जुना
1: मैं आता हूँ बार बार, मैं युगो युगो में आकर के आपको मदद करता हूँ, ऐसा ईश्वर का वादा रहा है। हाँ, जी
0: यही है ना। फिर अभी सभी लोग भूल गए, साइंस आने के बाद, वैज्ञानिक आने के बाद माँ बाप को भूल गए, ये लोग ओल्ड बोलते। फिर सूरज चांद बोल रहे क्या, धरती माता बोल रहे क्या?
1: कितना अच्छा सवाल पूछा कि अगर आप अपने माँ बाप को बुजुर्ग मानते हैं, ओल्ड मानते हैं, तो क्या धरती, सूर्य, चांद ये हमारे माँ बाप या हमारे पालक पोषक नहीं है, तो क्या इनको भी हम ओल्ड कहते हैं? बहुत बढ़िया।
0: गुरु, गुरु तो संबोध किया तुमको पाठ्यांश, उन्हें भी पुराने बोलते हैं, अपडेटेड नहीं होता। अपडेटेड नहीं हुई है तो भी माँ बाप को ख्याल करके खाया पिया, आप अच्छा रहा, आशीर्वाद लेके जाओ। वो कितना पूरा एक डॉक्टर वैज्ञानिक होने के बाद ये लोगों को देखने क्या क्या, वो ओल्ड डेट आउटडेटेड है, ये समझ में नहीं आए, कुछ भी समझने में नहीं आए तो भी फिर उसका आशीर्वाद लेके कर खाया पिया बोल के घर में रख को। आजकल क्या माँ बाप को ले ओल्ड एज हाउस में, तेरा ये तरीका है क्या?
1: जी हा? ये आपने बहुत कुछ गहरे प्रश्न पूछे हम सबको कि क्या माँ बाप कभी सच में बुजुर्ग या ओल्ड हो जाते हैं। ये जो ओल्ड शब्द है इसका मतलब भी होता है पुराना, तो क्या माँ बाप पुराने हो सकते हैं, क्या धरती, चांद, सितारे, सूर्य ये पुराने हो सकते हैं? अगर हमें ये आज भी संभाल रहे हैं, चाहे धरती माँ है जो भोजन के द्वारा, घर के द्वारा, हर रीति से हमें संभालती है, हमारे माता पिता हैं जो अपने आशीर्वाद से, अपने गुड विशेष से, अपनी दुआओं से हमें आज भी पालना देते हैं, भले चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी पैसा कमाएं, कितने भी जीवन में उन्नति को पा जाएं, लेकिन हर उन्नति के पीछे ये माता पिता, प्रकृति, परमात्मा, इनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, जिसकी वजह से हम इन ऊंचाइयों को पाते हैं। चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने आज के हमारे इस एपिसोड में हमें इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सहज भाषा में समझाया कि व्यक्ति को कभी भी अपने आध्यात्मिक आधार को नहीं भूलना चाहिए। उसका आध्यात्मिक आधार जो है, हमें बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति से जूझने के लिए हमें समाधान देता रहेगा। समाधान ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही वो समाधान छिपा हुआ है, और बार बार उसी समाधान में रमते हुए मन में ही शोध चलता है, और उसी शोध से फिर समाधान निकल के आता है, और उस समाधान को फिर पूरी दुनिया पूछती है, जानती है, प्रेरणा देती है, जैसे चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने किया, और आज उनको पूरा देश जानता है, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब पद्मश्री सम्मान से आपको सम्मानित किया गया था वेंकट जी, तब आपको कैसा लगा? मतलब डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या रिएक्शन था, लोगों का रिएक्शन कैसा था?
0: देखिए, पद्मश्री से बढ़िया मेरे को राम मंदिर में जो आशीर्वाद आया तो बहुत मन पसंद आया। सबसे जिंदा ये जिंदगी में जब राम का आशीर्वाद आया, फिर सीता माँ जी के आने के बाद 4 साल के बाद राम का भी आ गए थे, फिर तो तब ये सब अपना माननीय प्रधानमंत्री भी ये पद्मश्री से सम्मानित, और मन की बात में मेरा ख्याल में ये नया आविष्कार है मन की बात। क्यों बोलते, इतना प्रधानमंत्री को देखे, मैं सभी प्रधानमंत्री का देखे थे बचपन से, मगर ये प्रधानमंत्री जब भी मेरा बचपन में रेडियो माध्यम था, अभी भी है, अभी थोड़ा ज्यादा है, मगर उसका माध्यम से अरे कोने कोने देश के कोने कोने आदमी तक पहुंचना, उसका मन का बात लेना और सभी दुनिया को फैलाना, ये नया आविष्कार है प्रधानमंत्री का भी। अपन मन की बात क्यों कर रहे हैं, ये नया आविष्कार है, ये भी एक आटा भगवान की वो आशीर्वाद है उसका ऊपर।
1: जी बिल्कुल, और जैसे वो मन की बात करते हैं और उसमें कई बातें वो कह जाते हैं, ऐसे आज आपने भी हमारे साथ अपने मन की बात को शेयर किया और हमें ये भी बताया कि आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी सम्मान से, किसी भी नाम और किसी भी प्रमाण पत्र से बढ़कर है।
0: एक बात, राम का आशीर्वाद मेरे को मंदिर में आया, फिर बाद में हमारा फार्म में आया, जब ओलावृष्टि हो रहा था, भरपूर फसल अंगूर था, वो सायंकाल में 4:30-5 बजे हो रहे इवनिंग, मैं वो बाग के अंदर से फार्म हाउस में आया घर में। वापस आने के बाद हमारा पिताजी फोटो था वहां पर, प्रेरणा करे तो एक खिड़की उत्तर की ओर है, एक पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर सूरज वो 5 बजे हो रहे ना, बादलों का नीचे से सूरज भगवान आया, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप रहने के बाद ये क्या हो रहा है, फिर प्रार्थना करे, फिर वहां बंद हो गए, फिर बंद होने के बाद मेरे का आपका पावर तो यकीन हो गया, हमें और क्या करना, क्या और अच्छा करना, और क्या भूल जा रहे वो समझाओ मेरे को। बोले तो एक एक ईयर, एक एक साल को तोड़ा तोड़ा 1986 से 1986 से अब तक 2023 तक देते ही एक एक साल एक बताते, ऐसा समझाते आया, अब तक पूरा थोड़ा पूरा आया, समझो 100% नहीं आया मगर 95% आया हूँ।
1: नहीं नहीं, आपके हिसाब से आप 95% है, हमारे हिसाब से तो आप 100% है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं इससे केवल आप तक ही नहीं, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आशीर्वाद हर एक किसान तक पहुंच रहा है, हमारे तक पहुंच रहा है। मैं समझता हूँ विटामिन डी और B12 ये उनका आशीर्वाद ही है जो आपने उन तक पहुंचाया है।
0: ये पहले सी आया सबको, ये कॉम्पोजिशन ऐसा लिखा है, जब लिखते वक्त पेटेंट करते वक्त कॉम्पोजिशन टू एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स को कोई भी प्लांट में अपन उगा बढ़ा सकते, एनहांस बोले तो बढ़ाना, ऐसा लिख दिया ये सोच समझकर। और वो पहला पेटेंट वाला भी ए प्रोसेस टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द कल्टीवेटेड लैंड्स, जब अपन कास्ट करते हैं ना उसका जड़ 3 फीट तक ही जाएगा, 3 फीट गहराई, और 4 फीट से वो बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, वो अपना पैर का नीचे कितना खाना रहे तो मुंह नहीं जाता ना हाथ नहीं जाता, वो ऐसा फायदा नहीं है ना।
1: बिल्कुल जी,
0: वो गहराई का मिट्टी ऊपर आ गए तो जड़ के पास आ गए तो अपने आप पोषक तत्व ले लेता, वही सूखी मिट्टी आए तो हो रहा। ये फल में मैं राम के नाम का याद किया, क्यों? राम का नाम बहुत मीठा मीठा रहेगा, राम का नाम मीठा, वो मीठा कैसा रहेगा? ये सूखी मिट्टी में थोड़ा पानी डाले तो गर्मी में बारिश होता ना, कितना खुशबू आता। वही मिट्टी को पौधे, फल का पौधे को दिए तो मीठा फल नहीं आएगा। वो खुशबू वाला मिट्टी को फल का जड़ के पास, पेड़ के जड़ के पास दिए तो मीठा फल आएगा। वो कहते हैं अरे कितना मीठा, वो कितना मीठा किधर से आया? राम का नाम से आया, धूप, धूप से सुखी हुआ ना।
1: मैंने देखा वेंकट जी, आप जब बात करते हैं तो आप भावना, कविता, सोच और शोध हर एक चीज को मिक्स कर देते, एकदम बहुत अच्छा एक मिक्सचर क्रिएट करते, एक सैलेड। लेकिन ये जो आपने ये बात तो कही कि राम का तो नाम जो है ना, जी जी
0: ये तो सच्चा है ना
1: जी,
0: ये तो गलत नहीं होता, साबित नहीं होता, सच्चा है,
1: बिल्कुल नहीं है जी। क्योंकि ये आपका अनुभव है, तो अनुभव तो हमेशा को एकदम
0: ये
1: सत्य होता है।
0: देखो अपना अरब कंट्री में 44-50 डिग्री तक हुआ खजूर आता, वो कितना मीठा रहता, वो धूप का वजह से यार। वो खजूर का मीठा कैसा रहेगा? बहुत मीठा रहेगा वो, बहुत कैसा है राम का नाम से।
1: तो वेंकट रेड्डी जी, आपसे जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे किसानों को और जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंच रहा है कि आस्था, विश्वास, ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों। ईश्वर पे आस्था, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद पे आस्था और अपने कर्म पर आस्था अगर है तो आप तक सफलता जरूर पहुंचेगी। और जैसे कि चिंतला वेंकट रेड्डी जी कह रहे हैं कि कैसे ईश्वर की याद से उन्होंने अपनी खेती में पग पग पे समस्याओं का समाधान मिलता रहा है, समस्याओं से जूझने का रास्ता मिलता रहा है। ठीक ऐसे ही शाश्वत यौगिक खेती भी एक माध्यम है जहां पर किसानों को शाश्वत प्रक्रिया किसानी की क्या होती है और उसमें योग का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। मैं समझता हूँ जो रेडियो मधुबन के रेगुलर श्रोता हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में कि कैसे तपोवन, जो कि हमारा शांतिवन कैंपस के बाजू में छोटा सा जगह है जहां पर यौगिक खेती की क्लासेस लगती हैं, अगर आप चाहते हैं तो आकर के कभी जुड़ करके उनका अनुभव कर सकते हैं और उसको वापस यूज करके देख सकते हैं कि वो कितने कारगर है। लेकिन कोई भी पद्धति तब कारगर होती है जब उसमें विश्वास होता है, निष्ठा होती है, प्यार होता है और लगन होता है। चिंतला जी, आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जैसे आपने बताया कि सब कुछ ही हमको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और हम उसको कोशिश करेंगे कि चूंकि वो इंग्लिश में है उसको कभी हिंदी में उपलब्ध कराएं हमारे सभी साथियों के लिए। लेकिन उसके पहले आपसे हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें एक एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। क्या आप रेडी हैं?
0: वेरी
1: नाइस। ओके, सबसे पहला सवाल, धरती क्या है?
0: धरती भूमाता है और इसमें मनुष्य मानव ही एक ही नहीं, सब पशु पक्षी पेड़ सब कुछ आ जाएगा। धरती माने समुद्र, नदी, मनुष्य, सब जीवाणु, प्राणी कोटि धरती।
1: तो आपने कहा धरती माता है, भू माता है और वो सिर्फ मनुष्य की माँ नहीं, हर प्राणी की माँ है। वेरी नाइस। वृक्ष क्या है?
0: वृक्ष माने जो पेड़, ये ऑक्सीजन, आजकल की साइंस में ऑक्सीजन लेके अपन कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेके ऑक्सीजन दे रहे ना, अगर ये मनुष्य नहीं तो वृक्षों के लिए भी बारिश बरसता है। मनुष्य जब भूल जाते हैं, ये राम मंदिर में प्रेरणा करे तो वहाँ फॉरेस्ट ज्यादा था, फॉरेस्ट में खूब पानी बरसा, वहाँ पर आदमी नहीं।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, वो ये नहीं सोचता कि बारिश पेड़ों के लिए भी हो रही है, बारिश सिर्फ हमारे लिए नहीं। तो वृक्ष जो है वो बारिश का एक कारण भी है। बिल्कुल। तीसरा सवाल,
0: अपन को खाना देना का वृक्ष है ना, ये पेड़ है ना
1: जी है? तो अन्न देता, वर्षा दाता, बहुत कुछ है वृक्ष। तीसरा सवाल आपसे,
0: अब आदमी नहीं है तो भी, वृक्ष रहे तो भी, ये सब कुछ पाया जाता है।
1: जी जी बिल्कुल। तीसरा सवाल आपसे, सेवा क्या है?
0: सेवा माने कि मन का करना, मेरा मन से, हम खिलाना बोलते, मेरा मन से खिलाए तो वो बहुत पसंद, वो पकाना वाला भी पकाते पसंद का, अच्छा खाना पकाते तो मन से देना, जो मन से दिया सो वो पकाने वाला अच्छा पका के फिर उसका टेस्ट भी स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा, यह सेहत के लिए
1: सेवा। तो सेवा मतलब मन से देना, चाहे आप मन से समय दे रहे हैं, चाहे आप मन से कुछ काम कर रहे हैं किसी के लिए, मन से जब आप देते हैं तो वो सेवा है। चौथा सवाल आपके लिए, सुख क्या है?
0: सुख ये टेम्पररी है, इसके साथ दुख भी रहेगा, सुख ये कि नहीं, इसके साथ दुख भी रहेगा, मगर सुख में दुख में दोनों को एक ही तरह से देखने से आदमी ये बेकार नहीं होता, वो संतुष्ट होता।
1: वेरी नाइस,
0: दोनों बहुत बढ़िया। एक ही जोड़ना, चढ़ाव रेस्ट के लिए,
1: चढ़ाव तो आपके लिए, आपके लिए सुख मतलब संतुष्टता, जहां पर आप एक समान है, जहां स्थिरता है, जहां स्टेबिलिटी है। वेरी नाइस। पांचवा सवाल, भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत एक महान देश है, ऐसा देश कि दुनिया के अंदर ये मूर्तियों को, ये शिव पार्वती सीता राम को मंदिर में बिठा के प्रार्थना करते, यही है माता पिता को ये बिठा के ये परिक्रमणा करते हैं ना, इधर राइट को पिताजी रहता, लेफ्ट को माताजी रहता, परिक्रमण ऐसा दाहिने हाथ से वो पिताजी पहले आता, बाद में माता आता है ना, जब पिताजी पिताजी के पास एक बीज बोनी करके माताजी को लाओ, जैसा धरती माता सूरज के ऐसा लाते,
1: चारों तरफ परिक्रमा लगाती हैं,
0: यही प्रक्रम है।
1: वेरी नाइस। आपने पूरा जो ये प्रोसेस है किसानी का, उसको एकदम अपने परिवार की तरह कर दिया।
0: ये दुनिया में ये माता पिता, ये ऐसा शिव पार्वती, ऐसा सीताराम को कोई भी, मैं किसी मस्जिद में ना तो चर्च में नहीं देखा, ये अपना भारत में ही देख रहा, भारत का मंदिर है तो उसमें ही देखते हैं अपन। इससे बढ़िया क्या होना भारत को।
1: बहुत सुंदर। भारत में भगवान को भी घर मिला है, भारत में भगवान को भी माता और पिता के रूप में एक दर्जा दिया गया है, और भारत में ही हम कह सकते हैं कि भारत में भगवान के पास घर भी है और परिवार भी है।
0: ऐसा परिक्रमणा भारत में ही है, ये मंदिर में ही है, दूसरी जगह नहीं रहेगा परिक्रमणा
1: जी।
0: मैं एक अमृतसर में भी देखा, वहां भी परिक्रमणा देखा, मगर ऐसा सीता माता, ऐसा शिव पार्वती ऐसा नहीं देखा।
1: जी तो दोस्तों, आपने सुना जैसे चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने बहुत हंसते हंसते कह दिया कि भाई भारत वो जगह है जहाँ भगवान का घर भी है और भगवान का परिवार, हम सब सुन रहे हैं बैठ करके उनके बारे में। चिंतला जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, हु इज चिंतला वेंकट रेड्डी? चिंतला वेंकट रेड्डी कौन है?
0: मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ये जन्म दिया ये धरती में साधारण व्यक्ति का रूप में धर्म, आप पहचाना मैं कौन हूँ, आप पहचाना मैं कैसा बोलू।
1: बहुत अच्छा सवाल कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी साधारणता ही मेरी महानता है, लेकिन मेरी महानता आपने पहचानी, ऐसा चिंतला वेंकट रेड्डी जी का कहना है। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं और दिल से मानते हैं कि चिंतला वेंकट रेड्डी परमात्मा का वो हथियार कहें या हाथ कहें, राइट हैंड है, जिन्होंने हम सबके सेहत के लिए, धरती माँ के सेहत के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। तो साथियों, चिंतला वेंकट रेड्डी जी का ये मैसेज था कि आप कुछ भी किसानी करने के पूर्व पहले प्रकृति को समझे जरूर, थोड़ा समय दे, थोड़ा समझे, ऋतु चक्र को समझे, दिन में सूर्य के चक्र को समझें और उस समझ के आधार पर अपने पूर्वजों के द्वारा जो बहुमूल्य ज्ञान हमारे पास रखा है उस धरोहर को इस्तेमाल करते हुए किसानी करेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ साथ धरती का नुकसान भी नहीं होगा। अंधाधुन खेती आज धरती के लिए एक अभिशाप बन चुका है। आइए उसको हम समझ करके करें ताकि धरती के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो। यशस्वी भारत कार्यक्रम में सुन रहे थे आप साथियों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कई अपने बेहतरीन शोध के द्वारा उर्वरक शक्ति धरती में बढ़ाने के लिए साथ ही पेड़ पौधों के द्वारा या उपज के द्वारा मनुष्यों तक विटामिन डी, B12 जैसे बहुमूल्य पोषक तत्व पहुंचाने के लिए कई अच्छे अच्छे शोध किए, जिनका डंका न केवल भारत में लेकिन पूरे देश विदेश में भी बजता है। कई कहानियां हैं इनके बारे में जो आप पता लगा सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य था कि आज उन्होंने समय दिया और 90.4 FM रेडियो मधुबन के स्टूडियो में वो जुड़े हमारे साथ। यशस्वी भारत कार्यक्रम यूं ही आपके बीच में इस प्रकार के बहुत ही हमारे भारत के यशस्वी रत्नों को लेकर के आता रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन। जय हिंद, जय भारत।
3: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मिली खुशी नहीं होती जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानती हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से किसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा, अब देखो

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट है संस्कारों का जीवन में महत्व। संस्कार एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की नींव है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, सुधार या परिष्करण। यह हमें सही और गलत का भेद समझाने में सहायता करता है। यह हमारे चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। आइए अब हम समझते हैं संस्कारों का अर्थ क्या होता है। संस्कार शब्द संस्कृत के स उपसर्ग और कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्णता की ओर बढ़ना या परिष्करण करना। यह नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आचरणों का समुच्चय होता है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में संस्कार की महत्ता होती है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन। संस्कारों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक संस्कार शामिल हैं। धार्मिक संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जैसे गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि आदि। ये व्यक्ति के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने में सहायता करते हैं। सामाजिक संस्कार, ये व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दूसरों की मदद करना। नैतिक संस्कार, नैतिकता हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सत्य बोलना, अनुशासन में रहना, किसी को नुकसान न पहुंचाना आदि नैतिक संस्कारों के उदाहरण हैं। आइए अब हम समझते हैं पारिवारिक संस्कार। परिवार ही संस्कारों की प्रथम पाठशाला होती है। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति के व्यवहार में झलकते हैं। बड़ों का सम्मान करना, दया और करुणा रखना, सहयोग की भावना रखना आदि पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा है। संस्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता। समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है। संस्कारों के अभाव में व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। आज के समय में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ मची हुई है, वहां अच्छे संस्कार ही हमें नैतिक पतन से बचा सकते हैं। हम इस चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कार किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हमें एक सशक्त समाज और सभ्य पीढ़ी का निर्माण करना है तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे। संस्कार ही वह आधारशिला है जिन पर सशक्त व्यक्तित्व और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को सहेज कर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए पुणेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहिए हमेशा की तरह। खुश रहें, खुशियां बांटें। धन्यवाद।
1: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांति.
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
4: थैंक यू.
3: मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है.
4: सेम हियर.
3: बीइंग शक्ति गिव्स मी शक्ति.
4: सी इवन जस्ट द वर्ड. सी हर शब्द में ही कितनी पावर है, हर थॉट में कितनी पावर है. जैसे हम एक अच्छी थॉट भी क्रिएट करते हैं, अभी तो उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं देखा. सिर्फ वो थॉट क्रिएट करना और वो शब्द का उच्चारण करना ओनली फील्स नाइस.
3: हाँ, लेकिन कोई भी चीज के अंदर मैं अपना बोल आई एम शक्ति, बीइंग शक्ति, आई एम शक्ति, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है. एकदम लो फीलिंग में से एकदम कम से कम उस वक्त चेहरा बदल जाता है, थॉट्स बदल जाती है, चाल बदल जाती है, कितना फर्क पड़ता है.
4: बिकॉज द होल दैट्स द सीड ना. द कॉन्शियसनेस में चेंज आ रहा है. ये पहले कॉन्शियसनेस थी, नहीं मेरे पास पावर कहाँ है, गलती उनकी थी तो ठीक है ना, गुस्सा करना तो अलाउड ही. हम 10 रीजन जस्टिफाई करेंगे. सपोज आई एम वीक राइट नाउ. वीक इन द सेंस दिस इंस्टेंट आई वॉज वीक. ओके, कि कुछ हुआ एंड आई रिएक्टेड. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. व्हाट नॉर्मली वी वर डूइंग वाज कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने किया ही ऐसा. एक एक थॉट डिसएम्पावरिंग है. हम जस्टिफाई कितना भी कर दें उसको, लेकिन वो एक एक थॉट जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में जस्टिफाई कर रहे हो.
3: लेकिन जस्टिफाई करने से और बढ़ता है ना फिर वो,
4: क्योंकि जस्टिफाई कर,
3: अगर मैं जस्टिफाई करूं कि नहीं उसकी गलती थी, मेरी वीकनेस थी, तो फिर और वो और पक्का हो जाएगा.
4: मेरी वीकनेस थी तो हमने बोला ही नहीं ना कभी.
3: मेरी वीकनेस नहीं थी.
4: हाँ.
3: ये तो उसकी गलती थी. अगर ऐसे करता जाऊं तो फिर वो जस्टिफिकेशन में वो जो आदत है और पकती जाएगी. वो संस्कार और पक जाएंगे.
4: इट्स लाइक ओके, आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड. ठीक है, अब ये जो सड़क है ये स्मूथ नहीं है, इस पे एक एक एक एक ईंट ऐसे पड़ी हुई है. अब उस पे चलते समय मेरा पैर में दर्द हो रहा है. ठीक है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सड़क ऐसे ही है. अगर इस पे चलते हुए मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ है.
3: कमजोरी यहाँ भी, और थोड़ा ध्यान दे के भी तो चल सकते.
4: हाँ, पर कमजोरी तो है ना. क्योंकि एक्चुअली हम चल सकते हैं इस पे बिना दर्द हुए. लेकिन अगर क्योंकि अभी थोड़ा दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ पर है, अगर वो एक अवेयरनेस भी आ जाए कि ये कमजोरी है, आई हैव टू टेक केयर. इफ आई डोंट एक्सेप्ट कि कमजोरी यहाँ पर है, और मैंने अगर जस्टिफाई किया कि सड़क ही खराब है, ये कोई सड़क है, ऐसे होती है सड़क, एक एक एक टाइल रखी हुई है, स्मूथ नहीं बना सकते थे, तो इमीडिएटली आई टेल माई माइंड यूर फाइन, प्रॉब्लम सड़क की, फिर नेक्स्ट कुछ और आएगा. एंड एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कमजोरी यहाँ पर है, मुझे इस पर काम करना है, मैंने कहा कमजोरी दुनिया में है, गलतियां दुनिया में है, कमजोरियां दुनिया में है, नेगेटिविटी दुनिया में है, वीकनेस दुनिया में है. हमने कब कहा हमारे अंदर वीकनेस है? हमने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई
3: भी दिया
4: तो और रिएक्शन हो जाएगा.
3: हम तो लड़ पड़ते. आप मुझे बोल रहे हो यार, दिख नहीं रहा वो कैसे बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी टेढ़ी सड़क है.
4: सिंपल.
3: आपको मतलब सिंपल दिख नहीं रहा इतनी छोटी सी बात.
4: सिंपल. तो पहले सड़क,
3: और एक्चुअली मुझे नहीं दिख रही
4: इतनी छोटी. पहले सड़क गलत थी, अब वो व्यक्ति भी गलत है जिसने कहा.
3: इसलिए लोग डरते हैं बताने के लिए.
4: तो अब अगर इसको जस्टिफाई करना, एंड दिस डजंट मीन कि हम अपने आप को कहें आई एम वीक, नहीं. लेकिन इवन जैसे ये थॉट क्रिएट किया कि आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये थॉट मेरी थिंकिंग के अंदर एक चेंज जब लाना शुरू करेगी, और फिर उसको मैं अपने रिएक्शंस में ध्यान रखूंगी कि कोई बात आई, आई एम पावरफुल. सी व्हेन यू सिटिंग नाउ साइलेंस, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ किसी ने कहा नहीं, एंड यू सेड द वर्ड बीइंग शक्ति, एंड यू सेड बहुत अच्छा लगता है कहके, राइट? अब इसको, इसी शब्द को सिर्फ उस समय याद रखना है जब कोई बात आएगी कि बी शक्ति.
3: यही तो बेसिक प्रॉब्लम है. उस समय याद आए तो फिर और क्या चाहिए, उस समय दूसरी चीज ओवर पावर कर जाती है ना.
4: हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एक ग्रूव है ना जो बना है पुरानी आदतों का, नई आदत का एक ग्रूव बनाना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करने के बाद भी, रिएक्ट करने के बाद भी, हो गया रिएक्शन, इट डजेंट मैटर, गुस्सा भी कर दिया, इट डजेंट मैटर, लेकिन व्हेन वी सिट बैक, रिफ्लेक्ट, सिर्फ उस रिफ्लेक्शन में जस्टिफाई नहीं करना अपने रिएक्शन को.
3: अच्छा, अकेले में,
4: अकेले में हो गया गुस्सा, इट्स ओके, ये पुराना ग्रूव है, ये वर्क करेगा अभी.
3: चलिए, आपकी ये बात मानता हूं.
4: गुस्सा भी नहीं, जेलेसी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, कोई भी अनकंफर्टेबल सा.
3: चलो, मैंने जो भी किया उसको मैं अकेले में जस्टिफाई नहीं करूं तो फिर क्या करूं?
4: मैं अकेले में रिफ्लेक्ट करूं जब उस बात पर, तो मैं अपने आप को समझाऊं कि ये जो मैंने रिएक्शन किया,
3: अगर मैं मानू तब समझाऊं ना.
4: क्या मानू?
3: कि मैं गलत था.
4: हाँ, तो वही तो स्टेप वाइज है ना, अवेयरनेस कि ये अनकंफर्टेबल था, एक्सेप्टेंस कि हाँ ये मेरा रिएक्शन, इट डजेंट मीन कि आसपास के लोग गलतियां नहीं कर रहे, कर रहे हैं, चीजें वैसी हो रही हैं जो सही नहीं है, हमें कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, विच वी कैन नॉट से कि वो राइट है, लेकिन हमारा राइट और रॉन्ग किसका ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. माई रिएक्शन, माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन. सड़क खराब है, पहाड़ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर मुझे पहाड़ी इलाके में रहना है और चलना है तो मेरे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए. आई कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग.
3: तो क्या करें अगर जहां पर कोई चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं है तो छोड़ के हट जाए? बस
4: छोड़ के हट नहीं सकते ना. सपोज परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो परिवार को छोड़ देंगे, काम की जगह पर ठीक
3: है
4: तो फिर यस,
3: तो कहीं रह नहीं पाएंगे.
4: तो सारा फोकस किस पर है, सारी अटेंशन किस पर है कि हाँ चीजें हैं लेकिन मेरी पावर कहाँ है. सी दिस इज अगेन, वेयर इज माई पावर? आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द पीपल. इफ यू कैन चेंज पीपल, चेंज देम, बट यू डोंट हैव दैट पावर.
3: हमको सिखाते थे कि आपको भागना नहीं है, जागना है.
4: अवेकनिंग ना. हाँ. यही तो अवेकनिंग है ना.
3: भागना और जागना में कितना अंतर है?
4: हाँ, क्योंकि हम भाग सकते भी नहीं. कहाँ से भागेंगे, कितना भागेंगे
3: और कितनों,
4: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे भी अगर भाग लें, अकेले जाके जंगल में भी रह लें, अपने मन से कहाँ भागेंगे, उसके साथ तो रहना ही है,
3: तो बेटर है जागना ही है.
4: जागना मीन्स क्या? जागना मीन्स ये कि माय एवरी रिएक्शन, माई एवरी रिस्पॉन्स इज माई क्रिएशन, आई एम शक्ति, तो मेरा हर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए. तो अगर कुछ हो भी गया है, इट्स फाइन, जब रिफ्लेक्ट करें उस पर, और रिफ्लेक्ट करें जरूर, ये नहीं कि होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक के बाद एक बातें आती जा रही है, हम रिएक्ट करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि शक्ति कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है.
3: अच्छा, अगर ये शक्ति कम हो जाए तो जो अकेले में बैठ के अपने से बात करना और चिंतन करना है, समझाना है, वो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए, वो भी कम हो जाएगी.
4: सी इट्स लाइक अगेन, मैंने सड़क पे चलना शुरू किया, पहली बार चली, दर्द हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये दर्द क्यों हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कमजोरी है, नहीं किया. मैंने कहा सड़क ही गलत, चलना तो उसी सड़क पे था. चलते चलते यहाँ ध्यान नहीं दिया तो दर्द तो बढ़ता गया. दर्द बढ़ते बढ़ते साथ में मैंने ये भी अब बोलना शुरू कर दिया, ये सड़क बनाई किसने, कौन है, समझता नहीं है कैसी बनाई. अब ये करते करते कमजोरी और बढ़ती गई, फिर धीरे आके अगली बार तो गिरी गई उधर, तो चोट और बढ़ गई, करते गए विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक कि यहाँ कुछ करना था. तो लाइफ की जर्नी कैसी हो जाएगी?
3: बाप रे कितनी मुश्किल हो जाएगी
4: लाइफ की जर्नी कैसी हो जाएगी। और फिर एक दिन हो सकता है गिर गई और सारे ही बोन्स टूट गए और तब कहें अब कुछ करना चाहिए।
3: जब चिड़िया चुग गई खेत,
4: दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। जब थोड़ा दर्द है, सी मोस्ट ऑफ अस टुडे, मोस्ट ऑफ अस आर इन दैट स्टेज जब थोड़ा दर्द है, स्ट्रेस है, चिंता है, गुस्सा है, ये थोड़े दर्द वाली स्टेज है। इस थोड़े वाली दर्द वाली स्टेज में अगर हम किसी को कहते हैं थोड़ा सा रोज स्टडी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, नहीं टाइम नहीं है, कहां अभी थोड़ी ये
3: कल देखता हूं, देखते
4: तो वो थोड़ा दर्द धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है। फिर आज इतनी यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके साथ भी चलते जाते हैं, उसके साथ भी चलते जाएंगे तो भी नहीं रुक रहे हम कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, उसके साथ भी चलते जा रहे हैं।
3: एक आदमी मुझसे कह रहा था ये बस अब इन चीजों से के साथ तो मुझे जी नहीं है, मैं इसे भगवान का प्रसाद समझ के जी लेता हूँ। अरे भाई जब तुम्हें जो शक्ति दी है, बींग शक्ति और ज्ञान नॉलेज, उसको क्यों नहीं भगवान का प्रसाद समझते, इस ज्ञान को जो आप समझा रही हैं।
4: लेकिन अवेयरनेस नहीं ना, कौन सा प्रसाद है, भगवान ने हमें क्या दिया? क्योंकि हमने सोचा हमारे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान ने दिया, ये शरीर है, लेकिन इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है, ये मन है इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है, इसमें भगवान का प्रसाद क्यों बोलेंगे इसको हम? भगवान का प्रसाद तो ज्ञान है जो हमें रोज मिलता है, उस ज्ञान को, उस प्रसाद को अगर रोज लें। सी जब प्रसाद मिलता है फिजिकल रूप में, जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाके प्रसाद लेते हैं तो कैसे लेते हैं प्रसाद को, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, नहीं प्रसाद लिए बिना नहीं जाना है। प्रसाद का कितना महत्व है, फिर प्रसाद लेना है और सिर्फ अकेले नहीं खाना, फिर वो सबके साथ शेयर भी करना है।
3: हाँ, फिजिकल जो प्रसाद होता है इतना छोटा छोटा दाना सबको देते हैं कि चुटकी लेते भी मुंह में डाल लेते हो,
4: अगर प्रसाद नीचे गिरा जमीन पे है
3: उठा के फिर ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं,
4: खा लेते हैं, कोई और चीज नीचे जमीन पे गिरेगी वो तो नहीं खाते ना। तो ये कौन से प्रसाद का सिग्निफिकेंस है? प्रसाद मीन्स प्रभु प्रसाद हम किसको कहते हैं? प्रभु प्रसाद है ज्ञान। जब ज्ञान मिलता है उसको ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना है। देखो प्रसाद हमेशा झुक के स्वीकार करते हैं। अच्छा प्रसाद को लेकर सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ऐसे करते हैं, मतलब ये प्रसाद मेरी मन बुद्धि में टिक जाए, ये टच होना चाहिए यहाँ। ऐसा नहीं ज्ञान सुना और सुन के वहीं से उड़ गया, इट हैज टू गेट फिटेड इनसाइड हियर। फिर उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं, उसको हरेक के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्ञान का प्रसाद
3: वैल्यू करते हैं प्रसाद की, ज्ञान रेस्पेक्ट करते हैं,
4: तो ज्ञान का प्रसाद अगर लेना शुरू किया वो सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद सबको बंटता ही जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में वो प्रसाद धारण हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद औरों को मिल गया, देना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिकली रेडिएट हो रहा है प्रसाद।
3: ये पॉइंट बड़ा अच्छा है,
4: रेडिएट हो रहा है ना,
3: कि मतलब मैं अगर उस पे चलूं, अच्छे मतलब मत पे श्रीमत पे चलूं या अच्छे ज्ञान पे चलूं, तो वो खुद ही प्रसाद दुनिया को हर कदम पे दे रहे हो।
4: सी आप मेरे सामने आए, मेरे से एक गलती हुई, अगर आपने गुस्सा कर दिया तो आपकी गुस्से ने मेरी शक्ति को और कम किया, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो गई, राइट? तो आपने प्रसाद नहीं खाया है और आपने रिएक्ट किया, मैं भी डिसएम्पावर हो गई, ठीक है? अब सुबह सुबह आप ज्ञान का प्रसाद खा के आते हैं, क्या है मो पीसफुल पावरफुल सोल, बस इतनी एक लाइन का प्रसाद खाया,
3: आई एम शक्ति,
4: आई एम शक्ति, ठीक है? इतना एक प्रसाद की लाइन आज ले ली, अब मैंने फिर वही गलती की, लेकिन आज आप स्टेबल रहे, आपने मुझे वो ज्ञान सुनाया नहीं है, लेकिन आप स्टेबल रहे और आपने बहुत प्यार से कहा कोई बात नहीं कल से इसको ऐसे ध्यान से करना, ये कहना इस तरह से ये वाइब्रेशन रेडिएट करना मुझ आत्मा की पावर को क्या कर देगा,
3: एलिवेट करेगा और उठाएगा ना,
4: आई एम शक्ति का प्रसाद आपने खाया था, लेकिन शक्ति मेरी भी बढ़ी उसकी वजह से
3: और खुशी भी बढ़ी,
4: बढ़ी तो वही ना, आत्मा की पावर बढ़ी तो ओरिजिनल सारी क्वालिटीज बढ़ी। तो एक जना भी घर में अगर प्रभु प्रसाद रोज खाने लग जाए तो पूरे परिवार को तो बंट ही जाएगा ना। इसीलिए देखो दुनिया में भी लोग कहते तुम जाके प्रसाद लेकर आना, हम सबको खिलाना। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए देखो घर से, परिवार से, मोहल्ले से एक जना भी अगर तीर्थ पर जाता है, मंदिर जाता है, कहते वो प्रसाद लेकर आएगा ना, हम सबको मिलेगा।
3: हम लोग जब छोटे थे तिरुपति में, जब बाल कटा के आते थे ना, तो जो भी जितने फ्रेंड्स दोस्त लोग आके हमारे पहुंच होते थे कि भाई तुम वहां जाके और प्रसाद लेते थे, लेते थे प्रसाद भी लेते थे, पहुंच बोले हो गया हमने, मतलब आप वहां जाके आए और उस पवित्रता से हो गया
4: ना। मीनिंग है इसमें, कितना मीनिंग है इसमें। लेकिन फिजिकल लेवल पर सिर्फ जब उसको करते हैं तो उसका मीनिंग की प्राप्ति नहीं होगी।
3: एक्चुअली दिस सो आर्टिफिशियल लेवल, आई शुड कॉल
4: इट्स नॉट आर्टिफिशियल।
3: आर्टिफिशियल भी झूठ है ना। एक कर दिया, डाइव मार दिया, कर दिया, खा गया, सोचा भी नहीं क्यों किया।
4: भावना तो है ना, ये भावना है।
3: भावना भी है, फियर भी है, एक रिचुअल भी है, दूसरे कर रहे देख के भी।
4: आप एक पवित्र स्थान पर होकर आए, आपके पास वो वाइब्रेशन है अभी, और मैंने अगर आपको छुआ भी तो मुझे वो वाइब्रेशन मिली, वो उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन आज हम बहुत सारी चीजें बिना सिग्निफिकेंस के कर रहे हैं, वी जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी नो इट्स गुड एंड वी शुड डू इट। लेकिन उसका ट्रू मीनिंग क्या है? आप प्योरिटी को अगर अपने जीवन में धारण करके आए, और फिर आपको जो भी टच करेगा, मतलब आपके संपर्क में जो भी आएगा, अब जो आपके साथ काम करेगा, जो आपके साथ रहेगा, आपकी थॉट, वाइब्रेशन, एक्शन, वर्ड्स, एवरीथिंग विल रेडिएट प्योरिटी। एंड ये प्योरिटी उनके अंदर, उनकी प्योरिटी को इमर्ज करेगी, तब आपका प्रसाद सबको बंट गया।
3: और ये जो एक बार मैं जाके आया परमपिता के पास और मैं रोज जाऊं, तो फिर कितना मैं बांटूंगा
4: सर,
3: और हर क्षण जाऊं,
4: हमेशा जाऊं। दिस इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, जो हमने लास्ट टाइम देखा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ।
3: एक सेकंड, मैं पर्पज पे एक चीज लाया था दिखाने आपको, आपने अच्छा हुआ ये पॉइंट निकाल लिया। थोड़ा आपसे पूछना भी था इसका मीनिंग। इट इज द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव योर गिफ्ट अवे।
4: ब्यूटिफुल,
3: नहीं समझ।
4: पर्पज ऑफ योर लाइफ इज डिस्कवर योर गिफ्ट एंड देन गिव दैट गिफ्ट अवे। वही तो किया अभी।
3: अच्छा, बांटने वाली बात।
4: हाँ,
3: प्रसाद की,
4: वही तो किया अभी। डिस्कवर योर गिफ्ट
3: एंड व्हाट इज द गिफ्ट,
4: गिव द गिफ्ट अवे।
3: व्हाट इज द गिफ्ट,
4: व्हाट इज द गिफ्ट, हमारा गिफ्ट क्या है?
3: ज्ञान,
4: हर क्वालिटी आत्मा की।
3: अच्छा,
4: हमारे पास वही।
3: ओके, नाउ एज अ सोल आई एम बॉर्न विद दोज सेवन गुड ब्यूटिफुल क्वालिटीज एंड देन आई हैव टू गिव अवे दोज क्वालिटीज।
4: पर्पज ऑफ आवर लाइफ।
3: ओ माई गॉड, मैं ना गिफ्ट बचपन से सुन सुन के कोई चीज ऐसा दिमाग, लुक एट दिस कंडीशनिंग ऑफ थॉट ऑफ माइंड। गिफ्ट बचपन से देख, मेरी चॉकलेट, मेरी पेंसिल, मेरा ये, तो मतलब मेरी कौन सी गिफ्ट है ये? पर्पज ऑफ लाइफ, मैं दूं क्यों?
4: पर्पज ऑफ लाइफ,
3: और गिफ्ट मेरी है, मैं दूं क्यों?
4: वो स्थूल फिजिकल चीज देने से हमारी घटेगी ना।
3: बट कौन सी गिफ्ट है जो स्थूल नहीं है, आप बताइए।
4: आई द बीइंग।
3: हाँ, तो यही तो चीज आज बाल हो रही है एट दिस एज। It's so late, isn't it?
4: No, it's not late.
3: It's late and it's sad that I don't even know that
4: that
3: is called a gift.
4: And it's not sad.
3: हमको देखिए, life is a gift. ये gift, वो gift, कितनी बातें बड़ी बड़ी words में हमने सीखी हैं। लेकिन ये जो आपने बात कही ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि I am a soul. और soul की जो qualities हैं, those are the seven gifts we have.
4: Those are the only things we have actually. एंड पर्पज ऑफ आर लाइफ, देखो पर्पज जो होता है ना हर एक का, वो करना नहीं पड़ता है, वो इनहेरेंट उस चीज के अंदर होता है। एक बीज लेते हैं, एक बीज है, उस बीज का पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? एक सीड है,
3: प्लांट ए ट्री,
4: उसके अंदर ट्री बनेगी ना,
3: फर्दर सीड्स बनाना,
4: फर्दर सीड्स बनेगी। उस बीज के अंदर उसका ज्ञान ऑलरेडी बसा हुआ है, उस बीज के अंदर पूरी नॉलेज है वो वृक्ष बनने की, राइट? इट इज देयर,
3: शक्ति भी।
4: अब ये बीज करेगी क्या एज इट इज ग्रोइंग? वो अपने आसपास चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, प्रोसेस करेगी और ऑक्सीजन देगी। ये करना है उसने, ये पूरे जीवन उसने करना है। दैट्स द लाइफ ना, दैट्स द पर्पज ऑफ लाइफ ऑफ द ट्री। व्हाट्स इट गोइंग टू डू? टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेस इट, गिव ऑक्सीजन, एज इट डज दिस इट विल कीप ग्रोइंग.
3: ब्यूटिफुल,
4: यही होगा उसका जीवन.
3: लेकिन दुनिया की वो सेवा करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देके हमको जीवित रखे.
4: लेकिन वो करने में ही उसकी ग्रोथ है अपनी. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट.
3: दूसरे को लाइफ देने में उसकी लाइफ है,
4: अपनी ग्रोथ है. द पर्पज इज इन द बींग एंड एज इट इज डूइंग एज इट दैट पर्पज ऑफ दैट बींग इज बींग सर्व्ड द डूइंग इज हैपनिंग. जो उसका ग्रो होना है दैट इज द डूइंग. जो उसका ये ऑक्सीजन देना है दैट इज द बींग. अगर वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले और फिर पकड़ ले और ऑक्सीजन ना दे बाहर, तो क्या होगा उस पौधे को?
3: मर जाएगा.
4: दैट इज इट.
3: अगर हमने
4: अपनी पर्पज ऑफ लाइफ करना बंद कर दिया, हमारी ग्रोथ बंद हो जाएगी.
3: पहले तो उसकी शक्ल खराब लगने लगेगी, पीले पीले पत्ते हो जाएंगे, बीमार लगेगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ बंद होके मर जाएगा.
4: अब अगर ये पेड़ सोचे कि मुझे सिर्फ लेना है, लेना है, लेना है और लेके मुझे ग्रो करना है, मैंने देना नहीं है कुछ भी, जैसे ही वो देना बंद कर देगा वो ग्रो करना बंद कर देगा. वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट आवर पर्पज ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट वी आर द सोल. इसका भी यही पर्पज ऑफ लाइफ है. इसको भी देना है, देना है, देना है, और इसके देने में इसकी ग्रोथ है. लेकिन जब से हमने ये समझा कि मैं कौन, मैं ये फिजिकल आइडेंटिटी, मैं कौन, मैं ये पोजीशन, मैं कौन, मैं ये रिश्ता,
3: गिफ्ट क्या,
4: हाँ गिफ्ट क्या, चीजें, गाड़ी,
3: डायमंड,
4: राइट, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन गया? लेना और लेके अपने पास रखना.
3: और बहुत बड़ा दिल हो गया तो गिफ्ट में फिर एक गाड़ी दे दी किसी को, डायमंड दे दिया किसी को, और गिफ्ट का तो मीनिंग समझ में नहीं आया ना.
4: ये जब तक हम देंगे नहीं, और क्या देंगे नहीं, ये जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है. एंड दैट इज व्हाई टुडे सी वी विल बिकम स्टैग्नेंट. ना एक पौधे ने अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो आपने कैसे कहा, वो पीला हो जाएगा, मुरझाने लगेगा, मरने लगेगा और फिर धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाएगा. सेम थिंग, हमने जब प्यार, खुशी ये देनी बंद कर दी, मांगनी शुरू कर दी सिर्फ, कोऑपरेशन देनी बंद कर दी, कंपटीशन करने लग गए सिर्फ सबके साथ, आसपास क्या हो रहा है, कहते आजकल क्या पता आसपास क्या हो रहा है, कौन देखता है किसी के घर में क्या हो रहा है.
3: द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट. जो ये लाइन है सिस्टर, आप डिस्कवर कैसे करेंगे बताओ? कौन से स्कूल में कोई सिखाता है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? कोई मतलब किसी एंगल से, मेरे मुझे तो लगता है कि ये लिखने वाले को भी नहीं मालूम होगा जब उसने लिखा. मे बी आई कैन नॉट से दैट कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, क्या थॉट से, लेकिन आपने उसका जो नया मीनिंग दिखाया, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द गिफ्ट.
4: तो गिफ्ट अगर हम आज अगर इस कोटेशन को कोई पढ़ता है तो पर्पज ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर.
3: मैं आपसे नहीं पूछता तो नहीं समझता मैं.
4: नहीं तो हम उसको फिर भी हम समझेंगे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि पर्पज ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट? तो मैं सोचूंगी हाँ मुझे औरों का ध्यान रखना आता है.
3: मैं क्या सोचता पर्पज ऑफ लाइफ, चलो भगवान ने मुझे इतने सारे पैसे ऐसे दिए, 6 कपड़े दिए, मुझे 3 की जरूरत है, 3 बांट दो और थोड़े पैसे दे दो, थोड़ा दान कर दो, दिस इज माई पर्पज, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ आई एम लिविंग. मतलब एक इसकी कितनी लिमिटेशन हो जाती है.
4: फिजिकल ना पर्पज ऑफ लाइफ एक ही चीज से कनेक्टेड है, हु एम आई. पर्पज ऑफ माई लाइफ ना, सो हु इज द आई जिसका वो पर्पज है. जब तक वो आई एक फिजिकल बींग था, जब तक वो आई एक प्रोफेशनल था, तो उसका पर्पज ऑफ लाइफ उसके प्रोफेशन एक रोल के साथ ही तो जुड़ा होगा. एंड उसको उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ. कोई डॉक्टर कहेगा मैं कितनों का इलाज कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर कहेगा मैं हर संडे संडे फ्री का भी इलाज करता
3: हूँ. तो लोग बोलेंगे देखो मैं कितने बच्चों को फ्री गाना सिखाता हूँ, फ्री उनको मैं डांस सिखाता हूँ, फ्री उनकी कला को उभारता हूँ. सो मेनी, दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ. लेकिन एक गिफ्ट की बात सुन के मैं बार बार सोच रहा हूँ सिस्टर कि आई मीन आई हैव नेवर इवन थॉट के गिफ्ट जो है सोल के क्वालिटीज होंगी.
4: वी नेवर थॉट बिकॉज वी नेवर रिमेम्बर्ड कि मैं आत्मा हूँ. जब यही नहीं याद कि मैं आत्मा हूँ, फिर यही नहीं याद रहेगा कि आत्मा की गिफ्ट क्या है, फिर ये कैसे याद रहेगा कि आत्मा ने देना क्या है सबको.
3: सही बात है.
4: आज अब हमें सिर्फ ये पर्पज ऑफ लाइफ याद रखना है, क्योंकि इसी में हमारी खुशी है, इसी में हमारी ग्रोथ है, इसी में कलेक्टिवली भी हम सब की ग्रोथ है। अगर हर पौधा सिर्फ ऐसे हो जाए और ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो इस सृष्टि का क्या होगा?
3: खुद भी तो मरेगा,
4: खुद भी मरेगा और सृष्टि पर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा।
3: सब मरेंगे।
4: तो अगर हर आत्मा भी ऐसे हो गई तो वो खुद पहले अंदर घुट जाएगी और फिर उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और हर आत्मा अगर ऐसे देने लग जाए तो पहले खुद ग्रो होगी एंड लुक एट द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड विल चेंज। जस्ट इमेजिन, वी नीड टू विजुअलाइज अ वर्ल्ड जहां हर आत्मा लेना लेना लेने की बजाय सिर्फ देना इस इंटेंशन से चले। इमेजिन गोइंग टू वर्क आज। देना डजंट मीन कि हमें सेवा करनी है सारा दिन जाके, देना हमारे रोज के कर्म में समाया हुआ है। हम ऑफिस जा रहे हैं, एक है हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं, हम धन कमाने ऑफिस जा रहे हैं, हम काम करने ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, हम औरों से मिलकर उन्हें प्यार देने ऑफिस जा रहे हैं, हम औरों को खुशी देने ऑफिस जा रहे हैं। अगर कोई उदास है उसके मन को ठीक करने आज हम ऑफिस जा रहे हैं, देने की इंटेंशन। देने लेना तो ऑलरेडी समाया हुआ है ऑफिस जाने में, वो तो लेंगे ही, लेकिन जितना देने की इंटेंशन से जाएंगे तो शाम को देखो कितना खुश होकर वापस आएंगे, और जितना खुश होकर शाम को वापस आएंगे उतनी खुशी फिर घर आके परिवार वालों को देंगे।
3: मैं देने की इंटेंशन में जाऊं और वहां जाते किसी ने मुझे उल्टा ही बोल दिया,
4: हाँ,
3: तो सारा वो देने का पूरा मन ही नहीं करता।
4: इम्पोर्टेंट कि किसी ने उल्टा बोल दिया मतलब दूसरा कितना उदास या कितना बीमार है।
3: अभी इसको उदास एक एक,
4: एक, एक मिनट
3: over...
4: देना मतलब ये नहीं होता कि सब जो अच्छे अच्छे हैं उनको मैंने देना है। देना मतलब इट्स लाइक आप एक हॉस्पिटल जाएंगे तो किसको देंगे? उसी को देंगे ना, सारे जो बीमार हैं।
3: एक मीन पर्सन को, एक सेल्फिश पर्सन को, एक ओवर स्मार्ट पर्सन को, एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन को आप बीमार और उदास कहेंगे?
4: अपनी ओरिजिनल बीइंग से वो कितना डिस्कनेक्टेड है उसको आप क्या कहेंगे?
3: एक सेल्फिश पर्सन को हम बीमार समझें?
4: वो अपनी ओरिजिनलिटी से कितना डिस्कनेक्टेड है? नहीं है डिस्कनेक्टेड
3: है।
4: तो जो डिस्कनेक्टेड है उसी की तो सेवा करनी है ना।
3: तो जो
4: जो हेल्दी है, हैप्पी है, उसकी सेवा नहीं करनी आपको, वो तो खुद ही दे रहा है सबको इतना कुछ।
3: तो डिस्कनेक्टेड पर्सन से मिलके मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, बल्कि उसको जाके कनेक्ट करो।
4: दिस इज इट। एंड उसको कनेक्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली कौन कनेक्टेड रहेगा?
3: मैं
4: कनेक्टेड रहूंगा।
3: अनलेस आई एम कनेक्टेड मैं करूंगा कैसे?
4: ये सेवा है, ये प्रभु प्रसाद है, ये पर्पज ऑफ लाइफ है, ये हर आत्मा के अंदर पर्पज ऑफ लाइफ समाया हुआ है। इसको दबाना नहीं है, इसके होने में ही हमारी ग्रोथ है। एंड दिस इज बीइंग पावरफुल। जो देता है, पावरफुल जो होता है वो ही दे सकता है ना, जिसके पास है वो ही दे सकता है। तो आज इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं।
3: चलिए इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं सिस्टर, और अगले एपिसोड में पर्पज ऑफ लाइफ को मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
5: ईच टाइम वी जस्टिफाई आवर नेगेटिव रिएक्शंस बाय ब्लेमिंग अदर पीपल वी डिसएम्पावर आवर सेल्फ। First, soul power gets depleted when we react negatively. Then, we justify our reactions by blaming others to be the cause of our reaction. We are again losing power. When we take personal responsibility of our reaction, irrespective of the stimulus, we empower ourselves. We remind ourselves that we are a powerful soul. This time we failed, but next time we will take charge of ourselves. This is soul empowerment. Worry, stress, anxiety, these are the initial symptoms of being spiritually weak. If we take charge of ourselves by daily meditating, studying spiritual knowledge, and then implementing practically during the day, we will empower ourselves. Purpose of our life इज नॉट इन व्हाट वी आर डूइंग बट इन द बीइंग. पर्पस इज नॉट ऑफ आवर रोल एंड पोजिशन बट पर्पस ऑफ द सोल. पर्पस ऑफ द बीइंग इज टू रेडिएट इट्स क्वालिटीज ऑफ लव, प्योरिटी, ब्लिस एंड पावर इन एवरीथिंग वी आर डूइंग.
4: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in और कॉल अस ऑन 0999 5 5 9 6 6 0.

0: तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो वॉट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी. ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें. आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू. आप सच बोलेंगे. देर इज नो रीजन. कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो. आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो. जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100% अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अटेंशन है, या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका परमात्मा शिव बाप 100% जिम्मेवार है. और वो बच्चे बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करें, ये न सोचें कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है. तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा. इसीलिए एक रस पुरुषार्थ करते रहो.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए खाबो के सफर को बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार। आज मैं गाने जो अक्षर आई से शुरू होते हैं और वो किस फिल्म से और किस तरह की कहानी उसमें है, इन चीजों को बताने की कोशिश मैं करूंगा। अगर कहानी नहीं तो डायरेक्टर या फिर एक्टर्स कौन कौन है, ये बातें जरूर मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को, बहुत ही खूबसूरत बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं। 1961 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गंगा जमुना। जी हाँ, ये दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और ये फिल्म बनी थी एक्चुअली में डाकुओं का समर्पण पर। आप सभी जानते हैं आचार्य विनोबा भावे की पहल पर 19 मई 1960 को डाकुओं का गिरोह, जिसमें 11 मुख्य डाकू थे और उन सभी ने हथियार डाल दिए थे, विनोबा भावे के सामने आत्मसमर्पण किया और सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन करने का वादा किया। और इन चीजों को देखते हुए ओपन जेल की शुरुआत भी इसी बात पर किया गया था। तो आइए, इन सारी बातों को इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की गई थी। इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो आप सभी को भी पसंद आएगा और बहुत ही दिल को छू लेने वाला गाना है, जो हेमंत कुमार ने गाया था, शकील बदायूं साहब ने लिखा था और इसे संगीत से सराबोर किया था नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में आवो के सफर में आपके लिए ये खूबसूरत गाना। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, 1961 का ये खूबसूरत गाना आपने सुना, बहुत ही प्यारा सा गाना है। इस फिल्म में एक और खास बात ये थी कि फिल्म में गांव वालों के परिवार को दिखाया गया है। एक पूरा गांव को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया, उनकी झोपड़िया, जमींदार का भव्य मकान, नर्तकी का खोटा है, स्कूल है, कबड्डी खेलने का मैदान है, कच्ची सड़कें हैं, दुकानें हैं, झील है, नदी है, पहाड़ है, वो सब कुछ है जो एक गांव में होता है। और एक गांव को जीवंत रूप में पिक्चराइज किया गया था, तो ये चीजें इसमें दिखाई गई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम के दूसरे गाने की तरफ चलते हैं। हम लोग खाबों का सफर आप सुन रहे हैं। एक और फिल्म आई थी 1952 में जिसका नाम था बैजू बावरा, और ये जो फिल्म बनी थी हिंदी भाषी फिल्म थी, और एक बहुत ही खूबसूरत संगीतकार थे बैजू बावरा, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म बनी। हालांकि फिल्म की कहानी और बैजू बावरा पर बहुत सारी दंत कथाओं में काफी दूर दूर तक कोई मिलन वाली बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें समानांतर इसमें दिखाई गई है। और फिल्म जो है विजय भट्टा ने डायरेक्शन किया था, और मुख्य कलाकार के रूप में भरत भूषण और मीना कुमारी को दर्शाया गया था। और फिल्म का जो समय है वो सम्राट अकबर के समय को दर्शाया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो हम सभी को आज भी मैसेज देता है, इंसान बनो। तो आइए सुनते हैं ये गाना, शकील बदाई साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, नौशाद साहब का ही संगीतबद्ध ये गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। ये विजय भट्ट का डायरेक्शन में भरत भूषण और मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया था। सम्राट अकबर के समय को इस फिल्म में दिखाया गया था। और इसमें एक और कहानी ऐसी है कि बैजू बावरा अपने पिता की मृत्यु का बदला संगीत सम्राट तानसेन से लेना चाहता है और तानसेन अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक था। और बादशाह अकबर का ये आदेश था कि कोई भी तानसेन के महल में या उसके आसपास में भी गाना गाएगा तो उसकी मुकाबला जो है तानसेन के साथ की जाएगी, या फिर ये समझा जाएगा कि तानसेन की साधना भंग हो रही है। यदि ऐसा कोई गुस्ताखी करता है मजबूरन तानसेन के सामने संगीत का मुकाबला करना पड़ता है। और इस मुकाबले में तय तो यही होता है कि तानसेन तो जीतने ही वाले हैं और जो भी मुकाबले में हार जाता है उसको मृत्युदंड दिया जाता था। तो बैजू बावरा इस बात को बड़ा अच्छा नहीं मानता था और इसे बदलना चाहता था और इसी की वजह से उनके पिता की भी मृत्यु हुई थी। तो इसी पर यह फिल्म बना था बैजू बावरा, जिसका गीत हमने अभी सुना। आई आगे लेके चलता हूँ मैं आप सभी को एक और खूबसूरत नगमा 1961 की तरफ। फिर से एक बार सलील चौधरी साहब का संगीत, तलक महमूद साहब का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ एक खूबसूरत गाना जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, 1961 का जो फिल्म छाया था उस फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना, जिसमें एक जो हीरोइन रहती है जिसका नाम सरिता है और उसकी युवा अवस्था में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई गई है और अमीर पिता के साथ रहती है। वो अपने शिक्षक से प्यार करती है और ये बात उनके पिता को बड़ा अच्छा नहीं लगता और इस बात में बड़ी मुश्किलें आती है। पिताजी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है समाज के साथ में। डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, सलील चौधरी का संगीत A.V. मैयप्पन ने इस फिल्म का निर्माण किया और मुख्य कलाकार के रूप में आशा पारेख, ललिता पवार, नाजिर हुसैन इन सभी ने इस फिल्म में अच्छा रोल निभाया। तो वही आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर में। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लग रही मेरी बातें। फिल्मी दुनिया की कुछ खास बातें आज मैं सुना रहा हूँ और अभी 1966 में चलते हैं, जहाँ पर एक फिल्म रिलीज हुई थी ममता। जी हाँ, ये खूबसूरत फिल्म बनी थी और इसमें विशेष जो म्यूजिक था रोशन साहब ने म्यूजिक दिया था और एक गाना इसमें बहुत ही अच्छा है जो अक्षर आई से शुरू होता है, इन बहारों में अकेला ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले आप। तो आइए, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, आशा और रफी साहब ने इसे गाया था, रोशन साहब का संगीत आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, ममता फिल्म का एक खूबसूरत गाना अभी आपने सुना। 1966 में ये हिंदी भाषी फिल्म बनी थी जिसके मुख्य कलाकार सुचित्रा सेन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र थे। सुचित्रा सेन की ये तीसरी हिंदी फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन बंगाली फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर निर्देशक असित सेन ने किया था और 27 फरवरी 1966 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। रंजन गुप्ता ने इस फिल्म की कहानी को लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज पर ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाने की तरफ। मैं आप सभी को ले चलना चाहूंगा। 1963 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुमराह। जी हाँ, फिल्म का नाम सुन के ही कहीं ना कहीं आपको एक सस्पेंस तो ऐसे ही कुछ इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो साहिर लुधियानवी साहब का लिखा एक अक्षर आई का गीत है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे आवाज दिया था महेंद्र कपूर साहब ने और रवि साहब ने इसे संगीत से सवारा। तो आइए ये गाने का लुफ्त उठाते हैं। अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बात ही प्यारी प्यारी बातें हो रही है फिल्में दुनिया की। और आशा करता हूँ आप सभी इन बातों को सुनकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। तो वही आगे बढ़ते हैं। एक और फिल्म 1963 में ही रिलीज हुई थी जिसका नाम था भरोसा। हम सभी देखते हैं, जानते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी किस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, तो हमारा भरोसा जब टूट जाता है तो लगता है कि जिंदगी बहुत अलग है। तब हम लोग जिंदगी के सही मायने को तलाशने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ भाव भरा इस फिल्म में जो है कहानी बताई गई थी। गुरुदत्त, आशा पारेख, महमूद अली, ओम प्रकाश जी ने इसमें काम किया था। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, रवि साहब का संगीत। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना। तो आइए, 1964 में एक और फिल्म आई थी जो 20 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, और ये फिल्म जिसका नाम था राजकुमार। जी हाँ, इस फिल्म में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार, यानी शम्मी कपूर, साधना प्राण, ओम प्रकाश, पृथ्वीराज कपूर, ये बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में दिखे। और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। के शंकर साहब ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। और ये फिल्म में एक राजकुमार की कहानी बताई गई है, और महाराजा खुश होता है जब उसका बेटा भारत विदेश से लौटता है। राजा को पता चलता है कि भारत राजा बनने के लिए लायक नहीं है, और इसी बीच भरत जो है, यानी महाराजा का बेटा, वो अपने पिता को एक साजिश का खुलासा करता है जो उसे और उसे परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। इसी पर ये फिल्म बनी है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत, राजकुमार फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। जी हाँ,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चलिए, 1964 में बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म रिलीज हुए थे उस जमाने में, उस समय में। 1964 का ही एक और खूबसूरत फिल्म जिसमें शम्मी कपूर पर ही पिक्चराइज किया गया था, ये फिल्म थी कश्मीर की कली। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे ये फिल्म जो है नाम से ही बहुत पॉपुलर है। इसमें शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, अनूप कुमार, मदन पुरी, ये बड़े कलाकारों ने काम किया। और इसमें जो राजीव है, शम्मी कपूर का नाम है, शादी के लिए उसे मजबूर किया जाता है राजीव को, और वो शादी से बचने के लिए कश्मीर की ओर भागता है और वहाँ स्थानीय लड़की से उसका प्यार हो जाता है। बाद में राजीव को चौंकाने वाला जो सत्य है उसका पता चलता है, जो उसे प्रेमिका के साथ शादी करने से रोकता है। तो इस तरह की कई बातें इसमें बताई गई थी। लव स्टोरी है लेकिन बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आइए, कश्मीर का जो खूबसूरत वादियां है, सुंदर नजारे हैं इस फिल्म में आप देख सकते हैं। और शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो इसमें रोल किया। HS बिहारी का एक खूबसूरत गाना इस फिल्म में है जो आई अक्षर से शुरू होता है, जो मैं आपको सुनाऊंगा, और बहुत ही प्यारा गीत है, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। तो आशा भोसले और रफी साहब ने इस गीत को गाया था। ओपी नैयर का संगीत कश्मीर की कली 1964 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में हम लोग आखिरी मोड़ पे पहुंच रहे हैं और एक फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में, जिसका नाम था वासना। और टी प्रकाश राव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इसके डायलॉग इंद्रराज आनंद ने लिखा था और गुलशन नंदा ने इसकी कहानी लिखी थी। तो और ये फिल्म जो है राजकुमार और पद्मिनी पर पिक्चराइज किया गया था और भी बहुत सारे कलाकारों ने काम किया था। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एक फैमिली ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी भी इसमें बहुत है। तो आइए इस खूबसूरत फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी। और ये कई बार हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और उसके उनके नखरे भी बहुत होते हैं, सामान नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में इस भाव को एक गीत के माध्यम से इस फिल्म में बताया गया है। साहिल लुधियानवी साहब ने इसे लिखा है और ये गाना आय अक्षर से शुरू होती है, इतनी नाजुक न बनो। और इसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, चित्रगुप्त का संगीत है। फिल्म वासना 1968 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तो चलिए साथियों, आज के इस सफर में बस इतना ही। अब हम लोग आखिरी मोड़ पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको गुड बाय कहने का समय आ गया है। तो चलिए जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहते हैं कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसी के साथ जाते जाते मैं आपको एक और गीत छोड़े जा रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये हम सभी को ईश्वर अल्लाह की तरफ ले चलता है। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, एम दत्ता का संगीत है, नया रास्ता इस फिल्म का ये गाना आपके नाम। इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सलाम, नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: लेके अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास इस नाम से कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और ये करियर ऑप्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, तो जहां पर हम बच्चों के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉलेज में है, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन मिले, एक मोटिवेशन मिले, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि किसी भी करियर को कैसे हम लोग उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को समझने के लिए हम लोग अभी किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो है बात करते हैं जिन्होंने अपना करियर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किया है, उनसे बात करते हैं और उनकी यात्रा जो है बचपन की और फिर कैसे उन्होंने करियर को चूज किया, किस तरह से वो चीजें बनी और वर्तमान में वो चीजें कैसी है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं ताकि आप करियर को अच्छे से फ्रेम कर सके। तो आइए आज के इस शो में हमारे साथ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन विकास के इस सुंदर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशवंत, ये बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं और जर्नलिस्ट हैं वर्तमान में, तो उनसे बात करेंगे जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं यशवंत जी?
5: ओम शांति।
4: ओम शांति, कैसे हैं आप?
5: जी बढ़िया हूँ। आज के कार्यक्रम में मुझे आपने जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: और मैं चाहूंगा थोड़ा अपना बचपन के बारे में, आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता और किस तरह से आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा क्या हुई,
5: जी बताइए हमें। जी बचपन से तो मेरा बांसवाड़ा में ही बचपन से, और मैं थोड़ा सा विद्या भारती, विद्या भारती संस्था है पूरे इंडिया में जो आरएसएस से रिलेटेड है, उससे मैं जुड़ा हूँ। और फिर मैंने संघ की शाखा वगैरह वो भी बहुत मैंने चलाई है, और बचपन से ही मुझे पढ़ने का और विशेष वो था कि भाई मैं कुछ अच्छे लेख पढ़ू, तो मैं लाइब्रेरी वगैरह भी जाते रहता था और अखबारों वगैरह को टटोलता रहता था, उसमें से जो लेख आते हैं जैसे नरेंद्र कोहली है, जो ऐसे ऐसे जो भी थे, या विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा मैं, और उनकी आध्यात्मिक, और उनको उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा काम किया देश में, अपना नाम किया, मात्र 40 वर्ष की उम्र में। तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतनी मतलब इतना दिमाग उनमें कैसे था। तो ये मेरी हमेशा खोज लेती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के ऐसे क्या गुण थे, उनको आत्मसात करने के लिए मुझे बहुत ललक थी। तो मैं हमेशा यही ढूंढता रहता था। तो ये मेरा बचपन से ही था, उस कारण मैंने रुचि रही है।
4: आध्यात्मिक किताबें पढ़ी आपने?
5: जी जी।
4: अच्छा, जो स्कूल में आप पढ़ाई किया वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था?
5: नहीं, मैंने पूरा अध्ययन मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही किया।
4: अच्छा अच्छा अच्छा
5: जी।
4: और कॉलेज वगैरह आप फिर?
5: कॉलेज भी गया, गोविंद गुरु कॉलेज है।
4: अच्छा
5: जी। तो उसमें भी मैंने ग्रेजुएशन किया।
4: अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके माता पिता क्या करते थे?
5: मेरे पिताजी तो व्यवसायी थे, अपना राशन का दुकान था। अच्छा। और माताजी गृहिणी थी, वो ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे। और हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई में हमारा एक चाय का दुकान था वहाँ पे।
4: अच्छा अच्छा
5: जी। और उसके बाद वहाँ से छोड़ के आए, लगभग हमार तीन पार्टनर थे हम पिताजी के। तो चार चार महीना तीनों चलाते थे, चार महीने में वो कमा के आते, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ व्यवसाय करते थे, ऐसा था। तो हाँ, तो हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत कम थी, बहुत कमजोर थी। मतलब पहले हम एक गांव में रहते थे, गांव से फिर यहाँ शहर में आ गए, बांसवाड़ा शहर में।
4: अच्छा।
5: फिर यहाँ पे आके हम दो भाई थे, बड़े भाई ने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, तो उन्होंने बैंक में सर्विस बैंक मैनेजर बन गए वो।
4: अच्छा।
5: और मेरे को दुकान के साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा, ऐसा मैं उनका सहयोग करता था दुकान में भी।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए, जहाँ गांव से आप आए तो उस गांव की क्या विशेषता रही और वहाँ?
5: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, मेरा गांव साबला है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। बांसवाड़ा से उदयपुर जाते हैं, बीच में 60 किलोमीटर बांसवाड़ा से पड़ता है वो। और बहुत पवित्र स्थान है वो, मतलब वहाँ पे हमारे गांव के 5 किलोमीटर ही बेनेश्वर धाम है। तो बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है। और लाखों लोग यहाँ, जो जनजाति समाज है यहाँ आदिवासी, जी बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाका और प्रतापगढ़, ये जनजाति बहुत इलाका है, भील आदिवासी, जो बहुत और उनमें कृष्ण प्रति, भगवान के प्रति बहुत आस्था है, बहुत भले भले इंसान है ये। और भगवान के प्रति आस्था है, पूरी रात मेला चलता है यहाँ पे बेनेश्वर धाम, 5 किलोमीटर दूर है। और मेरा गांव साबला में हरि मंदिर है, वहीं जाके जो अभी पीठाधीश्वर है अच्युतानंद जी महाराज, वो वहीं विराजते हैं, और उनके नजदीक ही मेरा मकान है, तो उनका भी सानिध्य रहता है। मेरे पूरा परिवार, मेरे काका वगैरह जितना भी परिवार थे और मेरे पिताजी वगैरह, बहुत उनका सानिध्य रहा है। और उनके पहले जो भी रहे हैं गुरु, उनका भी सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा है जी। तो मेला भरता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, यहाँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी मेले में वहाँ मेलार्थी आते हैं। और वहाँ से दुकानें भी सस्ती है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत नाम है बेनेश्वर धाम का जी।
4: तो साल में एक ही बार मेला भरता है या दो तीन बार होता
5: है? नहीं, माह में एक बार। अच्छा, साल में एक बार,
4: साल में एक बार,
5: साल में एक बार, और पूरी रात पूनम की, माघ महीने की पूर्णिमा को।
4: अच्छा अच्छा।
5: माघ माह की पूर्णिमा को, जो मतलब वहाँ पे कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी रात इसलिए मेला भरता है वहाँ पे, और चांदनी रहती है पूनम की चांदनी।
4: बिल्कुल।
5: और वहाँ कृष्ण का बहुत बढ़िया मंदिर है। हाँ। और वहाँ इसलिए वो, और फिर वहाँ पे त्रिवेणी संगम है ये।
4: अच्छा,
5: यानी कि माई, सोम और जाखम, ये तीन नदियों का संगम है। और वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ की जो आप त्रिवेणी संगम में, मतलब यहाँ के जो लोग स्थानीय, तो गंगा ही मानते हैं इनको, कि हम वो अस्थिया विसर्जन भी नहीं करते, हमने तो हरिद्वार में अस्थिया विसर्जन कर दी, इस प्रकार मानते हैं इनको यहाँ पे।
4: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
5: जी।
4: यशवंत जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने गांव के बारे में, और आपने गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज भी गवर्नमेंट का ही था, और अपने पिताजी को आप हेल्प करते थे पढ़ाई के साथ साथ में, और बहुत ही अच्छा लगा शंकर आपका जो बचपन है बड़ा ही प्यारा सा बीता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और बात करेंगे कि बाद में कॉलेज के बाद आपने कैसे अपना करियर शुरू किया, इसके बारे में जानेंगे आपसे। आप सुनाइए रेडियो मधुबन 107.9, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम में। यशवंत जी हमारे साथ हैं, बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं और हम लोग बात कर रहे थे उनके बचपन की, कुछ बातें हमें उन्होंने ताजा कराई हैं। अब मैं चाहूंगा यशवंत जी, आप अपना स्कूलिंग पूरा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया, तो उसके बाद आप क्या सोच रहे थे, क्या बनना चाहते थे, या पिताजी का ही बिजनेस आप कंटिन्यू करना चाहते थे, क्या सिचुएशन रहा कॉलेज के बाद, या कॉलेज के कुछ ऐसे यादगार लम्हों को जरूर बताइए ताकि हमें आपके कॉलेज के लाइफ के बारे में भी पता चल सके।
1: कॉलेज में, कॉलेज तो जाते ही थे हम, साथ साथ मेरी क्या थी कि लाइब्रेरी में जाने का बहुत शौक था मुझे।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो कॉलेज की भी लाइब्रेरी में किताबें भी टटोलता रहता था। और बांसवाड़ा के जिला का जो पुस्तकालय है यहाँ पे, सूचना केंद्र, पीआर ऑफिस, वहाँ भी एक दो दो घंटा रोज जाता रहता था। तो वो पीआरओ में, जो पीआरओ साहब थे वहाँ पे, दीपक जी आचार्य नाम है उनका, अभी निदेशक है वो, जैसलमेर में बैठते हैं वो, तो वो हाँ उनका परिचय भी था। रोज मैं जाता रहता था तो अखबार वगैरह पढ़ता था, पत्र पत्रिकाएं, तो फिर निकलते वक्त उनसे मिलता हुआ ही निकलता था हमेशा। मुझे एक बार बोला उन्होंने कि अरे यार यशवंत जी, आपको अखबार वगैरह बहुत रुचि है और मेरे पास एक अखबार का काम है, एक अखबार है, तो आप क्या कुछ उसको हैंडल करना हुई क्या, आपको संपादक बना देता हूँ बांसवाड़ा का। मैंने कहा हाँ। तो भाई जी मेरे को क्या, एक्चुअल तो क्रिमिनल जो रहते हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं ये जो क्रिमिनल है ये वगैरह उनकी खबरें मैं नहीं कर सकता हूँ, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं बांसवाड़ा में उनको तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से कवरेज करूंगा और बहुत अच्छा भी मैं लिख सकता हूँ, भेज भी सकता हूँ, उसके अलावा भी कुछ और कर सकता हूँ, पर क्रिमिनल, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो आपको रुचि हो वो करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को बांसवाड़ा संपादक बना दिया उस अखबार का और मैं यहाँ से खबरें भेजता था। और फिर मैंने एक संघ की पत्रिका है पांचजन्य, तो पांचजन्य में भी मैंने अपना लेख, यहाँ का मानगढ़ धाम है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे जलियांवाला बाग से भी बड़ा यहाँ पे नरसंहार हुआ है, तो मेरे को उसमें उसका मैंने डिटेल निकाला और पूरा मैंने लेख भेजा। तो वहां से मेरा फोन आया पांचजन्य से

0: कि आपका लेख अच्छा लगा और हम उसको प्रकाशित कर रहे हैं, तो मेरा वहां पे लेख भी प्रकाशित हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि पूरे भारत में ये बहुत बड़ी मात्रा में समाचार पत्रिका ये निकलती है।
1: तो पत्रकारिता में आप जब जुड़े तो क्या उसके लिए कुछ आपने, किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या पेमेंट वगैरह कुछ देते थे या फिर ऐसा कुछ नहीं था?
0: नहीं, पत्रकारिता में तो मेरे स्वयं के मैंने पैसों से पहले तो मैंने कैमरा खरीदा।
1: हाँ
0: भाई जी, और मैंने ये भी नहीं देखा कि उनको पूछा भी मेरे को कितना मिलेगा क्या मिलेगा, कुछ नहीं।
1: हाँ।
0: बस यही था कि नहीं कि मैं बांसवाड़ा से अच्छी अच्छी आध्यात्मिक जो अपनी मतलब भागवत कथा है ये उनका प्रचार, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में यही कहा है कि आप गीता का जितना प्रचार करोगे तो आप मुझसे जुड़े हुए, मतलब जितना धर्म का प्रचार करता है व्यक्ति तो वो एक तरह से अच्छा ही काम है ना। तो मेरा यही रुचि रहती है कि जितना जितना लोगों से हुआ, फिर मैंने स्वयं की भी खुद की मैंने पत्रिका अखबार शुरू किया।
1: अच्छा।
0: जी हाँ जी, तो मैं राम सिंह संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ हूँ, अपना बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ये है राम सिंह संप्रदाय, तो यहाँ के जो महाराज जी है वो हमारे गुरु है, तो उनका सानिध्य मिला मुझे और मैंने जी जी तो मैंने एक दरिया दर्पण करके खुद मेरा एक अखबार निकाला मैंने ये कर। महाराज जी जो भी दरियाओं जो संप्रदाय है उनकी जो भी जितने भी जो भी आश्रम है उनकी जो गतिविधियां होती है उनको मैं उसमें प्रकाशित कर पाऊं जी। और मेरा जो अखबार का विमोचन है वो मुलक पीठाधीश्वर है राजेंद्र जी जी है, जो मेरे को मेरता जो मेरता भूमि है मीरा की जन्मस्थली वहां पर मेरे को वहां बुलाया और उन्होंने मंच पे मेरा अखबार का विमोचन किया फर्स्ट पहली बार जी जी।
1: तो फिर और मैं पत्रकारिता के साथ आप एज ए आपकी रुचि से जुड़े, आप रुचि से खर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपको कैसे, आपका आजीविका कैसे चल रहा है
0: जी?
1: आजीविका कैसे चलता है फिर,
0: कैसे चलता है मतलब
1: आपका जीवन यापन कैसे करते हैं आप?
0: जीवन यापन मतलब अर्निंग सोर्स मेरा।
1: हाँ हाँ
0: हाँ हाँ अर्निंग सोर्स तो क्या है कि यहाँ मैं एक और सेवा में ही लगा हुआ हूँ, तो मैं एक सेवा कार्य देखता हूँ यहाँ पे उत्तम स्वामी जी महाराज है महामंडलेश्वर है, तो उनकी गांव गांव में और अकाउंट्स में मैं रहा, मैं मेरा सब्जेक्ट अकाउंट रहा है। तो जी तो मैं अकाउंटेंट रहा, विद्या भारती में भी मैं अकाउंट पद पे काम करता था, उसको तो छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मेरे को उत्तम स्वामी सेवा संस्थान है यहाँ पे उत्तम स्वामी जी की, उनकी गांव में इंटरनल स्कूलें चलती है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूलें भी नहीं वहाँ पे वहाँ स्कूलें चलती है उनकी। तो जी जी तो जी तो वहां पे मेरे को उनका अकाउंट मतलब उनको पेमेंट देना वगैरह और उनको मेंटेन करने का, तो वो सब मैं देखता हूँ। और जी तो ये वहां से और उसके साथ जो वहां की व्यवस्था देखते हैं अकाउंट वहां पे स्वामी जी की, तो एक पर्सन वो उनकी क्या रियल एस्टेट का काम है पूरा प्लॉटिंग वगैरह का, तो वो उन्होंने मेरे को साथ में रखा है कि भाई कभी कोई जगह में लॉन्च करता हूँ तो वहाँ पे किसी को लाके बताना वगैरह नहीं है, तो वहाँ से मेरे को
1: थोड़ा साइड बिजनेस है। अच्छा अच्छा
0: जी जी वो साइड बिजनेस है।
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी पत्रकारिता के बारे में आपको मैं बताऊँ तो पत्रकारिता में ओनली अगर ईमानदारी से व्यवस्था अगर करे तो बहुत बढ़िया। बाकी पत्रकारिता में जैसे खबरें छपती है और जो मतलब पत्रकारिता को व्यवसाय बना दिया है पत्रकारों ने, बहुत से पत्रकारों से मेरी इसके बारे में बहुत वो है होती है कि भाई कोई खबरें आप दबा देते हैं, कभी कोई खबरों को नहीं छापते हैं, तो ये गलत है। मतलब कहने का मतलब ईमानदारी से पत्रकारिता करो, जो रियलिटी है उसको लोगों के सामने ले जाना, ये तो अपना धर्म बनता है। ये तो पत्रकारिता में कहते हैं कि नारद मुनि भी थे, उनको आरद

0: लोग जो नारद जी है उनका हम जयंती भी मनाते हैं, पत्रकार और पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं उस अवसर पे। तो जो वास्तविक पत्रकार है जो डरते नहीं है, निष्पक्ष भाव से बिना राजनीति के जो करते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं कि नहीं हमें बोले जी। तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा
1: बस
0: निवेदन
1: अभी जो है समय ऐसा चल रहा है जहां पर हमको इनकम सोर्स, जैसे आपका खुद का, चलो आप अकाउंटिंग का काम करते हैं और हॉबी से आप पत्रकारिता को कर रहे हैं तो आपकी बात अलग है, लेकिन जिनका कोई दूसरा कार्य नहीं है और पत्रकारिता ही इनका फुल फ्लेज हो तो वो कैसे क्या सरवाइव करेंगे?
0: नहीं, तो उनको तो वेतन मिलता ही है,
1: अच्छा,
0: वहाँ वेतन के अलावा वेतन मिलता ही है उनको, पर वहाँ वेतन मिलता है वो उसके अलावा अगर वो सोचे कि नहीं मैं वेतन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी कि
1: अच्छा,
0: मतलब कुछ किसको किसकी खबर छापना किसकी नहीं छापना और वहां से कुछ अर्निंग कर लेना, मतलब कैसे आपको बताऊं कि
1: अच्छा, समझ गया मैं। हाँ,
0: बस। तो ये
1: दो
0: जो
1: चीजें
0: है
1: यही होना चाहिए,
0: यही
1: पत्रकारिता
0: होना
1: में
0: चाहिए,
1: पारदर्शिता
0: बिल्कुल
1: होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: सत्य की बात
0: पारदर्शिता
1: होना
0: होनी
1: चाहिए,
0: चाहिए।
1: सबकी खबरें
0: जी
1: जानी
0: जी
1: चाहिए, ये आपका मत
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल
1: और एक
0: बिल्कुल
1: अच्छे
0: सर,
1: पत्रकार को जो है अपना जो कंपनी से या
0: धर्म
1: पत्रकार जो संस्थान है उससे जो पेमेंट मिलता है उससे उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए, ना कि अलग अलग खबरें जो बिना मतलब के खबरें छाप के अपना इनकम जनरेट करना, ये सब करना
0: हाँ
1: अच्छा नहीं है, ये आप बता रहे।
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छी
0: जी
1: बात
0: जी
1: आपने बताया। और पत्रकारिता का जो रुचि कैसे बढ़ा आपको एक्चुअली में, क्या लाइब्रेरी से आप पुस्तक पढ़ रहे थे या फिर पेपर्स पढ़ते थे, न्यूज के प्रति आकर्षण था इसलिए आप इसमें जुड़े शौक से, या फिर कुछ और भी था?
0: वास्तविक तो यही कि मैं जो लाइब्रेरी वगैरह जाता था वहां पे पढ़ता था, तो और फिर एक पत्रकार का दबदबा अलग अलग रहता है, वो कहीं भी जा सकता है आ सकता है किसी से मिल सकता है एक और उनसे बातचीत कर सकता है, तो एक एक जरिया रहता है कि कहीं भी जाके अपन एक बार जाके ना अपनी बात रख सकते हैं, उसको गलत हुआ तो गलत तो बोल भी सकते हैं, तो इस कारण मेरे को रुचि थोड़ी हुई इसमें। जी
1: अच्छा, चलिए
0: जी
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया। और आपकी पत्रकारिता में जो है निष्पक्ष भाव है और सत्य के प्रति प्रेम है आपका, और निश्चित तौर पे आप दूसरी पहलू भी आप देख रहे हैं कि पत्रकार होने से समाज में कहीं ना कहीं हम अहम भूमिका निभा सकते हैं और जहां पर गलत हो रहा है उस बात को भी हम उठा सकते हैं और उस बात को लोगों के बीच में पत्रकारिता के माध्यम से रख सकते हैं, इसीलिए आपने इसको एज ए हॉबी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आप अपना प्रोफेशन के तौर पे वेतन के रूप में आप अकाउंटिंग का काम जो है स्कूलों का करते रहे हैं और उसके
0: जी
1: साथ में आप एज ए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप एज ए सेल्स का काम भी देखते रहे हैं, जहां जैसे जरूरत हो उन चीजों को भी आप करते रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए, हमारे विद्यार्थी मित्रों को शायद अभी पता चल गया होगा कि कैसे हमें पत्रकारिता किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेज पत्रकारिता ही करना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या छोटे कोर्सेज भी होते हैं, कई कई एनजीओ भी इस तरह के जो हैं 6 महीना या 3 महीने के कोर्सेज करा के आपको पत्रकारिता का जो है सर्टिफाइड कोर्स भी होता है, लेकिन आप डायरेक्टली आफ्टर 12th जो है जर्नलिज्म का 3 साल या 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है उसको करके भी आप जो है इस फील्ड में अच्छा खासा अपना एक चैनल बना सकते हैं, न्यूज़पेपर चला सकते हैं, इसमें भी अच्छी
0: बिल्कुल
1: कमाई है और साथ ही साथ आप जो है समाज का जो है एक दायित्व जिम्मेवारी आपको मिलता है, तो इस फील्ड में आप स्काई इज द लिमिट है, बस यही है। लेकिन जैसे यशवंत जी जो बता रहे हैं उनकी अपनी एक अलग सोच है और अपनी एक भावना है, वो भी अपनी जगह पे सही है और आप भी अपनी जगह पे जर्नलिज्म करने के बाद, ऐसा नहीं कि भाई अभी न्यूज़पेपर में ही काम करना है, लेकिन आज इसका दायरा बढ़ गया है, आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, न्यूज चैनल 24 चलता रहता है, 24/7 कंटिन्यू कवरेज जो है चलती रहती है, तो एज ए न्यूज एंकर आप बन सकते हैं या न्यूज रीडर आप बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।

या खुद का अपना एक चैनल बनाकर आप जो है उसको रन कर सकते हैं, तो उससे भी काफी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। या आप अपना खुद का पत्रिका भी निकाल सकते हैं, या मैगजीन आप निकाल सकते हैं। बुक की तो बहुत सारी लिस्ट है, आप एक बार जर्नलिज्म का मास्टर डिग्री आपके पास आ जाता है तो फिर आप कंपनीज में काम भी कर सकते हैं या फिर किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मीडिया के माध्यम से वो भी अपना प्रचार माध्यम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। और कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको भी एक पीआरओ जर्नलिज्म वाला चाहिए रहता है, ताकि वो कंपनी के पहलुओं को लोगों के बीच में अच्छी तरह से रखे, और कहीं कुछ डिस्प्यूट हो तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में रहने वाले उसको ठीक ढंग से लोगों के बीच में रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। तो इसीलिए भी वो कंपनी वाले भी आपको जो है बुलाते हैं, तो वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते हैं, आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यशवंत जी से वापस जुड़ेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है सोने।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जीवन विकास करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग आज पत्रकारिता के बारे में बातें कर रहे हैं। और यशवंत जी जो है जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जो है अपनी रुचि से पत्रकारिता में अपना खुद का पेपर भी चलाते हैं और दूसरे पेपरों में अपना धार्मिक जो चीजें, धार्मिक स्थल है या धार्मिक जो बातें हैं उसका उस चीज उन चीजों का प्रचार प्रसार करने में अपनी रुचि रखते हैं। तो उन चीजों के लिए उन्होंने काम भी किया है और उसके लिए उन्हें सम्मान भी प्राप्त है। तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा यशवंत जी से, तो पत्रकारिता में क्या क्या हमारे जो है अचीवमेंट्स हैं या क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए, ताकि वो इस फील्ड में आने के लिए अपनी रुचि बढ़ा सके। जी यशवंत जी।
1: जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। पत्रकारिता में जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जैसे कि आप जो आप देखते हैं न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सुधीर चौधरी डीएनए आपने देखा होगा, आज तक पर सुधीर चौधरी आते हैं डीएनए 9 बजे आते हैं, रात की रात को बहुत अच्छा डीएनए उसमें करते हैं। सभी को उनको देखना चाहिए किस प्रकार उन्होंने किस विषय को समेट कर किस प्रकार लोगों को प्रस्तुत करते हैं रियलिटी में। ऐसे ही पत्रकारिता से आप बहुत से एनजीओ है संस्था उस पर जाके मंचों पे बोलना, एंकरिंग, उससे अपने को एंकरिंग भी अच्छी हो जाती है। मतलब कोई एंकरिंग सब ले तो जैसे सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, आज उनको सुनने के लिए बहुत लोग ललायत रहते हैं। मतलब उनके टिकट नहीं मिलती है, उनके कार्यक्रमों में जाने के लिए टिकट नहीं मिलती है। ऐसे ही अपने ब्रह्मा कुमारी की भी दीदी है, शिवानी दीदी है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनने के लिए, और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको विश्व पे कमांड रहता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर पत्रकारिता से अगर बहुत सी चीजें अगर अपन प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा करियर, बहुत बड़ा करियर।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसमें चैलेंजेस क्या है यशवंत जी, क्योंकि एक तो अचीवमेंट ये है कि आपका जो कार्ड है वो आपको पहचान देता है और प्लस आप कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ये एक है अचीवमेंट। लेकिन इसके साथ में चैलेंजेस क्या है वो थोड़ा सा बताएं।
1: चैलेंजेस

0: भय नहीं रखेंगे, बिना भेदभाव के कुछ भी करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पत्रकारिता में स्काई इज द लिमिट, माना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप नाम शान और पैसे सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप जो है सच्चाई बताने के लिए आप अगर आगे रहते हैं और उसके लिए आप थोड़ा सा धाड़स करते हो, थोड़ा सा डेयरिंग करते हो, हिम्मत करते हो, तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये जो है करियर बहुत बढ़िया है। और युवा साथी, अगर इसमें आप जो है सिर्फ टीवी में जो क्लाइमेक्स है या जो चकाचौंध है फेम और देखकर अगर आप आना चाहते हैं तो वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर आपके लिए करियर को बहुत अच्छी तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है, जो यशवंत जी ने बताया। अगर आप निर्भय हैं तो निश्चित तौर पे फिर आप यहाँ पर पत्रकारिता में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आगे बढ़ने का आपको चांसेस काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यशवंत जी से चाहूंगा कि हाल ही में जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि 24/7 न्यूज चल रहे हैं तो सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, कई बार फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: जो विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अभी सप्ताह से मैं जो मैं देख रहा हूँ और मीडिया चैनल भी बहुत कह रहे हैं कि आज के जो युवा वर्ग के, जैसे आज 12 वर्ष से 18 वर्ष 20 वर्ष के, उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत फेक चीजें अभी आती है, बहुत फेक चीजें आती है, तो जो वास्तविक है उसको एक बार तो पकड़ लो, आप उसको फॉरवर्ड मत करो, एक बार देखो कि सच्चाई क्या है और क्या ये अपने भारत देश में, अपने जो अपने जन्म लिया है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है अपना, कि भाई गलत चीजों को के प्रकाशित क्यों करना, उनका विरोध भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उस फेक को आप अगर विरोध करके अपन लिख सकते कि नहीं ये फेक है, इसमें फैक्ट नहीं है, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है ये। और मैं कहता हूँ अभी फिलहाल जो भी युवा है या बच्चे हैं, आजकल वीडियो गेम्स बहुत देखते हैं और वीडियो गेमों में छुट्टियों में या जैसे भी समय मिला तुरंत घर वाले मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और वीडियो गेम्स पे ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे कि शूट करते करते वो कोई अचीव कर लेते हैं तो उनके दिमाग में दिन भर ये शूटिंग, जैसे आपने विदेशों में देखा हो बच्चे स्कूलों में कहीं बंदूक हाथ में आ गई तो वही शुरुआत कर देते हैं, उनको मालूम नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही अभी एक जो हुआ कि किसी धर्म के प्रति ये धर्म हमारा अच्छा है ये धर्म खराब है, तो ये विषय था अभी बहुत चर्चा में और उस बच्चों को धर्मांतरण हो गया, वो न जाने मस्जिदों में जाने लग गया और धर्मांतरण हो गया और पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि दिन में 4-5 बार कहाँ जाता है और कैसे कहाँ क्या करता है वगैरह, तो ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय गिरे था और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया। अच्छा। तो यहाँ तक कि जब पहले बहुत सी, हालांकि अपने कानून ऐसा बना हुआ है कि उनको बहुत सौ को बैंड भी किया है, जैसे पहले एक पबजी करके गेम चलता था इस वीडियो गेम में, तो बच्चों को बहुत रुचि थी उसमें, तो रुचि जगती है, आजकल क्या हो गया कि वीडियो गेम के कारण बच्चों में रुचि जगती है, दिन भर वो सोच भी यही, बच्चे खाना तक छोड़ देते हैं, खाने भी बैठे रहते हैं, लोग जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, ये स्थिति हो गई है, बहुत मतलब दुखदायक स्थिति है ये।
1: तो
0: जी, तो मैंने ये किया कि
1: हमारे हैंड में हाथ में आ गया, तो उसका जो है अच्छे भी और बुरे भी परिणाम आ रहे हैं, दोनों चीजें
0: करना
1: पड़ रहा है। और जो बच्चों पे जो ज्यादातर इस तरह की चीजें हो रही हैं,
0: कहीं पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए,
1: लाइफ स्पॉइल हो रहा है इसके वजह से हमें सतर्क रहना है, और खास करके माता पिता को जो है बच्चों पे पूरा ध्यान देना है, और जब स्कूल जाने वाला बच्चा है तो उसका जो है आने जाने और वो क्या करता है वो सारी चीजों पर आपको निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज
0: अपने
1: बच्चों को खो देंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने अपना जर्नलिज्म के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक जो है मैसेज क्या

0: देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए?
1: बहुत बढ़िया। हम सब युवाओं को ये कहता हूं कि आप देश का भविष्य हो, आप भारत आपके ऊपर टिका हुआ है। जैसे अपने कहते हैं ना कि एक कदम आप बढ़ाओगे तो सभी एक एक कदम बढ़ाएगा तो देश कहाँ से कहाँ हो जाएगा। और अपना संकल्प क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाना, यानी कि भारत पहले विश्व गुरु था, अब उसको पुनर्स्थापित करना है। तो मैं कहूंगा आज के युवा में जितना भी टैलेंट है उसको करते हुए भारत को एक बार दुनिया को ये बताना है कि भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज के युवा बहुत इसको प्रयत्न कर सकते हैं और अपने देश के प्रति अपने को गर्व होना चाहिए कि अपना देश सनातन जो था, हमारा संस्कृति जो, उसके ऊपर अपने को गर्व होना चाहिए। अपना ऋषि मुनि परंपरा थी जो हमारा यहाँ इस भारत भूमि पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मैं आज की युवा में यही कहूंगा कि अपने भारत के प्रति अपने गर्व होना चाहिए। तो आज का यही संदेश है मेरा।
0: यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और खास करके युवाओं को आपने संबोधन किया। गर्व होना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। फिर से एक्चुअली में भारत विश्व गुरु था और फिर से उसे पुनर्स्थापना करने की बात आपने कही है। तो ये सब चीजें हो सकता है आप अपने करियर राइट वे में चूज करें। आप अपने करियर के प्रति जो है पूरे निष्ठा के साथ अपने करियर को बनाइए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस जो फील्ड आपको अच्छा लगता है, उस फील्ड के लिए आप पूरे आत्मसात आत्मिक रूप से तैयार रहें, पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल करें और उसके ऊपर जो है निष्ठा से काम करें, तो आप अपना करियर पहले बनाएं जिससे आपका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके। फिर आप अपने परिवार के बारे में सोचिए और फिर आप अपने देश के बारे में सोचिए। ये
1: बिल्कुल
0: बहुत ही अच्छा संदेश यशवंत जी आपने दिया और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए करियर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते कमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, संते रहो,
1: ओम
0: मुस्कुराते रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नजर मेरी नजर से।
1: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy, life है। ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और stable भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive। तो internal stability means, you know, no trace ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अजय सुना सरदारा की आले।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बात पुरानी बड़ी सुहानी, फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 एफएम वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ? कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मना पीठ वाजल्या की शरीर अपोप फिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
6: पहला नशा पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
7: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में, इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलते जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है, या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या हम निकालने के लिए रेडी है? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नेम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना,
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है, तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15 minutes.
0: I give all my time to others.
1: To everybody. Kyunki mujhe dusron ko heal karna hai. And he said like, 14 ghante mere apne profession mein jaate hain. My work is my top priority. To 14 ghante mere din mein uske liye hote hain. Baki commuting, travel time, aur jo thode se 2-3 ghante bach jaate hain, wo mere parivar ke liye hote hain. To ab is sab mein apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल। यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर? एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर, बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड। क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं? अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कंफर्ट्स जो भी हमें लाने हैं, उसके लिए हम काम पे जाते हैं। तो काम से ऊपर एक्चुअली
0: परिवार
1: है, डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी सुख शांति वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी. तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माय सेल्फ. नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे राउंड वर्क फैमिली सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला, इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है. उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर हम

0: से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी। और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क। तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री by saying I don't have time. तो अपने लिए समय निकालना, we should remember that I am the most important person in the world. Because unless I am healed, I cannot do anything.
1: I cannot achieve anything. That's very true.
0: मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
1: I have met people, एक social organization में मैं थी, they said कि हम New Year resolutions की बात कर रहे थे, तो almost everybody was saying कि मैं लोगों के लिए help करूंगा, मैं इतने लोगों को introduce करूंगा इसके बारे में, लेकिन finally I think क्योंकि हम खुद हील्स नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं।
0: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए। और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है। सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबॉडी। अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
1: खुद में विश्वास।
0: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली। और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर सेल्फ एस्टीम बॉय अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता। आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
1: सही सोचूंगी
0: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी। तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे। जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा, और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं,
1: दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी। हाँ।
0: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत इजी, और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत इजी। ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है। सोचती कुछ और है, करती कुछ और है। जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है, जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं। वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं
1: और
0: कर
1: सकता। अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं, तो आंसर्स भी मिलने लग जाते हैं।
0: आंसर सारे यही हैं, सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है, यू नो। तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीशन कि मुझे क्या करना होगा हैज टू बी माइन। तो इफ आई कैन बी साइलेंट आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? माइंड साइलेंट। लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे, ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
1: उनके लिए सही होगा। हाँ।
0: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे कर

0: करना है. तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डेवलप. रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तक हम कहते हैं मुझे सबकी जिम्मेवारी उठानी है.
1: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है. हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूं या नहीं करूं, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा. सो अगेन,
0: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमजोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीशन लेंगे और आपका डिसीशन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग. इमिजिएटली आई विल गेट दैट नहीं, मूव अवे. कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो, कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है. एंड दैट विल टच वेरी क्लियरली. तो परमात्मा के साथ भी जब वो रिलेशनशिप होगा और अपने साथ इंटरनली, तो डिसीशन लेना बहुत ईजी हो जाएगा. एंड डिसीशन विल बी राइट, दे विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इंटेंशन बहुत राइट है अब, कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है. क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब सोल कॉन्शियसनेस. तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशंस प्योरिफाई होती जाएंगी. ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा. तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट
1: अपने आप
0: ठीक हो जाएगा. वो ऑटोमेटिक है. और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा. हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते. हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू. सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है. तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
1: मैं खुद उठा सकता हूँ. और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ. सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए.
0: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी. और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा.
1: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं. ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज्यादा तलाश रहे थे. अगेन, खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है, या वो जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया. लेकिन हाँ, उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है. उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें.
0: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता, वो एक क्षण लगेगा. समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में. क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है. तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा. तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा. तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा. तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है. जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा. अनुभव अभी भी होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो, मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था. अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस, कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ. वो आत्म स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे, वो फुल स्टॉप. ये नहीं कि बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
1: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, then you come back, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन आप,
0: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो. मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा. सो यू आर नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा. तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं, इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे. सी दिस इज लाइक अ शूटिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया, कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया होता गया. अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना. अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वही रिकॉर्ड किए और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो, देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट. तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे. क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना, ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है. तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें, दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन, सो वाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी. फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन. क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
1: शांति का,
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे. ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए. आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा. डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह. तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमें अनकंडीशनल लव मिलता है. वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट. ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. He doesn't have anything that he needs from us. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है. दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो, द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम.
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, इन रियलिटी हु एम आई उसके साथ जो रिश्ता है। सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है। और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है। सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें
0: कुछ क्षणों के लिए। हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, उसको बैठने ना दे और उसकी तरफ ही ना झुक जाए कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया। नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है। तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन। कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें। सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं, इस शरीर को चलाने वाले, हर संकल्प की रचना करने वाले, हर भावना को महसूस करने वाले, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, ब्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूं, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा, मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ, ओम शांति,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा ये कैसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज ना होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334666, 9999334666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09993445, 09993446 और 09873666555। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज में। कभी कभी जब हमें अपना कोई मित्र मिलता है या हमारे साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है या हम ही बहुत दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। क्या होता है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन एक फीलिंग ही है या ये बीमारी के रूप में भी आगे बढ़ सकता है? और अगर ये बीमारी है तो इसको ठीक करने का, इसका इलाज का सही तरीका क्या है? इन सभी को जानने की कोशिश की है हमने अपने इस सफर में और बहुत सी चीजें सामने आई हैं। आज जिस तरीके की तरफ हम मुड़ रहे हैं, जिस तरह का इलाज करना चाहिए उस पर बात करने जा रहे हैं, वो हमारे विचारों से, हमारी सोच, हमारे थॉट्स से जुड़ा है। किस तरह से थॉट्स को बदलकर हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, जिसे साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी स्वागत।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे मुड़े तो पिछली बार हमने बात की थी कि दवाइयों से जो इलाज किया जाता है डिप्रेशन का, वो काफी सफल रहता है और काफी जरूरी हो जाता है कई केसेस में, और कभी भी इलाज बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कई मिथ्स हमने क्लियर की थी। एक और बात आपने बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट या कन्वर्जन से भी कई बार इलाज किया जाता है और उसके भी रिजल्ट सही होते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं विचारों की तरफ, जो हमारे मन में उठ रहे हैं विचार। आपने बताए थे कि कई तरह की साइकोथेरेपीज हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने बताया था कि जब हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और रोशनी।
1: हाँ, जिसको कहा कि बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी, कि एक तो बिहेवियर को चेंज करना है, और कॉग्निशन का अर्थ है हमारे विचार, जो सोच है, वो सोच को बदल करके हम कैसे डिप्रेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। और यह एक थेरेपी जिस पर बहुत रिसर्च भी की गई, यहां तक कि फेडरल गवर्नमेंट ने $10 मिलियन इस पर लगाए, इस बात को चेक करने के लिए

0: कि कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि इससे पहले साइको एनालिसिस और चीजों पर रिसर्च हुई थी और कुछ लोग ऐसा समझते थे कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो जब इस पर रिसर्च की गई, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे उनको करीब 20 सेशंस दिए गए, एक एक घंटे के 20 सेशंस उनको दिए गए, और कैसे विचारों को बदलना है उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल बातें सिखाई गई। और जब ये किया तो देखा कि एक दवाई होती है एमिप्रामाइन, जो एक बेसिक एंटी डिप्रेशेंट है, जो आज तक भी उपयोग में आती है, अच्छी दवाई है। जितनी एमिप्रामाइन की इफेक्ट होती है उतनी ही ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी इफेक्ट हुई।
1: अच्छा।
0: और वो मेंटेन हुई, करीब 2 साल के बाद भी उन पेशेंट्स को फिर से देखा गया तो भी उनमें जो इम्प्रूवमेंट था वह इम्प्रूवमेंट सही रहा।
1: लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि बातचीत से या डिस्कशन से जो ये बात की जा रही है वो इतने इफेक्टिव नहीं होती है, तो इस थेरेपी में कुछ खास तरह की काउंसलिंग की जाती है, कैसे की जाती है थेरेपी?
0: जैसे एनालिसिस होता था, साइको एनालिसिस, आपने भी सुना होगा कि जिसमें हम अपनी बात को बताते रहते, बस हम बोलते रहते, मुझे जो याद आया, आपकी साड़ी देख करके मुझे कुछ याद आया तो मैं बोलता हूँ, और कोई चीज देख करके मुझे कुछ याद आया, लैपटॉप देख करके मुझे कुछ याद आया, तो बस मैं अपनी बात बोलता रहता हूँ। और उससे वह भी अच्छी थी कि अंदर की जो बातें हैं, डीप रूटेड बातें बाहर आती थी और पेशेंट्स को फायदा होता था, परंतु समय बहुत लग जाता था। यह जो थेरेपी है कि जिसमें समय कम लगता है, क्योंकि विचारों को परिवर्तन करना सिखाया गया हमें, एक तो महत्व समझाया गया कि कैसे आपकी ये जो बीमारी है, आपको जो कुछ भी फील हो रहा है उसका रूट कॉज आपके विचार है, और अगर हम विचारों को बदलना सीखेंगे तो आप अपनी फीलिंग से भी उपराम उठ सकेंगे। जब प्रॉपर उनको टेक्निक्स बताई गई, मेथड्स बताई गई, होमवर्क भी दिया गया कि घर में भी आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और ये सारी थेरेपी ठीक से करता है, तो उसका एक बहुत और एक अच्छा पहलू देखा गया कि न केवल पेशेंट्स को फायदा हुआ, परंतु एक पैट स्कैन होता है, ब्रेन स्कैन आपने सुना है, पैट स्कैन है कि जिससे हम जो दिमाग के डिफरेंट ऑर्गन्स है वह कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो पैट स्कैन भी लिए गए इस थेरेपी के बाद, तो भी देखा कि उसमें भी परिवर्तन आ रहा है।
1: ओके, द लेवल्स वर इंक्रीज्ड।
0: हाँ, केमिकल्स में परिवर्तन आना, जो फंक्शंस है ब्रेन ऑर्गन्स के उनमें भी परिवर्तन आया, कि जिसके कारण आज अच्छी मात्रा में साइकेट्रिस्ट भी इस थेरेपी का स्वीकार करने लगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, विचारों को बदलना, उसी पर तो हम काफी टाइम से भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि विचार या जो थॉट आता है उसी को नेगेटिव पॉजिटिव जो है वही एक वजह बनते जाते हैं जिंदगी में जितनी मुश्किलें आ रही हैं। विचारों को बदलना या थॉट्स को बदलना आसान है, और क्यों, अगर डिप्रेशन में नहीं है हम तब भी बहुत जरूरी है,
2: क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसे थॉट्स तो सारा दिन में आ ही जाते हैं जो खुद के लिए कंफर्टेबल फीलिंग नहीं क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं है वो डिप्रेशन के लिए, लेकिन हम सबके साथ आते हैं, कोई दर्द के विचार हैं, कोई दुख के हैं, कोई उदासी के हैं, कोई एक होपलेसनेस की फीलिंग के हैं, कोई एक इन्फीरियर फीलिंग, सुपीरियर, मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं विच आर नॉट कम्फर्टेबल। तो ये जो थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने की या चैनलाइज करने की जो थेरेपी होगी या जो मेडिटेशन भी सिखाता है, दिस विल हेल्प ईच वन ऑफ अस। और देखो जैसे आपने कहा कि वो एमिप्रामाइन मेडिसिन के इक्विवेलेंट आप इस थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन से ये हो सकता है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेडिसिन से आप ठीक होते हैं लेकिन फिर जा सकते हैं आफ्टर, क्योंकि एक टेंडेंसी तो है ही ना, उस बीमारी की एक टेंडेंसी तो है ही। तो अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद कोई और परिस्थिति आएगी, हम फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं।
1: तो ये टेक्निक अगर हम,
2: लेकिन अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया तब हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को क्रॉस कर जाएंगे। सो दिस इज लाइक रियली चेंजिंग इट फ्रॉम द रूट।
0: उदाहरण के रूप में एग्जाम के दिनों में कई स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो यही सिद्ध करता है कि वास्तव में एग्जाम डिप्रेशन नहीं ला रही है, वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। क्योंकि भाई अगर एग्जाम डिप्रेशन लाती है तो सबको लानी चाहिए, परंतु सब स्टूडेंट्स को नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स तो भले रोज 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते, एग्जाम के दिनों में 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, और कुछ है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि परिस्थिति वो डिप्रेशन नहीं ला रही है, हमारे जो विचार है वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात है, कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि भी कोई भी विचार आप 17 सेकंड करो तो उस परिस्थिति को आप अट्रैक्ट करते हैं।
1: अच्छा,
0: नहीं ऐसा सचमुच कहा गया है कि इफ यू थिंक ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर 17 सेकंड्स उस चीज को आप अपनी और अट्रैक्ट करते हैं।
1: और वो हो भी जाता है,
2: मतलब 17 सेकंड्स कोई और थॉट नहीं आना चाहिए।
0: हाँ, और नहीं आए, यही थॉट आए जो भी कि मुझे सफल होना है, मैं निर्भय बन रहा हूँ।
2: जो हम बात करते हैं ना, एक जो आपका गोल है वो गोल भी इसी में आ जाएगा ना, कि अगर आप उस थॉट को इतना कन्विक्शन से कर सकते हो कि कोई भी एक यू नो डिस्टर्बिंग वाली थॉट बीच में नहीं आए, तो पूरी दुनिया और लोग उस तरफ ऑटोमेटिकली आपको सहयोग देना शुरू कर
1: देगा। कायनात भी जो है ना, अगर सच्चे दिल से कहो तो ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच होगा अगर आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर ये प्रूव किया।
2: इट्स अ लॉ, इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ दैट द मोस्ट डोमिनेटिंग थॉट एवरीथिंग विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड इट वर्क्स।
1: 17 सेकंड्स,
2: लेकिन इवन अ नेगेटिव थॉट सिचुएशंस विल गेट अट्रैक्टेड टू।
1: सो वो नेगेटिविटी को तो खैर हमें हटा के ही रखना है, लेकिन अगर सच में मन में कुछ ठान लिया है तो उस थॉट को भी अगर हम 17 सेकंड तक रख लेते हैं, 17 नंबर और सेकंड्स याद रखें।
2: ये अब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक थॉट 17 सेकंड होल्ड कर सके, क्योंकि 1 मिनट में 25 से 30 विचार आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, जैसे कल भी बताया सुप्रा कॉन्शियस को जागृत किया, जब माइंड इतना स्टिल हो जाएगा, थॉट्स की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, तब 17 सेकंड ओनली वन थॉट,
1: क्योंकि 17 सेकंड काफी
2: हो जाएंगे।
0: और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे इम्पोर्टेंट है, थॉट्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ यह बात अगर कन्विंस हो गई आपको, तो फिर आप ये सारी थेरापी को भी प्रैक्टिस करेंगे कि बल परिस्थिति एक ही हो, जैसे कि पिकनिक पे जाने या तो फॉर एग्जाम्पल सो ट्रैवलिंग, कि भी ट्रेन में लंबा सफर करना है आपको, तो यूथ के लिए तो वो एंजॉयमेंट, जो एडल्ट है वो समझेंगे ठीक है चलो जाना है तो हम जा
1: रहे, मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट
0: है। लेकिन बूढ़ों के लिए वो डिप्रेसिव हो सकता है,
1: परेशानी है।
0: हाँ, कि भाई वो एक ही बात है, परंतु क्योंकि लेवल डिफरेंट है, उनके थॉट्स, उनका अप्रोच डिफरेंट है, उसके कारण प्रतिक्रिया भी डिफरेंट हो।
2: लेकिन बुजुर्ग लोगों में भी कई बुजुर्ग लोग इंजॉय करते हैं ट्रैवल करने से, सेम सिचुएशन ऑल्सो, वो कहते हैं ये अच्छा टाइम है, इकट्ठे सब बैठते हैं टाइम पास, तो सेम सिचुएशन भी दूसरे अलग अलग लोगों के लिए, तो इसका मतलब इट्स इन आवर हैंड्स ना, हम ये भी नहीं कह सकते हम बुजुर्ग हैं तो नहीं,
1: हमारा वर्ग ही ऐसा है कि
0: ट्रैवल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर 2-3 एक्सपर्ट्स की बात भी बताना चाहता हूँ। एक मार्कस एरेलियस हुए, जिन्होंने बहुत ही थिंक करते, बहुत कुछ उन्होंने विचार प्रदर्शित किए, उन्होंने कहा है कि यू आर व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर थॉट्स। आप जो भी आज खुश है, डिप्रेस्ड है, बैलेंस्ड है, वो आपके विचार ही आपको ऐसा बनाते हैं। शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छा कहा है कि परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको जो अर्थ देते हैं, वो अर्थ महत्वपूर्ण।
1: तो डॉक्टर साहब, फाइनली बात ये आती है कि हमारे विचार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कि किस तरह के विचार आ रहे हैं और कितना उन्हें बदलना जरूरी है। टेक्निक में आते हैं कि किस तरह से, अब आपने बहुत इंस्पायर कर दिया है कि ये इट इज पॉसिबल। शिवानी बहन भी कह रही है कि हाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है, तो क्या वो टेक्निक है जिसे हम अपना के उस ये जो पूरे हमारे विचार है जो नेगेटिविटी है उसे चेंज कर सकते।
0: बहुत अच्छा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कई टेक्निक्स है और हर ऑथर ने उसमें मॉडिफिकेशन भी किया है। मैंने अपनी तरीके से कुछ बातों को सोचा है
1: जी।
0: एक तो उसमें मैंने 5 स्टेजेस बनाई है उसकी, कि क्या करना है हमें सचमुच। उसमें सबसे पहली स्टेज है सजगता या अवेयरनेस, कि हमको पता चले कि विचार कौन से आ रहे हैं। हमने समझा भी कि विचार ही डिप्रेशन निर्माण करते हैं, तो इसलिए पहले तो विचार को समझना होगा। और वो कब हो सकेगा, कि जब आप जागृत होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप है कि अभी उसको कैच करो।
1: अवेयर मींस मतलब मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या
0: क्या विचार चल रहा है,
1: क्या क्या सब वो आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं,
0: क्या थॉट्स आ रहे हैं।
1: तो लेकिन 1 मिनट में आपने कहा कि हम 25 से 30 थॉट्स आते हैं, तो हर मिनट के थॉट्स को मैं जान पाऊंगी क्या आ रहे हैं।
0: अगर आप जागृत होंगे, हम इसके अभी आगे चल के चर्चा करेंगे कि अगर हम अवेयरनेस का अभ्यास करें तो सचमुच वो इमर्ज होने से पहले भी कैच कर सकेंगे।
2: अच्छा, जब हम अवेयर होते हैं तब वो स्लो हो जाते हैं। जब हम जैसे अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो वो कुछ भी कर रहा होगा लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखने लग जाओ
1: तो वो एकदम से
2: तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। द माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो वो
1: अपने हिसाब से
2: चल रहा है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस, किसी के लिए भी, आप किसी को भी इस तरह से देखो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, माइंड भी कॉन्शियस हो जाता है। तो जैसे ही हम माइंड को देखना, 25 to 30 थॉट्स इज इन एब्सोल्युटली, हम वी आर नॉट इवन लुकिंग एट इट, तो वो इतनी फास्ट स्पीड पे इतना कुछ चल रहा है। जैसे ही हमने उसको देखना शुरू किया उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वो हमें करनी नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन जैसे ही हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होने लगती है कई चीजें। हमने देखा ही नहीं था तो वो फास्ट चल रहे थे। पहला स्टेप सिर्फ देखना शुरू करते हैं और कुछ नहीं करते। पहला काम तभी हो जाता है कि वो स्लो हो जाते हैं।
0: वॉच करना कहिए तो अवेयर होना, वॉच करना फिर भी थोड़ा क्रूड है, अवेयरनेस ज्यादा सूक्ष्म है। फिर दूसरा है कैच, वॉच किया आपने, अवेयर हुए, फिर कैच करो कि ये कौन सा थॉट है जो मुझे डिप्रेशन ला रहा है।
1: वही जैसे बच्चा भी कैच हम कर ले कि वो गलत काम करने लगा है। वंडरफुल, ओके।
0: दूसरा स्टेप है, वो सारी टेक्निक है, उसको विस्तार से हमें समझना चाहिए, अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब सूक्ष्म में भी डिप्रेशन आता है, उससे मुक्त हो सकते हैं। फिर तीसरी स्टेज है जिसको कहेंगे अंडरलाइन, कि भी वो कौन सा डोमिनेंट विचार है, कौन सा नेगेटिव विचार है
1: जो बार बार आ रहा है।
0: हाँ, विचार भी नहीं कहूंगा मैं तो, कहता हूँ वर्ड। एक है ना वर्ड होता है, जैसे कि किसमें यूजलेस, हर बात में आप देखो आपके विचार में आई एम यूजलेस
1: और ही इज यूजलेस, शी इज यूजलेस।
0: मे बी हम अपने लिए अपना सोचते हैं कि अरे मैं अपना कपबोर्ड भी ठीक से जचा नहीं पाता हूँ, आई एम यूजलेस, है ना, मैंने ये भी काम ठीक से नहीं किया, आई एम यूजलेस। तो वो एक वर्ड होता है कोई ना कोई, आई एम इन्फीरियर, तो उसको अंडरलाइन करो, एक शब्द को आप अंडरलाइन करो तो बहुत अच्छा है। फिर स्टेज है जिसको कहेंगे स्टॉप।
1: ओके,
0: अब वो जो विचार आपका आ रहा है उसको स्टॉप करने की जरूरत है, तो वो भी डिफरेंट टेक्निक्स है इसमें, वो टेक्निक्स के द्वारा आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेज है ट्रांसफॉर्म,
1: जो बदलने की बात,
0: अब उसको परिवर्तन करना है, ताकि डिप्रेशन से तो आप परे हो ही जाओ, परंतु जो हमने वो सिक्स स्टेजेस देखी थी कि स्पार्क इन लाइफ, सदैव लाइवलीनेस रहे, ऐसे हम विचार करें तो वह स्टेज बन सकती।
1: ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, सजगता से हम शुरू करते हैं, फिर पकड़ते हैं यानी कैच करते हैं, फिर हम अंडरलाइन करते हैं यानी कि उसे मार्क करते हैं कि ये है वो शब्द, ये है वो विचार या जो भी है एक नेगेटिविटी, एंड देन वी स्टॉप एंड देन अगेन ट्रांसफॉर्म। सबसे मुश्किल स्टेज कौन सी है?
2: लेट्स सी सबसे इजी स्टेज कौन सी है? जैसे आप पहले सबसे मुश्किल देख लोगे तो साउंड वेरी डिफिकल्ट।
1: एक्चुअली नहीं, पर सबसे मुश्किल मुझे लगा कि जान लेंगे, ये भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए, मुझे लगता है ये मेरा एक नेगेटिव वर्ड है मुश्किल, तो उसको अंडरलाइन मुझे कर लेना चाहिए,
0: मुश्किल हो सकता है।
1: नहीं तो अच्छा, सबसे आसान स्टेज पे आते हैं, चलिए।
0: अच्छा, सबसे आसान स्टेज जो यही कहेंगे अवेयरनेस सबसे आसान है, और बस आप करने भी लगो ना तो आपको इजी लगे।
1: कुछ कड़ियों पहले की ट्रैफिक कंट्रोल की बात की थी कि हर घंटे बाद आप, मैं रुक के देखूं, हम देखें, रुकें, पॉज लें और देखें, ये नहीं कि सोचें, देखें कि क्या विचार था। मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या था, वो डर इतना जाते हैं कि क्या था, नहीं समझ में आता कि क्या था, और उसके बीच में कोई और विचार आ जाता है। आई ट्राइड एक्चुअली,
2: ठीक है,
1: बट इट हैज नॉट हैपेंड। सो मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, अवेयर होना,
2: अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे मुश्किल लग रहा है। आप बार बार करते जाओ, एक दिन में आठ, उस एक चीज को छोड़ना नहीं, कई बार लगता है कि नहीं, उसको छोड़ना नहीं। पहली बार हम कुछ भी करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज भी पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, और मेजोरिटी लोग थोड़ा सा दर्द होने के टाइम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा दर्द जब क्रॉस कर लिया उसके बाद वो नेचुरल लगता है, और थोड़े दिन के बाद अगर वो नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो अच्छा नहीं लगता, बट वी हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी ना। तो इसी तरह जब हम ये मेडिटेशन या इंट्रोवर्ट जाना ये प्रोसेस शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुरू में चैलेंजिंग लगता है ना, इमेजिन वी लेड आर होल लाइफ विदाउट लुकिंग एट समथिंग, तो फिर लेकिन देखना शुरू करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, नहीं चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसको बंद नहीं करना। बंद बिल्कुल नहीं करना
1: है। विचार जो मैंने देखने हैं, जो आप कह रहे हैं अवेयर होना है, सजग होना है,

0: ऐसे थोड़ा थोड़ा दो दो सेकंड भी आप देखो, एक डायरेक्शन बना लो अपने, ठीक से डायरेक्शन बना ले तो बहुत फायदा होता है। मैंने स्वयं करके देखा है, इसका फायदा सिर्फ वर्णन करने से नहीं
1: नहीं, अब अच्छा मैंने किया है, अभी अभी आप बोल कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो लेकिन उससे क्या होगा, मुझे रियलाइज होगा यहाँ दर्द हो रहा है, आंखों में थोड़ा दर्द है, गला सूख रहा है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है, तो इससे आप
0: करो
1: अवेयरनेस से फिर क्या होगा?
0: अभी देखो उससे एक तो इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि भी आप और विचारों से डिटैच हो जाएंगे, और विचार जो आ रहे हैं अभी इस समय, हमें जो टेंशन के विचार भी होते हैं, निराशा लाने वाले भी होते हैं, सबसे बड़ा फायदा मैंने अनुभव किया कि उससे हम डिटैच हो जाते हैं। दूसरा जो फायदा ये अनुभव किया कि ये पता चला कि भाई हम कितने कमजोर है मन को एकाग्र करने में। मैंने कई बार किया, थोड़ा भी नहीं पहुंचते, मन कहीं खिसक जाता है, 10 सेकंड के बाद मालूम पड़ता है अरे मैं तो यहाँ था,
1: और
0: तो
1: फिर
0: वापस
1: कहां
0: ले
1: कहां
0: आओ,
1: कहां से कहां कहां से कहां जोड़ता जाता हूं।
0: तो वापस ले आओ,
1: अच्छा
0: और वापस लाओ तभी दुखी ना हो। कुछ लोग तो दुखी हो जाते हैं,
2: डीमोटिवेट नहीं होना। दैट्स व्हाट हैपेंस लाइक जब हम बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, पहली बार इधर तक ही हाथ पहुंचता है, नीचे तक जाता ही नहीं, लेकिन करते करते वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और नीचे तक टच हो जाएगा। सेम थिंग विद द माइंड।
0: तो वापस जब लाओ 5 सेकंड के बाद, तो वाह बहुत अच्छा कनुप्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वापस आ गई, अपने आप को बोलो
1: वापिस उसी पे आ गए।
0: आई एम लकी दैट आई हैव कम। 5 सेकंड ही गए, 15 सेकंड
1: लेकिन
0: नहीं
1: हम
0: गए
1: यहाँ
0: मेरे।
1: पे क्या करते हैं, मतलब मैंने जो महसूस किया मेरे ख्याल से ज्यादातर कि हम अपने आप को कहते हैं कि देखा इतना भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर भाग
2: दिस
1: जाता
2: इज
1: है।
2: ओनली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यू नो यू वॉन्ट टू चेक कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो मेजोरिटी जो सेल्फ टॉक है अपने आप की रिजेक्शन की है। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग के अरे वाह आई डिड इट फॉर 5 सेकेंड्स, आई विल से ओ आई हार्डली वॉज एबल टू डू इट। नाउ दैट मीन्स आई रिजेक्टेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आई कुड डू इट फॉर 5 मिनट्स। इन एवरी स्टेप, छोटी से छोटी चीज से लेकर, दिस इज द वे बी टॉकिंग टू आवर सेल्फ एंड द सेम थिंग विद अदर पीपल। जो लोगों के अंदर विशेषता है, जो वो अच्छा करते हैं, उसकी रिकग्निशन नहीं करके आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप ये भी गलत। कितने देर में सारे दिन ये बोलते हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने ये बहुत अच्छा किया, नहीं। सो दैट इज वेयर वी कम टू नो कि एक्सेप्टेंस कितनी है और रिजेक्शन कितनी हो रही है सारा दिन।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा।
0: और एक बहुत फायदा ये होता है कि कई बार ना मैं टेंशन है, जैसे भी मैं बैठा भी हो सकता है कि हाँ मुझे टेंशन है, मैंने अननेसेसरी उसको होल्ड किया है, तो जब मैं देखने लगता हूँ तब पता चलता है कि इसको मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है।
1: ओहो छोड़ दो,
2: कॉन्शियस हो जाते हैं,
0: हो सकता है। थाइज में कई बार हम अननेसेसरी टेंशन रखते हैं, तो जब आप जागृत होते हैं तो उसको रिलैक्स करना इजी हो जाता है, कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह होने लगेगा। और एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि ऐसे हम करते हैं तो विचारों के प्रति भी हमारा ध्यान जाने लगता है। पहले तो शरीर की संवेदनाओं को आप देख रहे हैं, लेकिन फिर आप में जो प्रीडोमिनेंट विचार आ रहे हैं, कि जैसे जेलसी के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार आ रहे हैं, अपने आप को डिग्रेड करने के विचार आ रहे हैं, तो उसके प्रति भी हम सजग हो जाते हैं, हाँ ये है मेरे में, फिर उसके साथ वर्क करना भी इजी हो जाता है।
1: तो इसका मतलब सबसे पहली चीज जो है वो सजग होना, जैसे आपने कहा कि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से अवेयर होते जाएं, और एक एक्सरसाइज है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस, इसके लिए काफी काम करना पड़ता होगा, वक्त लगता है कि पूरी सजगता में आने के लिए।
0: तो उसको दिन का हिस्सा ही बना लो, भले टाइम तो देना ही पड़ेगा, वो आप सोचो मैं 2-2 मिनट करूंगा, नहीं होगा, आपको एक 15-20 मिनट देनी चाहिए, क्योंकि तब पूरा कितनी बार मन भागा आपको पता चलेगा। और तब ही आपके मन में जो अंदर में विचार उभर रहे, जो भी नेगेटिव, डिप्रेशन करने वाले, गुस्से के, गिल्ट के, तो विचार भी सामने आएंगे और उससे भी फायदा होगा। और बहुत अच्छी बात मैंने ऑब्जर्व की जब इस सारे प्रोसेस को मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब मैं MBBS में था तभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया, और फिर साइकोथेरापी का भी लक्ष्य इसीलिए रखा, मैंने तो ये सोचा था कि मैं सर्जन बनूंगा ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने से पहले, और मैं अच्छा भी था, एनाटॉमी में आई वॉज वेरी गुड। लेकिन जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया तब यह सोचा कि अगर मैं साइकोथेरापी को सीखूं तो आई विल बी क्लोज टू सोल, यह जो मैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रहा हूं उसमें यह मेरी पढ़ाई भी मुझे मदद करेगी, तो इस लक्ष्य से फिर साइकोथेरापी की भी स्टडी की, तो यह देखा कि विद्या सेम। अभी जब शिवानी बेन बता रहे थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो 5 स्टेजेस मैंने बताई, राजयोग की जो स्टेज है ना, मोर और लेस सेम है। उसमें भी यही कहते हैं कि भी पहली है प्राथमिक अवस्था, फिर दूसरी स्थिति को कहते हैं मनन चिंतन।

0: ना, तीसरी कहा है एकाग्रता और चौथी है अनुभूति। तो सिमिलर ये स्टेजेस भी है और राजयोग में भी यही है कि विचारों को टर्न करना।
1: विज्ञान और अध्यात्म अगर हम कहीं एक जुड़ाव पे पहुंच जाते हैं, कहीं एक इंटरमिंगल हो जाता है, तो देन
0: जिन्होंने मुझे सिखाया भी, जो योग की विधि जो ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे सिखाई है, उन्होंने यही सिखाया था। तब तो साइकोथेरापी सीखी भी नहीं थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि शुरू में विचारों को देखो। कहा कि योग करना वो गाड़ी चलाने जैसा है। कार चलाते हो तो क्या करते हो कि जब मोड पर टर्न करना होता है तो पहले स्पीड को कम कर देते हो और फिर स्मूथली गाड़ी को मोड़ते हो। तो कहा राजयोग में भी यही है, पहले विचारों की स्पीड को कम करो और फिर उसको आध्यात्मिक दिशा में मोड़ो, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन में मोड़ो।
1: बिल्कुल, तो ये डिप्रेशन से निकलने का एक गुरु मंत्र अगर हम कहें, या सिर्फ डिप्रेशन क्यों, जिंदगी के किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से निकलने का, किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकलने का जो कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिंदगी जीने का, एक बहुत अच्छा तरीका बन
2: नहीं एक्चुअली ये माध्यम यूज करेंगे तो उस फेज में नहीं जाएंगे,
1: बिल्कुल कभी भी नहीं जा पाएंगे।
0: और तो ये भी डे टू डे भी भले हम उसको डिप्रेशन नहीं भी कहेंगे, डे टू डे हमें प्रॉब्लम आते हैं कि भी रास्ते में आपको अपने कलीग मिले उसने स्माइल नहीं दी तो आप सोचने लगते हैं ना, आपके बॉस ने, आप बहुत हार्ड वर्क करके कुछ आपने प्रोड्यूस किया, आपके बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया आपका, सोच बड़े डिप्रेशन नहीं हुआ परंतु जो विचार है आपके शुरू हो गए कि ऐसा क्यों हुआ?
1: तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं उन्हें हम कहीं अपने से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और पहले एस्पेक्ट को अभी हमने छुआ ही है, जो पांच स्टेजेस हैं जहां हम इस पूरी थेरेपी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये सिर्फ थेरेपी ना, जिंदगी जीने का एक तरीका है। चाहे वो हम ये कहें कि थेरेपी कहें या फिर राजयोग कहें, एक बात वही है, जिंदगी जीने की, जिंदगी जीने का तरीका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पांच स्टेजेस हैं जब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की, कि सबसे पहले सजग होना, यानी कि अवेयर हो जाना हमारे थॉट्स क्या हैं, हम अपने बारे में ही सजग हो जाएं, और उसके बाद है कैच करना, और उसके बाद उसे अंडरलाइन करना, और उसके बाद स्टॉप करना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, एंड देन ओनली विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म। ये पांच बातें हम याद रखेंगे, इन्हें डिटेल में जानेंगे आने वाली कड़ियों में। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसकी अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: टंट्या भील एक ऐसे आदिवासी नायक हैं जिनकी शौर्य गाथा आज भी भीलांचल के निवासियों की जबान पर है। टंट्या का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के विरदा गांव में आदिवासी किसान भाव सिंह के घर हुआ था। टंट्या बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक थे। तीर कमान और बंदूक से अचूक निशाना लगाने वाले टंट्या 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अद्भुत रफ्तार से दौड़ा करते थे। हिंदुस्तान पर हुए विदेशी आक्रमण का पहला मुकाबला वनवासियों और आदिवासियों ने किया था। टंट्या की अंग्रेजों से पहली भिड़ंत मात्र 13 साल की उम्र में हुई और 16 साल की उम्र तक टंट्या पूरी तरह क्रांतिकारी बन गए। टंट्या की वीरता का साम्राज्य नागपुर से मंदसौर और झाबुआ से देवास तक के जंगलों में फैला हुआ था। वे अंग्रेजी खजाने और स्थानीय जनता का शोषण करने वाले मालगुजारों को लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। उनका उद्देश्य केवल लूटमार करना नहीं बल्कि शोषकों को दंड देना था। वे अंग्रेजों के खिलाफ उस अग्नि को और तेज प्रज्वलित करना चाहते थे जो वनांचलों और पर्वतों की तलहटियों में बसे टोलों में उनके जन्म से पहले नादर सिंह, चील नायक, सरदार दशरथ, हिरिया, गोंडाजी, दंगलिया, शिवराज पेंडिया, सुतवा, उचेत सिंह, करजर सिंह आदि नायकों ने जलाई थी। टंट्या के समाज के प्रति जुड़ाव, जनसेवा, प्रत्येक व्यक्ति के हितों की चिंता और नारी सम्मान के गुणों ने उन्हें वन प्रांतरों की एक अलौकिक किंवदंती बना दिया था। टंट्या वन में शरण के लिए आए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रयदाता भी थे। वे पहले इंकलाबी थे जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने न केवल टंट्या पुलिस ब्रिगेड बनाई बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े। 11 अगस्त 1889 को श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन टंट्या की मुंहबोली बहन के पति द्वारा की गई गद्दारी ने टंट्या को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। 26 सितंबर 1889 को उन्हें जबलपुर के कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा। 4 दिसंबर 1889 को टंट्या को फांसी की सजा दे दी गई।

ये हुंकार है टंट्या भील की, वो टंट्या भील जो शोषितों का सहारा था और शोषकों को छका देने वाला क्रांतिकारी। टंट्या मालवा और निमाड़ का स्वाभिमान है, भीलों के शौर्य की पहचान है। 1857 के दौरान ये वीर योद्धा तब उठ खड़ा हुआ जब अपनी ही धरती पर हम गुलाम थे। गुलाम अंग्रेज और उनके चाटुकार जुल्म ढा रहे थे। ऐसे स्याह काल में टंट्या ने अंग्रेजों का मुकाबला किया।

0: विरदा में जन्मा टंट्या 5 वर्ष का हुआ तो माँ जीवनी चल बसी। पिता भाव सिंह और गमत्या मामा ने वीर विद्या सिखाकर बचपन निखारा। तकलीफों की भट्टी में तपता टंट्या हर दबे कुचले को ठंडक देता गया और जीवंत किवदंती बन गया। पहली बार टंट्या का सब्र तब टूटा जब चारों तरफ अकाल पड़ा था। निमाण दाने दाने को मोहताज था, उस पर अंग्रेजों की लगान वसूली की सख्ती। रात को जब शिवा पटेल के लठैत अंग्रेजों के जश्न के लिए भीलों के बाड़े से लड़कियां लेने आए,
1: ले चलो इन भीलनियों को।
2: खबरदार जो यहाँ की औरतों को हाथ लगाया तो।
1: टंट्या तू बीच में मत पड़।
2: अरे धिक्कार है तुम्हें, अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत लेने आए तुम।
1: अरे बात को समझो टंट्या।
2: तू मुझे समझा रहा है?
1: सुन टंट्या, पटेलवा का संदेश है, ये गोरे अफसर खुश हो गए तो कल लगान में नरमी पड़ जाएगी।
2: अपनी औरता की इज्जत देकर लगान में नरमी चाहो तुम? अरे कसे भील मरद हो तुम, औरत तो घर बिरादरी की इलाज होवे और तुम लोग उसे लेने आए।
3: तू हमारे रास्ते से हट जा टंट्या, और वैसे भी औरत तेरी कौन लगती है?
2: बाड़े की जितनी भी औरतें हैं वे सब मेरी बहनें हैं। जब तक मैं खड़ा हूँ की मैं हिम्मत है कि इनकी लाज बिगाड़ दे।
1: बस बस टंट्या, अब हमें अपना काम करने दे।
2: खबरदार कोई भी आगे बढ़ा तो मेरा ये हथियार डाओ और तुम्हारा

0: टंटिया, ओ टंटिया।
1: टंटिया मामा, ये तो दौलिया की घबराई हुई आवाज है।
0: टंटिया टंटिया वो।
1: हाँ हाँ बोल दौलिया, क्या हुआ?
0: टंटिया वो शिवा पटेल और अंग्रेज लगान के लिए।
1: लगान के लिए? क्या दौलिया, क्या किया?
0: हमारे डेरे की औरतों को बेच के लगान वसूलने की बात कर रहे थे टंटिया। और
1: क्या दौलिया?
0: और तेरे भाऊजी की पगड़ी पर लात दे मारी उन गोरों ने।
1: इतना अपमान? नहीं दौलिया, नहीं टंटिया, ये सब नहीं सह सकता।
2: शांत शांत हो जा टंटिया, शांत हो जा। देख भाव सिंह भी आ गया।
1: मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने अपनी पगड़ी, अपना ईमान झुका दिया? अरे आप कैसे भूल गए ये सब कुछ?
3: नहीं टंटिया, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। शिवा पटेल की तेरी माँ पे बुरी नजर थी, मेरी जीवड़ी को मार डाला ना, सब कुछ याद है मुझे। इन जख्मों के साथ जी रहा हूँ मैं। अरे मैं तो बस तेरे बड़े होने की बाट देख रहा था बेटा।
1: अब तो मैं बड़ा हो गया ना बाबूजी।
3: पर ये समय आवाज उठाने का नहीं है बेटा।
1: क्यों नहीं बाबूजी?
3: एक तो अकाल, और ऊपर से उनके पास बहुत शक्ति है बेटा।
1: मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं, ना सही, मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। मैं तो चला।
3: अरे सुन तो टंटिया, अरे कहाँ जा रहा है? अरे कोई कोई रोको रे टंटिया को। टंटिया
4: ले थारी कुकड़ी, ले थारी थार, ले थारी कुकड़ी, ले थारी थार।
5: अरे जाने दे जीजा, टंटिया तो हवा है हवा, उसे रोकना किसी के बस में नहीं है।
3: गंत्या, उस पटेल की लठैत कुचल देंगे टंटिया को।
5: अरे तीर कामठा और डाव चलाना जानता है टंटिया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो टंटिया को कुचल दे।
3: पर गंत्या उसका दल कमजोर है अभी।
5: टंटिया का दल और कमजोर? अरे नवगजा पीर की शक्ति, शिवा बाबा और माँ भवानी का आशीर्वाद, और मेरी सारी विद्या है टंटिया के पास। मेरा टंटिया तो बांस का खोपा है, खच्चे से छाती चीर देगा शिवा पटेल की।
3: फिर भी मुझे डर लग रहा है गंत्या, चल देख कर आते हैं टंटिया को। चल
5: मेरा टंटिया शेर है शेर।
3: तू कुछ भी बोल ले बेटा, मैं तो चला अपने बच्चे को बचाने के लिए।
5: जो दुनिया को बचाने आया है उसे तू क्या बचाएगा भाव सिंह? तेरी बाप की ममता अपने बेटे की बहादुरी को नहीं पहचान सकती।

0: जय माँ भवानी,
1: जय माँ भवानी।
2: ये तो पटेल के हिसाब किताब के लाल बही खाते हैं टंट्या।
3: ले आया पटेल का काला चिट्ठा, इन्हीं के दम पे वो मनमाना ब्याज वसूलता था ना, अब रोएगा मेरे नाम से।
4: अरे जसूदी, सुखदी, ये तेरे साथ कहां से आ गई टंट्या?
3: इन्हें भी छुड़ा लाया शिवा पटेल के नरक से। इतने सालों से रखेल बनाकर रखा था सुखदी माँ को। यही नहीं, वो पापी जसूदी पर भी बुरी नजर रखता है।
4: ये तूने नेक काम किया टंट्या।
3: चारे माचिस ले आ, पट्टी शिवा पटेल के बही खाते जलाकर राख कर देंगे।

0: बिटिया, बैठे बैठे सारी रात हो गई, कब तक यूं ही सहते रहोगे?
1: हम भीलों ने पूरी ईमानदारी से चाकरी निभाई, फिर भी हमारे साथ ये बेईमानी क्यों? इन लोगों ने हमारा सब कुछ छुड़ा लिया और ये बेगारी का रिवाज चलाया। बेगारी करते करते भीलों की पीढ़ियां मर गईं, फिर भी कर्जा जस का तस। कब तक सहें ये सब? नहीं जसूदी, अब हम और नहीं सहेंगे।
0: तू सही कह रहा है टंट्या, मैं तेरे साथ हूं।
1: जसूदी, मैंने नई दुनिया बनाने की, नया राज चेताने की कसम उठा ली है। जसूदी, जानता हूं ये रास्ता बहुत मुश्किल है। देख, तू चाहे तो डेरे में रह सकती है।
0: यहां डेरे में रहने के लिए मैंने कदम बाहर नहीं निकाला था टंट्या। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी परछाई हूं, जहां तुम्हारा निवास वही मेरा रहवास।
1: देख जसूदी, तुम्हारी साथी है, सब कुछ है, और जब तक मारो काम पूरा नहीं हो जाए, कोई जिम्मेदारी निभाना मुश्किल है।
0: मैं हर सोच में तेरे साथ हूं टंट्या, फिर ये अलग से कैसी जिम्मेदारी और क्यों?
1: अपना हक लेने के लिए इन गरीबों को आगे बढ़ाना हमारा पहला कदम है।
0: साथ में मेरा भी।
1: देर सवेर ही सही, मारो विश्वास है ये जागेंगे जरूर।
0: तुम्हारे विश्वास के साथ मेरा इरादा पक्का है।
1: तो आज हम इन जुल्मियों को मिटाने की कसम लेते हैं।

0: टंट्या और जसूदी ने कोमल पोमली का वेश धारण करके मालवा निमाड़ राजस्थान में चेतना जगाई। 5 साल बाद विरदा आकर लोगों में अपनी जमीन अपना अधिकार लेने की हिम्मत बंधाई। तभी टंट्या को पुलिस ने पकड़ लिया और जबलपुर खंडवा नागपुर जेल में घुमाते रहे। जेल से छूटकर टंट्या पहले पोखर फिर हीरापुर पहुंचा। हीरापुर के हिम्मत पटेल ने टंट्या को झूठे आरोप में पकड़वा दिया और फिर उसे जबलपुर जेल भेज दिया गया।
1: राम राम जेलर साहब।
2: राम राम टंट्या।
1: जेलर साहब, मेरी सजा के 3 महीने तो पूरे हो गए, अब तो छोड़ दो मारे।
2: कल तुम्हें भेज दिया जाएगा।
1: कोई बात नहीं, एक दिन और सही।
2: हवलदार, इसका खास ध्यान रखना।
3: जी साहब।
2: और हाँ, सब कुछ योजना अनुसार होना चाहिए।
3: जी साहब, हम लोग 4 लोग हैं।
2: लो, संग्राम आ गया, अब तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ।
1: राम राम संग्राम।
3: राम राम।
1: अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मेरी छुट्टी होने वाली है। तूने मेरा बहुत ध्यान रखा, तू मेरे गांव आना, फिर देखना टंट्या की खातिरदारी।
3: नहीं टंट्या, ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुकदमे के बहाने खंडवा ले जाएंगे और दूसरा मुकदमा लगाकर फिर बंद कर देंगे।
1: धोखा, वो भी टंट्या के साथ।
3: अभी धीरज रख टंट्या, रास्ते में युक्ति सोचना।
4: चलो टंट्या। टंट्या, ये सब क्या है, कहाँ जा रहे हो?
1: खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश की तो।
4: टंट्या रुक जा, वरना।
1: वरना क्या थानेदार, बोलना
4: कहाँ जा रहे हो?
1: असल में तेरी परेशानी ये है कि ना तो तू मुझे पकड़ सकता है और ना ही मेरी रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार आज से मैं बरी हूँ। और हाँ, फिर भी पीछा करने की हिम्मत है तो 30 कोस तक दौड़ लगा कर देख ले।

अब होलकर स्टेट टंट्या का विश्राम घर था। ये वो समय था जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य प्रमुख सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। वे छापामार युद्ध करते हुए निमाड़ आ पहुंचे। टंट्या के गुरु शिवा बाबा ने तात्या टोपे से टंट्या की मुलाकात करवाई। टंट्या ने तात्या टोपे से न सिर्फ गोरिल्ला युद्ध सीखा बल्कि खरगोन किले फतेह में अग्रणी सेनापति के रूप में नेतृत्व भी किया। बस यहीं से टंट्या ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा रुख किया और जन्म हुआ एक नए टंट्या का, स्वतंत्रता सेनानी टंट्या का। टंट्या का सामाजिक शोषण के खिलाफ संघर्ष अब स्वाधीनता संघर्ष में तब्दील हो गया।

0: पोखर गांव के सरदार पटेल और अंग्रेजों ने मिलकर टंटिया की स्वाधीनता अभियान को रोकने की साजिश रची। टंटिया को कैद करके खंडवा जेल भेज दिया गया।
1: क्यों टंटिया, सब ठीक है ना?
2: क्यों मेजर साहब, तसल्ली के वास्ते आए हो?
1: अब तो शेर पिंजरे में है।
2: तेरी फुसफुस फौज ने धोखे से पकड़ा है, आगे से वार करते तो मजा आता।
1: धोखे से नहीं टंटिया, गवाहों और सबूतों के आधार पर पकड़ा है तुम्हें।
2: रहने दो साहब, तुम्हारी झूठी गवाही और झूठे सबूत, उस हिम्मत पटेल का सारा झूठ तो मैं बाहर आके निकालूंगा।
1: बाहर निकलोगे तब ना।
3: ये कैसे कह सकते हो साहब? याद रखना, हमारे टंटिया की हुंकार कभी खाली नहीं जाती।
1: वाह बहादुरों, बहुत खूब। सलाखों के पीछे हो, हाथ में हथकड़ी है और ऊपर से हुंकार की धौस है।
3: मेजर साहब, हमारा टंटिया शेर है, शेर आपका पिंजरा हिला देगा।
1: हाँ सपना अच्छा है दौलियावील, तुझे काला पानी की सजा हुई है ना, वहाँ उम्र भर देखा करना ये हसीन सपने।
2: ये तो आने वाला समय बताएगा कौन सपना देखेगा और कौन तारा।
1: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि अच्छा किया जो बिजन्या को हमारे साथ कर दिया। अब दौलिया, टंटिया और बिजन्या हम तीन व्हील हैं, संभाल के रखना इस कैद खाने को।
1: सलाखों के पीछे भी गरजना नहीं छोड़ा
3: शेर जो है।
1: तो शेर जी, अब आराम से इस चार दीवार में गरजना। हाँ? चलो सिपाहियों।
2: बिजन्या,
4: हाँ?
2: दौलिया,
4: हाँ?
2: ध्यान से सुनो, हम तीनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर छत की खबरेल तक पहुंच सकते हैं।
4: हाँ?
2: और फिर वहाँ से रस्सी डालकर बाहर।
4: हाँ टंटिया, ये बिल्कुल सही योजना है।
2: तो जल्दी कर, पहले बिजन्या तू निकल। निकल।
4: हाँ।
2: दौलिया, अब तू भी जा। अरे जाना।
4: पर टंटिया तू?
2: अरे तू फिकर मत कर मेरी, मैंने जवाब देकर आऊंगा।
4: ठीक है।
2: ए सपटिया, तेरे जेलर का पिंजरा उखाड़ के हम जा रहे हैं, किसी ने सवा शेर सोंठ खाई हो तो रोक ले।
1: क्या हो रहा है
4: सर? सर वो टंटिया चला गया।
1: क्या?
4: हाँ
1: टंटिया चला गया।
4: हाँ हाँ
1: पकड़ो उसे।
4: अब जी जी,
1: तुम साले सब के सब निकम्मे हो, अलार्म बजाओ।
4: जी
1: अलार्म बजाओ।
4: हाँ
1: आज टंटिया का काम तमाम होना था, इसने तो मुझे ही ठिकाने लगा दिया। अब ना तो इंदौर दरबार छोड़ेगा और ना अंग्रेज सरकार। टंटिया को पकड़वा कर प्रमोशन के सपने देखे थे, अब तो नौकरी बचाना मुश्किल है।
4: सर वो भाग गया सर।
1: क्या क्या क्या भाग गया
4: सर? जेल से भाग गया।
1: अरे मैं पूछता हूँ कैसे भागा वो?
4: सर इंतजाम तो पक्का था, हथकड़ियाँ।
1: टंटिया है वो, टंटिया भूल गए तुम लोग?
3: ए मजाक,
1: पकड़ो, यही कहीं है टंटिया।
4: जी सर
1: चारों तरफ फोर्स तोड़ा दो।
4: पकड़ो,
1: देखो यही कहीं है।
5: मेजर, हमने तहकीकात कर ली है
1: सर।
5: वो टंटिया तुम्हारे सामने से भागा और तुम देखता रहा
1: सर। वो
5: शट अप पुचटिल कायर।
1: सॉरी सर,
5: तुम किसी काम का नहीं है।
1: सॉरी सर,
5: एक बिल को काबू में नहीं कर पाया, यूजलेस इंडियंस, मोटी मोटी तनख्वाह खाता, काम कुछ नहीं करता, ऊपर से प्रमोशन मांगता, हम तुम्हारा डिमोशन करता।
1: सर प्लीज सर, लिसन टू मी सर, टंटिया भागा जरूर है, पर जल्दी किसी न किसी पटेल के घर बदला लेने आएगा, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे सर।
5: व्हाट पकड़ लेंगे? वो फिर भागेगा, तुम पकड़ता वो भागता, सालों से ये ड्रामा चलता।
1: सर हम पक्का इंतजाम करेंगे, उसके हाथ पैर बांधेंगे सर।
5: तुम हाथ पैर बांधेगा, वो बिल मुंह से सुरंग बना के भाग जाएगा।
1: प्लीज सर हमें एक मौका दीजिए सर।
5: ओके मेजर ईश्वर प्रसाद, तुम जोंदी पिटवा दो
1: सर।
5: इंदौर सरकार के 20,000 और अंग्रेज सरकार के 25,000। जो इस डाकू को पकड़ेगा उसे इनाम भी मिलेगा और नौकरी भी।
1: जी सर, इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई ना कोई मुखबिर तो बन ही जाएगा सर।
5: आई डोंट बिलीव, आखिर क्या है उस बिल में? डाकू है, लुटेरा है, पर दुनिया उसके साथ है। जेल में डालो तो भागता, बार बार भागता।
1: सर हमें सबक मिल गया है, अब हम कड़े इंतजाम करेंगे सर।
5: कितने बार सबक लेगा तुम? यू स्टूपिड, कुछ नहीं कर सकता। अब हम पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहेगा।
1: सर।
6: राम राम सरकार।
5: कहां से आया तुम?
1: सर, ये हिम्मत पटेल है।
5: क्या चाहिए?
6: गुहार लेके आया हूँ सरकार। सरकार मेरी मदद करें।
5: मदद? कैसी मदद?
6: मैंने खंडवा कोरट में टंटिया के खिलाफ गवाही दी थी। वो आज रात को मेरे घर बदला लेने आ रहा है सरकार। और खबर मिली है सरकार कि आज रात वो टाका डालेगा।
5: तुम क्या बोलता है मेजर?
1: सर, टंटिया ने डोंडी पिटवाई है तो वो जरूर आएगा। उसकी विशेषता है कि वो बोलकर आता है और बोलकर जाता है। यही तो बहादुरी है सर उसकी।
5: यू स्टूपिड, तुम उसकी बहादुरी का बखान करता है, वो भी मेरे सामने।
1: सॉरी सर, बट वी हैव टू प्लान सर।
5: शट अप। पटेल, हम तुम्हारी मदद करेगा, हमारे अफसर तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, और पकड़े जाने पर तुमको इनाम भी देगा।
6: आप धन्य है सरकार, माय बाप है आप सरकार।
5: आप तुम जा सकते हो।
1: सर, मैं भी उस बहादुर से आमने सामने की लड़ाई चाहता हूँ, वीरों की तरह। सर,
5: हम भी देखता है तुम उस शेर से कैसे निपटता है। ऑल द बेस्ट, अब हम चलता है।
1: बहुत खूब, आपने भी शेर बोला सर। वाह टंटिया वाह, अनपढ़ गवारों में कैसा बहादुर है रे तू। अंग्रेज सरकार का बड़ा अफसर भी तुझे शेर बोला। मन में इज्जत है तेरे लिए, दया के चर्चे खूब सुने थे तेरे, आज बहादुरी भी मान ली। चल शेर बहादुर, जल्दी मिलते हैं।
0: ১৮৮০ का समय था वो। टंटिया ने सीधा मुकाबला शुरू किया। श्रृंखलाबद्ध हमले करके हिम्मत पटेल, सरदार पटेल और शिवा पटेल को उनके किए की सजा दी। टंटिया के चौतरफे हमलों से पुलिस सचेत हो गई। टंटिया पुलिस ब्रिगेड की स्थापना की गई। लेकिन युद्ध के चरम काल में मुखबिर की सूचना से बिजन्या, दौलिया और मादिया पकड़े गए और उन्हें सजाएं हुई। पर टंटिया किसी के हाथ नहीं आया और छापामार युद्ध करता रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने गणपत राजपूत के साथ साजिश रची। गणपत ने टंटिया को राखी पर अपने घर बुलाया। टंटिया जसूदी के साथ गणपत की पत्नी से राखी बंधवाने जा पहुंचा।
7: अरे आओ टंटिया आओ, अरे बड़ी देर कर दी यहाँ आने में।
8: ये गणपत हमारे लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है?
2: तू अपना भरम निकाल फेंक बोमली।
7: अरे टंटिया, हम तो कब से तैयारी करके बैठे हैं।
8: किसकी तैयारी?
7: राखी की, और किसकी?
8: पर राखी की तैयारी तो बहने करती है ना।
2: अरे गणपत यार है मारो, अरे तू भी ना जसूदी।
7: आज तो रोटी खाए बिना जाने नहीं दूंगा टंटिया।
2: रोटी के लिए माफ कर गणपत, गांव भर की बहनों के यहाँ मुंह तो मीठा करने ही पड़ेगा ना।
7: अरे अरे सुनो, जरा पूजा की थाली लेकर आओ। टंटिया, सबसे पहले मैं तेरा मुंह मीठा करवाता हूँ।
8: देख मेरा दिल जोर से धड़क रहा है टंटिया, जल्दी चल यहाँ से।
2: तू भी ना पोमली।
8: शगुन भी ठीक नहीं लग रहा टंटिया, मेरी बात मान ले, अभी भी मान ले।
2: साथी कम हो गए हैं तो मन से कमजोर हो गई है तू।
7: ले टंटा खीर पी।
2: ला।
9: अरे ये क्या क्या क्या हो रहा है मुझे?
8: टंटिया तो ठीक तो है ना?
9: अरे मारे जसूदी।
8: हाँ?
9: मारे चक्कर आई दिया है।
8: अरे
9: मारा माथा चक्कर आई दिया है जसूदी।
8: अरे
9: जसूदी।
7: अरे सुनो, राखी बांधने की थाली ले आओ, सब तैयारी हो गई है ना।
8: टंटिया टंटिया, अरे अरे तू तो बेहोश हो गया रे।
10: जल्दी करो, चलो जल्दी।
8: और ये पुलिस यहाँ? धोखा टंटिया, टंटिया धोखा हो गया हमसे, धोखा। मेरा मन बोल रहा था ये कपटी दगाबाज है, इसकी मीठी वाणी में जहर सूंघ लिया था मैंने, पर तूने मेरी एक न सुनी। उठ उठ जा टंटिया, उठ।
10: तुम दोनों को पुलिस ने घेर रखा है।
8: वाह वारी बहन, खूब बांधा तूने प्रेम का धागा, तूने तो राखी के धागे की हथकड़ी बना दी, इस पवित्र रिश्ते पे दाग लगा दिया तूने। धोखाधड़ी के लिए तुझे प्रेम और विश्वास का यही त्योहार मिला था।
10: पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, टंटिया के होश में आने से पहले हाथ पैर बांध कर सलाखों के पीछे कर दो, वरना ये फिर हाथ नहीं आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो,
9: जल्दी करो। मारे जसूदी
11: सर, सर टंटिया को होश आ गया।
10: कोई बात नहीं, अब तो बंधा हुआ है, फिर भी उसे दूर से ही देखो।
2: अब ये हाथ पैर काय को बांध रहा, मैं कहां भाग रहा हूं? जब भागता था तो पकड़ नहीं सके, वो तो गद्दार निकला मेरा बहनोई। जीते जी इस धरती को आजाद देखने की इच्छा थी, फिर भी मन में संतोष है, लोगों में अपनी धरती का भाव जग उठा है, आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है। ये चिंगारी आग बन के अपना हक तो ले ही लेगी। मां जगदम्बा ने मुझे लोगों को जगाने का काम दिया था, वो बीज तो कब का लग गया है, उसका पौधा भी बड़ा हो गया है। मेरा विश्वास है इससे और शाखाएं फूटेंगी। ये अंग्रेज फांसी देकर मेरे शरीर को ही तो खत्म करेंगे, पर मेरी आत्मा से फलने फूलने वाले हजार टंटिया जन्म लेंगे और उनकी हुंकार अंग्रेजों को हमारी धरती से सात समंदर पार का रास्ता दिखा देगी।
10: ए टंटिया, चलो तुम्हारा समय हो गया है।
2: जय मां भवानी।

0: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुडेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू।
1: मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है।
2: सेम हियर।
1: बीइंग शक्ति इज बीइंग शक्ति।
2: सी इवन जस्ट द वर्ड, सी हर शब्द में ही कितनी पावर है, हर थॉट में कितनी पावर है। जैसे हम एक अच्छी थॉट भी क्रिएट करते हैं, अभी तो उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं देखा, सिर्फ वो थॉट क्रिएट करना और वो शब्द का उच्चारण करना ओनली फील्स नाइस।
1: हाँ, लेकिन कोई भी चीज के अंदर मैं अपना बोला आई एम शक्ति, बीइंग शक्ति, आई एम शक्ति, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। एकदम लो फीलिंग में से कम उस वक्त चेहरा बदल जाता है, थॉट्स बदल जाती है, चाल बदल जाती है, कितना फर्क पड़ता है।
2: बिकॉज द होल दैट्स द सीड ना, द कॉन्शियसनेस में चेंज आ रहा है। ये पहले कॉन्शियसनेस थी, नहीं मेरे पास पावर कहाँ है, गलती उनकी थी तो ठीक है ना, गुस्सा करना तो अलाउड ही। हम 10 रीजन जस्टिफाई करेंगे। सपोज आई एम वीक राइट नाउ, वीक इन द सेंस दिस इंस्टेंट आई वॉज वीक, ओके, कि कुछ हुआ एंड आई रिएक्टेड। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस। व्हाट नॉर्मली वी वर डूइंग वाज कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने किया ही ऐसा। एक एक थॉट डिसएम्पावरिंग है। हम जस्टिफाई कितना भी कर दें उसको, लेकिन वो एक एक थॉट जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में जस्टिफाई कर रहे हो,
1: लेकिन जस्टिफाई करने से और बढ़ता है ना फिर वो,
2: क्योंकि जस्टिफाई कर,
1: अगर मैं जस्टिफाई करूं कि नहीं उसकी गलती थी, मेरी वीकनेस थी, तो फिर और वो और पक्का हो जाएगा।
2: मेरी वीकनेस थी तो हमने बोला ही नहीं ना कभी,
1: मेरी वीकनेस नहीं थी।
2: हाँ,
1: ये तो उसकी गलती थी। अगर ऐसे करता जाऊं तो फिर वो जस्टिफिकेशन में वो जो आदत है और पकती जाएगी,
2: और पकती जाएगी,
1: वो संस्कार और पक जाएंगे।
2: इट्स लाइक ओके, आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, ठीक है। अब ये जो सड़क है ये स्मूथ नहीं है, इस पे एक एक एक एक ईंट ऐसे पड़ी हुई है। अब उस पे चलते समय मेरा पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सड़क ऐसे ही है, एंड अगर इस पे चलते हुए मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ है।
1: कमजोरी यहाँ भी, और थोड़ा ध्यान देके भी तो चल सकते हैं।
2: पर कमजोरी तो है ना, क्योंकि एक्चुअली हम चल सकते हैं इस पे बिना दर्द हुए, लेकिन अगर क्योंकि अभी थोड़ा दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ पर है। अगर वो एक अवेयरनेस भी आ जाए कि ये कमजोरी है, आई हैव टू टेक केयर। इफ आई डोंट एक्सेप्ट कि कमजोरी यहाँ पर है, और मैंने अगर जस्टिफाई किया कि सड़क ही खराब है, ये कोई सड़क है, ऐसे होती है सड़क, एक एक एक टाइल रखी हुई है, स्मूथ नहीं बना सकते थे, तो इमीडिएटली आई टेल माई माइंड यू आर फाइन, प्रॉब्लम सड़क की, फिर नेक्स्ट कुछ और आएगा। एंड एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कमजोरी यहाँ पर है, मुझे इस पर काम करना है, मैंने कहा कमजोरी दुनिया में है, गलतियां दुनिया में है, कमजोरियां दुनिया में है, नेगेटिविटी दुनिया में है, वीकनेस दुनिया में है। हमने कब कहा हमारे अंदर वीकनेस है? हमने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई
1: दिया,
2: तो और रिएक्शन हो जाएगा।
1: हम तो लड़ पड़ते, आप मुझे बोल रहे हो यार दिख नहीं रहा वो कैसे बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी टेढ़ी सड़क है, आपको मतलब सिंपल दिख नहीं रहा इतनी छोटी सी बात,
2: सिंपल तो पहले सड़क,
1: और एक्चुअली मुझे नहीं दिख रही
2: इतनी छोटी, पहले सड़क गलत थी, अब वो व्यक्ति भी गलत है जिसने कहा,
1: इसलिए लोग डरते हैं ना,
2: हाँ,
1: बताने के लिए।
2: तो अब अगर इसको जस्टिफाई करना, दिस डजंट मीन कि हम अपने आप को कहें आई एम वीक, नहीं, लेकिन इवन जैसे ये थॉट क्रिएट किया कि आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, तो ये थॉट मेरी थिंकिंग के अंदर एक चेंज जब लाना शुरू करेगी, और फिर उसको मैं अपने रिएक्शंस में ध्यान रखूंगी कि कोई बात आई, आई एम पावरफुल, सी व्हेन यू आर सिटिंग नाउ साइलेंस, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ किसी ने कहा नहीं, एंड यू सेड द वर्ड बीइंग शक्ति, एंड यू सेड बहुत अच्छा लगता है कहके, राइट? अब इसको, इसी शब्द को सिर्फ उस समय याद रखना है जब कोई बात आएगी कि बी शक्ति।
1: यही तो बेसिक प्रॉब्लम है, उस समय याद आए तो फिर और क्या चाहिए, उस समय दूसरी चीज ओवर पावर कर जाती है ना।
2: हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एक ग्रूव है ना जो बना है, पुरानी आदतों का, नई आदत का एक ग्रूव बनाना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करने के बाद भी, रिएक्ट करने के बाद भी, हो गया रिएक्शन, इट डजेंट मैटर, गुस्सा भी कर दिया, इट डजेंट मैटर, लेकिन व्हेन वी सिट बैक, रिफ्लेक्ट, सिर्फ उस रिफ्लेक्शन में जस्टिफाई नहीं करना अपने रिएक्शन को।
1: अच्छा, अकेले में?
2: अकेले में हो गया गुस्सा, इट्स ओके, ये पुराना ग्रूव है, ये वर्क करेगा अभी।
1: चलिए, आपकी ये बात मानता
2: हूँ। गुस्सा भी नहीं, जेलेसी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, कोई भी अनकंफर्टेबल संस्कार।
1: चलो, मैंने जो भी किया उसको मैं अकेले में जस्टिफाई नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ?
2: मैं अकेले में रिफ्लेक्ट करूँ जब उस बात पर, तो मैं अपने आप को समझाऊं कि ये जो मैंने रिएक्शन किया,
1: अगर मैं मानू तब समझाऊं ना।
2: क्या मानू?
1: कि मैं गलत था।
2: हाँ, तो वही तो स्टेप वाइज है ना, अवेयरनेस कि ये अनकंफर्टेबल था, एक्सेप्टेंस कि हाँ ये मेरा रिएक्शन, इट डजेंट मीन कि आसपास के लोग गलतियां नहीं कर रहे, कर रहे हैं, चीजें वैसी हो रही हैं जो सही नहीं है, हमें कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, विच वी कैन नॉट से कि वो राइट है, लेकिन हमारा राइट और रॉन्ग किसका ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माई रिएक्शन, माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। सड़क खराब है, पहाड़ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर मुझे पहाड़ी इलाके में रहना है और चलना है तो मेरे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। आई कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग।
1: तो क्या करें अगर जहां पर कोई चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं है तो छोड़ के हट जाए वहां से?
2: छोड़ के हट नहीं सकते ना। सपोज परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो परिवार को छोड़ देंगे, काम की जगह पर ठीक
1: है
2: तो फिर यस,
1: तो कहीं रह नहीं पाएंगे।
2: तो सारा फोकस किस पर है, सारी अटेंशन किस पर है कि हाँ चीजें हैं लेकिन मेरी पावर कहाँ है? सी दिस इज अगेन, वेयर इज माई पावर? आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द पीपल। इफ यू कैन चेंज पीपल, चेंज देम, बट यू डोंट हैव दैट पावर।
1: हमको सिखाते थे कि आपको भागना नहीं है, जागना है।
2: अवेकनिंग ना, यही तो अवेकनिंग है ना।
1: भागना और जागना में कितना अंतर है?
2: हाँ, क्योंकि हम भाग सकते भी नहीं। कहाँ से भागेंगे, कितना भागेंगे
1: और कितनों,
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे भी अगर भाग लें, अकेले जाके जंगल में भी रह लें, अपने मन से कहाँ भागेंगे, उसके साथ तो रहना ही है,
1: तो बेटर है जागना ही है।
2: जागना मीन्स क्या? जागना मीन्स ये कि माय एवरी रिएक्शन, माय एवरी रिस्पॉन्स इज माय क्रिएशन, आई एम शक्ति, तो मेरा हर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? तो अगर कुछ हो भी गया है, इट्स फाइन, जब रिफ्लेक्ट करें उस पर, और रिफ्लेक्ट करें जरूर, ये नहीं कि होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक के बाद एक बातें आती जा रही है, हम रिएक्ट करते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि शक्ति कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है।
1: अच्छा, अगर ये शक्ति कम हो जाए तो जो अकेले में बैठ के अपने से बात करना और चिंतन करना है, समझाना है, वो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए, वो भी कम हो जाएगी।
2: सी इट्स लाइक अगेन, मैंने सड़क पे चलना शुरू किया, पहली बार चली, दर्द हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये दर्द क्यों हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कमजोरी है, नहीं किया, मैंने कहा सड़क ही गलत, चलना तो उसी सड़क पे था, चलते चलते यहाँ ध्यान नहीं दिया तो दर्द तो बढ़ता गया, दर्द बढ़ते बढ़ते साथ में मैंने ये भी अब बोलना शुरू कर दिया, ये सड़क बनाई किसने, कौन है, समझता नहीं है कैसी बनाई, अब ये करते करते कमजोरी और बढ़ती गई, फिर धीरे आके अगली बार तो गिरी गई उधर, तो चोट और बढ़ गई, करते गए विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक कि यहाँ कुछ करना था, तो लाइफ की जर्नी कैसी हो जाएगी?
1: बाप रे, कितनी मुश्किल हो जाएगी
2: लाइफ की जर्नी कैसी हो जाएगी। और फिर एक दिन हो सकता है गिर गई और सारे ही बोन्स टूट गए, और तब कहें अब कुछ करना चाहिए,
1: जब चिड़िया चुग गई खेत।
2: दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। जब थोड़ा दर्द है, सी मोस्ट ऑफ अस टुडे, मोस्ट ऑफ अस आर इन दैट स्टेज, जब थोड़ा दर्द है, स्ट्रेस है, चिंता है, गुस्सा है, ये थोड़े दर्द वाली स्टेज है। इस थोड़े वाले दर्द वाली स्टेज में अगर हम किसी को कहते हैं थोड़ा सा रोज स्टडी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, नहीं, टाइम नहीं है, कहाँ, अभी थोड़ी ये
1: कल देखता हूं,
2: तो वो थोड़ा दर्द धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है। फिर आज इतनी यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके साथ भी चलते जाते हैं, उसके साथ भी चलते जाएंगे तो भी नहीं रुक रहे हम कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, उसके साथ भी चलते जा रहे हैं।
1: एक आदमी मुझसे कह रहा था, ये बस अब इन चीजों से के साथ तो मुझे जीना ही है, मैं इसे भगवान का प्रसाद समझ के जी लेता हूँ। अरे भाई, जब तुम्हें जो शक्ति दी है, बीइंग शक्ति और ज्ञान नॉलेज, उसको क्यों नहीं भगवान का प्रसाद समझते, इस ज्ञान को जो आप समझा रही हैं।
2: लेकिन अवेयरनेस नहीं ना, कौन सा प्रसाद है, भगवान ने हमें क्या दिया? क्योंकि हमने सोचा हमारे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान ने दिया, ये शरीर है, लेकिन इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है, ये मन है, इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है, इसमें भगवान का प्रसाद क्यों बोलेंगे इसको हम? भगवान का प्रसाद तो ज्ञान है जो हमें रोज मिलता है, उस ज्ञान को, उस प्रसाद को अगर रोज लें। सी, जब प्रसाद मिलता है फिजिकल रूप में, जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाके प्रसाद लेते हैं, तो कैसे लेते हैं प्रसाद को? लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, नहीं प्रसाद लिए बिना नहीं जाना है। प्रसाद का कितना महत्व है, फिर प्रसाद लेना है और सिर्फ अकेले नहीं खाना, फिर वो सबके साथ शेयर भी करना है।
1: हाँ, देते फिजिकल जो प्रसाद होता है, इतना छोटा छोटा दाना सबको देते हैं कि चुटकी ले तो भी मुंह में डाल ले तो।
2: अगर प्रसाद नीचे गिरा जमीन पे है,
1: उठा के फिर ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं,
2: खा लेते हैं, कोई और चीज नीचे जमीन पे गिरेगी वो तो नहीं खाते ना। तो ये कौन से प्रसाद का सिग्निफिकेंस है? प्रसाद मीन्स प्रभु प्रसाद हम किसको कहते हैं? प्रभु प्रसाद है ज्ञान। जब ज्ञान मिलता है उसको ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना है। देखो, प्रसाद हमेशा झुक के स्वीकार करते हैं। अच्छा, प्रसाद को लेकर सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ऐसे करते हैं, मतलब ये प्रसाद मेरी मन बुद्धि में टिक जाए, ये टच होना चाहिए यहाँ। ऐसा नहीं ज्ञान सुना और सुन के वहीं से उड़ गया, इट हैज टू गेट फिटेड इन साइड हियर। फिर उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं, उसको हरेक के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्ञान का प्रसाद,
1: वैल्यू करते हैं प्रसाद की, ज्ञान रेस्पेक्ट करते हैं,
2: तो ज्ञान का प्रसाद अगर लेना शुरू किया वो सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद सबको बंटता ही जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में वो प्रसाद धारण हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद औरों को मिल गया, देना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिकली रेडिएट हो रहा है प्रसाद।
1: ये पॉइंट बड़ा अच्छा है,
2: रेडिएट हो रहा है ना,
1: कि मैं अगर उस पे चलूं, अच्छे मतलब मत पे, श्रीमत पे चलूं या अच्छे ज्ञान पे चलूं, तो वो खुद ही प्रसाद दुनिया को आप हर कदम पे दे रहे हो।
2: सी, आप मेरे सामने आए, मेरे से एक गलती हुई, अगर आपने गुस्सा कर दिया तो आपकी गुस्से ने मेरी शक्ति को और कम किया, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो गई, राइट? तो आपने प्रसाद नहीं खाया है और आपने रिएक्ट किया, मैं भी डिसएम्पावर हो गई, ठीक है? अब सुबह सुबह आप ज्ञान का प्रसाद खा के आते हैं, क्या है, मैं पीसफुल पावरफुल सोल, बस इतनी एक लाइन का प्रसाद खाया,
1: आई एम शक्ति,
2: ठीक है? इतना एक प्रसाद की लाइन आज ले ली, अब मैंने फिर वही गलती की, लेकिन आज आप स्टेबल रहे, आपने मुझे वो ज्ञान सुनाया नहीं है, लेकिन आप स्टेबल रहे और आपने बहुत प्यार से कहा कोई बात नहीं, कल से इसको ऐसे ध्यान से करना, ये कहना, इस तरह से ये वाइब्रेशन रेडिएट करना, मुझ आत्मा की पावर को क्या कर देगा?
1: एलिवेट करेगा और उठाएगा ना,
2: आई एम शक्ति का प्रसाद आपने खाया था, लेकिन शक्ति मेरी भी बढ़ी उसकी वजह से,
1: और खुशी भी बढ़ी।
2: तो वही ना, आत्मा की पावर बढ़ी तो ओरिजिनल सारी क्वालिटीज बढ़ी। तो एक जना भी घर में अगर प्रभु प्रसाद रोज खाने लग जाए तो पूरे परिवार को तो बंट ही जाएगा ना। इसीलिए देखो, दुनिया में भी लोग कहते तुम जाके प्रसाद लेकर आना, हम सबको खिलाना। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए देखो, घर से, परिवार से, मोहल्ले से एक जना भी अगर तीर्थ पर जाता है, मंदिर जाता है, कहते वो प्रसाद लेकर आएगा ना, हम सबको मिलेगा।
1: हम लोग जब छोटे थे तिरुपति में, जब बाल कटा के आते थे ना, तो जो जितने फ्रेंड्स दोस्त लोग आके हमारे पांव छूते थे कि भाई तुम वहां जाके और प्रसाद लेते थे, लेते थे प्रसाद भी लेते थे, पांच बोले हो गया, हमने मतलब आप वहां जाके आए और उस पवित्रता से हो गया
2: ना। मीनिंग है इसमें, कितना मीनिंग है इसमें, लेकिन फिजिकल लेवल पर सिर्फ जब उसको करते हैं तो उसका मीनिंग की प्राप्ति नहीं होगी.
1: एक्चुअली दिस सो आर्टिफिशियल लेवल आई शुड कॉल.
2: इट्स नॉट आर्टिफिशियल.
1: आर्टिफिशियल भी ये झूठ है ना. एक, एक, एक कर दिया, डाइव मार दिया, कर दिया, खा गया, सोचा भी नहीं क्यों किया.
2: भावना तो है ना, ये भावना है.
1: भावना आप, भी है, फियर भी है, एक रिचुअल भी है, दूसरे कर रहे देख के भी.
2: लाइक आप एक पवित्र स्थान पर होकर आए, आपके पास वो वाइब्रेशन है अभी, और मैंने अगर आपको छुआ, छुया भी तो मुझे वो वाइब्रेशन मिली, वो उसका सिग्निफिकेंस है. लेकिन आज हम बहुत सारी चीजें बिना सिग्निफिकेंस के कर रहे हैं. वी जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी नो इट्स गुड एंड वी शुड डू इट. लेकिन उसका ट्रू मीनिंग क्या है? आप प्योरिटी को अगर अपने जीवन में धारण करके आए, और फिर आपको जो भी टच करेगा, मतलब आपके संपर्क में जो भी आएगा, अब जो आपके साथ काम करेगा, जो आपके साथ रहेगा, आपकी थॉट, वाइब्रेशन, एक्शन, वर्ड्स, एवरीथिंग विल रेडिएट प्योरिटी. एंड ये प्योरिटी उनके अंदर, उनकी प्योरिटी को इमर्ज करेगी, तब आपका प्रसाद सबको बंट गया.
1: और ये जो एक बार मैं जाके आया परमपिता के पास, और मैं रोज जाऊं, yes. तो फिर कितना मैं बांटूंगा,
2: yes.
1: और हर क्षण जाऊं,
2: हमेशा जाऊं. दिस इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ. जो हमने लास्ट टाइम देखा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ.
1: एक सेकंड, मैं पर्पज पे एक चीज लाया था दिखाने आपको. आपने अच्छा वो पॉइंट निकाल लिया. थोड़ा आपसे पूछना भी था इसका मीनिंग. इसे द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट. द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव योर गिफ्ट अवे.
2: ब्यूटिफुल.
1: नहीं समझ.
2: पर्पज ऑफ योर लाइफ इज डिस्कवर योर गिफ्ट एंड देन गिव दैट गिफ्ट अवे. वही तो किया अभी.
1: अच्छा, बांटने वाली बात.
2: हाँ,
1: प्रसाद की.
2: वही तो किया अभी. डिस्कवर योर गिफ्ट
1: एंड व्हाट इज द गिफ्ट.
2: गिव द गिफ्ट अवे.
1: व्हाट इज द गिफ्ट.
2: व्हाट इज द गिफ्ट. हमारा गिफ्ट क्या है?
1: ज्ञान.
2: हर क्वालिटी आत्मा की. अच्छा. हमारे पास वही.
1: ओके, नाउ एज अ सोल आई एम बॉर्न विद दोज सेवन गुड ब्यूटिफुल क्वालिटीज एंड देन आई हैव टू गिव अवे दोज क्वालिटीज.
2: पर्पज ऑफ आवर लाइफ.
1: ओ माई गॉड. मैं ना गिफ्ट बचपन से सुन सुन के कोई चीज ऐसा दिमाग. लुक एट दिस कंडीशनिंग ऑफ थॉट ऑफ माइंड. गिफ्ट बचपन से दिख, मेरी चॉकलेट, मेरी पेंसिल, मेरा ये. तो मतलब मेरी कौन सी गिफ्ट है ये? पर्पज ऑफ लाइफ. मैं दू क्यों?
2: पर्पज ऑफ लाइफ.
1: और गिफ्ट मेरी है, मैं दू क्यों?
2: वो स्थूल फिजिकल चीज देने से हमारी घटेगी ना.
1: बट कौन सी गिफ्ट है जो स्थूल नहीं है, आप बताइए.
2: आई द बींग.
1: हाँ, तो यही तो चीज आज मालूम रही है. एट दिस एज इट्स सो लेट, इसन्ट इट?
2: नो, इट्स नॉट लेट.
1: इट्स लेट एंड इट्स सैड दैट आई डोंट इवन नो दैट दैट इज कॉल्ड अ गिफ्ट.
2: एंड इट्स नॉट सैड.
1: हमको देखिए, लाइफ इज अ गिफ्ट. ये गिफ्ट, वो गिफ्ट, कितनी बातें बड़ी बड़ी वर्ड्स में हमने सीखी हैं. लेकिन ये जो आपने बात कही ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आई एम अ सोल. और सोल की जो क्वालिटीज है, दोज आर द सेवन गिफ्ट वी हैव.
2: दोज आर द ओनली थिंग्स वी हैव एक्चुअली. एंड पर्पज ऑफ आवर लाइफ. देखो, पर्पज जो होता है ना हर एक का, वो करना नहीं पड़ता है, वो इनहेरेंट उस चीज के अंदर होता है. एक बीज लेते हैं, एक बीज है, उस बीज का पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? एक सीड है.
1: प्लांट ए ट्री.
2: उसके अंदर ट्री बनेगी ना.
1: फर्दर फर्दर सीड्स बनाना.
2: फर्दर सीड्स बनेगी. उस बीज के अंदर उसका ज्ञान ऑलरेडी बसा हुआ है. उस बीज के अंदर पूरी नॉलेज है वो वृक्ष बनने की. राइट, इट इज देयर.
1: शक्ति भी.
2: अब ये बीज करेगी क्या एज इट इज ग्रोइंग? वो अपने आसपास चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, प्रोसेस करेगी और ऑक्सीजन देगी. ये करना है उसने. ये पूरे जीवन उसने करना है. दैट्स द लाइफ ना. दैट्स द पर्पज ऑफ लाइफ ऑफ द ट्री. व्हाट्स इट गोइंग टू डू? टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेस इट, गिव ऑक्सीजन. एज इट डज दिस इट विल कीप ग्रोइंग.
1: ब्यूटिफुल.
2: यही होगा उसका जीवन.
1: लेकिन दुनिया की वो सेवा करके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देके हमको जीवित रखे.
2: लेकिन वो करने में ही उसकी ग्रोथ है अपनी. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: दूसरे को लाइफ देने में उसकी लाइफ है,
2: अपनी ग्रोथ है. द पर्पज इज इन द बीइंग एंड एज इट इज डूइंग, एज इट दैट पर्पज ऑफ दैट बीइंग इज बीइंग सर्व्ड, द डूइंग इज हैपनिंग. जो उसका ग्रो होना है दैट इज द डूइंग. जो उसका ये ऑक्सीजन देना है दैट इज द बीइंग. अगर वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले और फिर पकड़ ले, और ऑक्सीजन ना दे बाहर, तो क्या होगा उस पौधे को?
1: मर जाएगा.
2: दैट इज इट.
1: ग्रोथ बंद हो जाएगी उसकी.
2: अपनी पर्पस ऑफ लाइफ करना बंद कर दिया, हमारी ग्रोथ बंद हो जाएगी.
1: पहले तो उसकी शक्ल खराब लगने लगेगी, पीले पीले पत्ते हो जाएंगे, बीमार लगेगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ बंद होके मर जाएगा.
2: अब अगर ये पेड़ सोचे कि मुझे सिर्फ लेना है, लेना है, लेना है, और लेके मुझे ग्रो करना है, मैंने देना नहीं है कुछ भी, जैसे ही वो देना बंद कर देगा, वो ग्रो करना बंद कर देगा. वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट आवर पर्पस ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट वी आर, द सोल. इसका भी यही पर्पस ऑफ लाइफ है. इसको भी देना है, देना है, देना है, और इसके देने में इसकी ग्रोथ है. लेकिन जब से हमने ये समझा कि मैं कौन, मैं ये फिजिकल आइडेंटिटी, मैं कौन, मैं ये पोजीशन, मैं कौन, मैं ये रिश्ता,
1: गिफ्ट क्या,
2: हाँ
1: ये
2: गिफ्ट क्या, चीजें, गाड़ी,
1: डायमंड,
2: राइट, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन गया? लेना और लेके अपने पास रखना.
1: और बहुत बड़ा दिल हो गया तो गिफ्ट में फिर एक गाड़ी दे दी किसी को, डायमंड दे दिया किसी को, और गिफ्ट का तो मीनिंग समझ में नहीं आया ना.
2: ये जब तक हम देंगे नहीं, और क्या देंगे नहीं, ये जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है. एंड दैट इज वाई टूडे सी वी विल बिकम स्टैग्नेंट. ना एक पौधे ने अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो आपने कैसे कहा, वो पीला हो जाएगा, मुरझाने लगेगा, मरने लगेगा, और फिर धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाएगा. सेम थिंग, हमने जब प्यार, खुशी ये देनी बंद कर दी, मांगनी शुरू कर दी सिर्फ, कोऑपरेशन देनी बंद कर दी, कॉम्पिटिशन करने लग गए सिर्फ सबके साथ, आसपास क्या हो रहा, कहते आजकल क्या पता आसपास क्या हो रहा है, कौन देखता है किसी के घर में क्या हो रहा है.
1: द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट, जो ये लाइन है सिस्टर. अब डिस्कवर कैसे करेंगे बताओ? कौन से स्कूल में कोई सिखाता है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? कोई मतलब किसी एंगल से, मेरे मुझे तो लगता है कि ये लिखने वाले को भी नहीं मालूम होगा जब उसने लिखा. मे बी आई कैन नॉट से दैट कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, क्या थॉट से, लेकिन आपने उसका जो नया मीनिंग दिखाया, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द गिफ्ट.
2: तो गिफ्ट अगर कभी... हम आज अगर इस कोटेशन को कोई पढ़ता है तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर.
1: मैं आपसे नहीं पूछता तो नहीं समझता मैं.
2: नहीं तो हम उसको फिर भी हम समझेंगे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट? तो मैं सोचूंगी हाँ मुझे औरों का ध्यान रखना आता है.
1: मैं क्या सोचता पर्पस ऑफ लाइफ, चलो भगवान ने मुझे इतने सारे पैसे ऐसे दिए, 6 कपड़े दिए, मुझे 3 की जरूरत है, 3 बांट दो और थोड़े पैसे दे दो, थोड़ा दान कर दो, दिस इज माई पर्पज, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ आई एम लिविंग. मतलब एक इसकी कितनी लिमिटेशन हो जाती है.
2: फिजिकल ना पर्पज ऑफ लाइफ एक ही चीज से कनेक्टेड है, हु एम आई, पर्पज ऑफ माई लाइफ ना. सो हु इज द आई जिसका वो पर्पज है? जब तक वो आई एक फिजिकल बींग था, जब तक वो आई एक प्रोफेशनल था,

0: उसका पर्पज ऑफ लाइफ, उसके प्रोफेशन एक रोल के साथ ही तो जुड़ा होगा, एंड उसको उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, कोई डॉक्टर कहेगा मैं कितनों का इलाज कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर कहेगा मैं हर संडे संडे फ्री का भी इलाज करता हूँ।
1: तो लोग बोलेंगे देखो मैं कितने बच्चों को फ्री गाना सिखाता हूँ, फ्री उनको मैं डांस सिखाता हूँ, फ्री उनकी कला को उभारता हूँ, सो मेनी, दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ,
0: विच इज वेरी गुड।
1: लेकिन एक गिफ्ट की बात सुन के मैं बार बार सोच रहा हूँ सिस्टर कि आई मीन आई हैव नेवर इवन थॉट के गिफ्ट जो है सोल के क्वालिटीज होंगी।
0: वी नेवर थॉट बिकॉज वी नेवर रिमेम्बर कि मैं आत्मा हूँ। जब यही नहीं याद कि मैं आत्मा हूँ, फिर यही नहीं याद रहेगा कि आत्मा की गिफ्ट क्या है, फिर ये कैसे याद रहेगा कि आत्मा ने देना क्या है सबको।
1: सही बात है।
0: आज अब हमें सिर्फ ये पर्पज ऑफ लाइफ याद रखना है, क्योंकि इसी में हमारी खुशी है, इसी में हमारी ग्रोथ है, इसी में कलेक्टिवली भी हम सबकी ग्रोथ है। अगर हर पौधा सिर्फ ऐसे हो जाए और ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो इस सृष्टि का क्या होगा?
1: खुद भी तो मरेगा,
0: खुद भी मरेगा और सृष्टि पर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा,
1: सब मरेंगे।
0: तो अगर हर आत्मा भी ऐसे हो गई तो वो खुद पहले अंदर घुट जाएगी और फिर उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और हर आत्मा अगर ऐसे देने लग जाए तो पहले खुद ग्रो होगी, एंड लुक एट द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड विल चेंज। जस्ट इमेजिन, वी नीड टू विजुअलाइज अ वर्ल्ड जहां हर आत्मा लेना लेना लेने की बजाय सिर्फ देना इस इंटेंशन से चले। इमेजिन गोइंग टू वर्क आज, देना डजंट मीन कि हमें सेवा करनी है सारा दिन जाके, देना हमारे रोज के कर्म में समाया हुआ है। हम ऑफिस जा रहे हैं, एक है हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं, हम धन कमाने ऑफिस जा रहे हैं, हम काम करने ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, हम औरों से मिलकर उन्हें प्यार देने ऑफिस जा रहे हैं, हम औरों को खुशी देने ऑफिस जा रहे हैं, अगर कोई उदास है उसके मन को ठीक करने आज हम ऑफिस जा रहे हैं, देने की इंटेंशन। लेना तो ऑलरेडी समाया हुआ है ऑफिस जाने में, वो तो लेंगे ही, लेकिन जितना देने की इंटेंशन से जाएंगे तो शाम को देखो कितना खुश होकर वापस आएंगे, और जितना खुश होकर शाम को वापस आएंगे उतनी खुशी फिर घर आके परिवार वालों को देंगे।
1: मैं देने की इंटेंशन में जाऊं और वहां जाते किसी ने मुझे उल्टा ही बोल दिया, तो सारा वो देने का पूरा मन ही नहीं करता।
0: इम्पोर्टेंट कि किसी ने उल्टा बोल दिया मतलब दूसरा कितना उदास या कितना बीमार है।
1: अभी इसको उदास एक एक,
0: एक, एक मिनट
1: over...
0: देना मतलब ये नहीं होता कि सब जो अच्छे अच्छे हैं उनको मैंने देना है। देना मतलब इट्स लाइक आप एक हॉस्पिटल जाएंगे तो किसको देंगे? उसी को देंगे ना, सारे जो बीमार हैं।
1: एक मीन पर्सन को, एक सेल्फिश पर्सन को, एक ओवर स्मार्ट पर्सन को, एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन को आप बीमार और उदास कहेंगे?
0: अपनी ओरिजिनल बीइंग से वो कितना डिस्कनेक्टेड है, उसको आप क्या कहेंगे?
1: एक सेल्फिश पर्सन को हम बीमार समझें?
0: वो अपनी ओरिजिनलिटी से कितना डिस्कनेक्टेड है? नहीं है डिस्कनेक्टेड
1: है,
0: तो जो डिस्कनेक्टेड है उसी की तो सेवा करनी है ना।
1: तो जो
0: जो हेल्दी है, हैप्पी है, उसकी सेवा नहीं करनी आपको, वो तो खुद ही दे रहा है सबको इतना कुछ।
1: तो डिस्कनेक्टेड पर्सन से मिलके मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, बल्कि उसको जाके कनेक्ट करो।
0: दिस इज इट। एंड उसको कनेक्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली कौन कनेक्टेड रहेगा?
1: मैं
0: कनेक्टेड रहूंगा।
1: अनलेस आई एम कनेक्टेड मैं करूंगा कैसे?
0: ये सेवा है, ये प्रभु प्रसाद है, ये पर्पज ऑफ लाइफ है, ये हर आत्मा के अंदर पर्पज ऑफ लाइफ समाया हुआ है, इसको दबाना नहीं है, इसके होने में ही हमारी ग्रोथ है। एंड दिस इज बीइंग पावरफुल। जो देता है, पावरफुल जो होता है वो ही दे सकता है ना, जिसके पास है वो ही दे सकता है। तो आज इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं।
1: चलिए इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं सिस्टर, और अगले एपिसोड में पर्पज ऑफ लाइफ को मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
2: ईच टाइम वी जस्टिफाई आवर नेगेटिव रिएक्शंस बाय ब्लेमिंग अदर पीपल, वी डिसएम्पावर आवर सेल्फ। First, soul power gets depleted when we react negatively. Then, we justify our reactions by blaming others to be the cause of our reaction. We are again losing power. When we take personal responsibility of our reaction, irrespective of the stimulus, we empower ourselves. We remind ourselves that we are a powerful soul. This time we failed, but next time we will take charge of ourselves. This is soul empowerment. Worry, stress, anxiety, these are the initial symptoms of being spiritually weak. If we take charge of ourselves by daily meditating, studying spiritual knowledge, and then implementing practically during the day, we will empower ourselves. Purpose of our life is not in what we are doing, but in the being. Purpose is not of our role and position, but purpose of the soul. Purpose of the being is to radiate its qualities of love, purity, bliss, and power in everything we are doing.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सारी दुनिया, सारे विश्व में सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि हमारा देश तरक्की हो। सभी देश वाले यही चाहते हैं, सभी देश का कि ये कामना होती है। उसी तरह भारतवर्ष में भी हम भारतवासियों को भी लगता है कि हमारा देश ही तरक्की में हो, लेकिन देश की तरक्की में आखिर किसी का सहयोग हो तभी तो देश तरक्की करेगा। किसी एक के चाहने से तो नहीं होगा। इसीलिए अगर हम चाहें और ना चाहें तब भी हमारा देश तभी तरक्की पे जाएगा कि देश की तरक्की में कौन सहयोगी हो। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम देखते हैं सृष्टि रूपी नाटक में सभी का अपना अपना पार्ट है। सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का पार्ट है। द्वापर युग में धर्म स्थापकों, ऋषि मुनियों, सन्यासियों, राजाओं और भक्तों का पार्ट है। फिर कलयुग में आइए तो राजनेताओं और अभिनेताओं आदि का पार्ट चलता है। वैसे ही कलयुग के अंत और सतयुगी सृष्टि के आरंभ में जो आरंभ के संगम युग पर सर्वशक्तिमान परमात्मा का पार्ट भी चलता है। वर्तमान समय गुप्त युग संगम युग ही चल रहा है और परमात्मा पिता का पाठ भी चल रहा है। जितने दिमाग, कहा जाता है जितने दिमाग उतने ही विचार होते हैं। सभी देहधारियों के पाठ को जानना, समझना और अनुमान लगाना आसान है, लेकिन स्थूल नेत्रों से ना दिखने के कारण

अनुभव कहता है कि अनुमान अक्सर सत्यता से कोसों दूर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अलग अलग पदों के अधिकतर हाँ हम देखते हैं कि अधिकार और जिम्मेवारियां हैं। इनकी जिम्मेवारियां क्या है? मनुष्य कहते हैं हम तो श्री राम श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई कहते हैं हम तो साईं बाबा को मानते हैं, ऐसे ही कोई पीर पैगंबर, कोई बुद्ध, कोई महावीर अथवा क्राइस्ट आदि को ही मानकर संतुष्ट हो लेते हैं कि हम भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी नगर में नगर पालिका के पार्षद भी होते हैं तो विधायक और सांसद भी होते हैं। यदि पार्षद ही सारे काम कर ले तो विधायक की क्या जरूरत? यदि विधायक सब कुछ कर ले तो सांसद की क्या जरूरत? यदि सांसद सब कुछ कर लेगा तो मंत्रियों का क्या आवश्यकता? हाँ, यदि मंत्री को सब कुछ अधिकार दे दिए जाए तो मुख्यमंत्री की क्या जरूरत? फिर मुख्यमंत्री ही सब कुछ कर ले तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा क्या होगी? और आगे आइए, प्रधानमंत्री को ही सारे अधिकार होते हैं तो राष्ट्रपति का पद नहीं रहता। सर्वोच्च है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति है देश का सर्वोच्च नागरिक। तो जाहिर है एक दो के ऊपर पद हैं, सबके अपने अपने अधिकार और जिम्मेवारियां हैं। घर के पिछवाड़े की सर्विस लाइन की सफाई नगर पार्षद करवा सकता है, लेकिन नगर पार्षद के हस्ताक्षर से कोई सरकारी नौकरी का आदेश नहीं बन सकता। जबकि राष्ट्रपति के आदेश पर किसी अपराधी की फांसी की सजा भी माफ हो सकती है। तो पद के अनुसार अधिकारों में फर्क हुआ ना। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, वह हुआ सर्वोच्च। ऐसे ही विचार कीजिए, यदि एक कथावाचक ही अपने प्रवचन से सब कुछ करवा दे तो साधु संत क्या करेंगे? अगर साधु संत ही सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे तो धर्म स्थापक आकर क्या करेंगे? फिर अगर धर्म स्थापक ही सब कुछ कर दे तो सोचिए आप कि देवी देवताओं का इतना गायन क्यों है? और यदि देवी देवताएं ही सभी प्राप्तियां करा देते हैं तो भगवान का क्या महत्व रह जाएगा? बस अब भगवान के ऊपर कोई नहीं, वह हुआ सर्वोच्च। कोई भी साधु संत, पीर पैगंबर या धर्म स्थापक कभी ये कहकर नहीं गए कि यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं सभी मनुष्य मात्र का उद्धार करने इस धरा पर अवतरित होता हूँ। इस कथन के लिए भगवान का ही गायन है, दुख हरता सुख करता रहम दिल भक्त वत्सलम, मन इच्छित फल देने वाला निष्कामी, दाता विधाता वरदाता, यह महिमा भगवान की ही है। दुनिया में अनेक साधु संत, पीर पैगंबर, धर्म स्थापक, महापुरुष आदि आए, उनके रहते हुए भी, उनको आंखों से देखते हुए भी मनुष्य यही गा रहे हैं, भगवान को हम खोज रहे हैं, दर्शन की इच्छा पूरी होती नहीं। इसका अर्थ क्या है? यही कि देवी देवता, साधु संत, पीर पैगंबर, धर्म स्थापक, महापुरुष आदि भगवान नहीं है। भगवान तो एक है, सर्वोच्च है, सबका है, सर्वशक्तिवान है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय है देश की तरक्की में सहयोगी है एक ईश्वर का सत्य परिचय। जैसा कि हम देख रहे हैं, आजकल देखने में जो भी आ रहा है, दंगे फसाद पत्थरबाजी आदि देश की तरक्की में बाधक है। आज अनेकों को भगवान मान लेने से आए दिन होने वाले विवाद, दंगे फसाद पत्थरबाजी आदि देश की तरक्की में कितने बाधक बन रहे हैं। अपराध करने वाले, अपराधों के समाचार लिखने वाले, वीडियो बनाने वाले, समाचार छापने वाले मीडिया कर्मी, अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मी अथवा सेना कर्मी, अपराधों की पैरवी करने वाले वकील, न्यायाधीश आदि की अग्रणी भूमिका में अधिकतर युवा ही होते हैं। ऐसे में यदि ईश्वर का सत्य परिचय देकर इन युवाओं के मन में, इनकी बुद्धि में को एकाग्र किया जाए तो इनकी ऊर्जा देश की तरक्की के रचनात्मक कार्यों में सफल हो सकते हैं। कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। समय तो अपने अनुसार सभी राजों से पर्दा हटाने वाला ही है, लेकिन उस समय मनुष्य आत्मा अलौकिक सुख और खुशी की अनमोल प्राप्तियां नहीं कर पाएंगी। कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। वर्तमान समय चल रहे गुप्त संगम युग के अंतिम पलों में जब सबके सामने ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब उनको जानने के लिए कोई बुद्धि लगानी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका परिणाम यह होगा कि परमात्मा प्राप्तियों के द्वार बंद हो चुके होंगे। इसलिए जागो, क्योंकि समय से पहले ही अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें पहचानने से सुख शांति और संपत्ति के अखूट खजाने प्राप्त हो सकते हैं। धरती पर पधारे परमात्मा पिता को दिव्य चक्षु से जानने और पहचानने वाला भाग्यवान ही देवी देवता पद को जन्म जन्मांतर के लिए हासिल कर सकता है। तो आपने देखा कि ईश्वर का परिचय हमें कब और कैसे, किस समय लेना है और कब परमात्मा इस धरा पे आते हैं। इस कलयुग की अंत घड़ी में परमात्मा जब इस धरा पे आते हैं तो यही होता है हमारा संगम युग। तो इस बेला को हम व्यर्थ में ना गवाएं और इसका पूरी तरह से इसका फायदा उठाएं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती।

0: के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे दर्द लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, इस पगर से बट पर वोट मतलब क्या। माथे दर्द लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी में अलजेब्रा सांग।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादाजी और ज्योति पुंज। दादाजी और राहुल लूडो खेल रहे थे तभी वहाँ रिया आ गई।
2: दादाजी, ओरियन क्या होता है?
3: अरे बुद्धू, ओरियन नहीं ओनियन होता है। ओनियन यानी प्याज।
4: राहुल, रिया ठीक कह रही है, ओरियन एक ज्योतिपुंज या तारामंडल है।
2: दादाजी, ज्योतिपुंज कैसे होता है?
4: ज्योतिपुंज अनेक तारों का समूह होता है। पता है इनका अपना महत्व होता है?
3: कैसा महत्व दादाजी?
4: अगर किसी ज्योतिपुंज को पहचान लिया जाए तो उसमें स्थित सभी तारों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, और केवल यही नहीं उनके आसपास स्थित अन्य ज्योतिपुंजों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
2: वह कैसे दादाजी?
4: रिया, तुम ओरियन को ही उदाहरण के रूप में ले लो। इसमें लाल तारा बिटलजूस इसके कंधे का, तो नीला तारा रीगल इसके पैरों का निर्माण करता है। इसी प्रकार बिटलजूस के समानांतर बेलाट्रिक्स तारा स्थित होता है, तो रीगल के समानांतर सैप।
3: वाह, अच्छा दादाजी, हमें ओरियन के विषय में कुछ और बताइए।
4: ओरियन को अंग्रेजी में द हंटर और हिंदी में मृग के नाम से जाना जाता है।
2: दादाजी, ओरियन कब और कहाँ देखे जा सकते हैं?
4: रिया, ओरियन दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म काल में तथा उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन शाम को सरलता पूर्वक देखा जा सकता है, मुख्य रूप से जनवरी से मार्च के महीने तक।
3: दादाजी, कुल कितने ज्योतिपुंज हैं?
4: अब तक कुल मिलाकर 88 ज्योतिपुंजों की खोज हो चुकी है।
2: ये ज्योतिपुंज कौन कौन से हैं दादाजी?
4: ये ज्योतिपुंज कर्क, वृषभ, मिथुन आदि हैं।
3: दादाजी, ज्योतिपुंजों के नाम क्या राशियों के नाम पर ही आधारित होते हैं?
4: केवल राशियां ही नहीं, ज्योतिपुंजों के नाम पशुओं और ग्रीस के पौराणिक कथाओं के पात्रों के नाम पर भी आधारित होते हैं।
2: धन्यवाद दादाजी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी।
3: रिया, मैं तो दादाजी के साथ साथ तुम्हें भी धन्यवाद दूंगा।
2: भला मुझे क्यों भैया?
3: क्योंकि यदि तुम ओरियन का जिक्र नहीं करती तो दादाजी से हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलती।
1: राहुल ने हंसते हुए कहा तो दादाजी और रिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बड़ों से अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ना करो दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़े।

कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान

क्या नशा नशा सा है, बोलिए ना बोलिए सब सुना।

भरा रंग गुल ये खिलाया किसने, तीर ये चुप से चलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया।

0: रोता ही रहा है।
1: बिटिया रबाब ले।
2: नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
1: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, तू आएगी और मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
2: अच्छा बाबू।

मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं आप।